ऐसे शुक्र करूं तेरी रहमतों का, ऐ खुदा मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

तुझे चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे देखता हूं और किश्तें अदा हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8

0: ओशो, जिनका मूल नाम चंद्रमोहन जैन था, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और रहस्यवादी थे। उन्होंने ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और सक्रिय ध्यान, जिसे कहा जाता है एक्टिव मेडिटेशन, उस पर जोर दिया। वे पारंपरिक धर्मों और रूढ़ियों के आलोचक थे और लोगों को आत्म जागरूकता, वर्तमान में जीने और निर्भीक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। ओशो के बारे में कुछ खास बातें। उनका प्रारंभिक जीवन। जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुछ वाड़ा गांव में हुआ था। नाम उन्हें आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश और अंततः ओशो के नाम से जाना गया। शिक्षा और पेशा, उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और जबलपुर विश्वविद्यालय में लेक्चरर रहे। दर्शन, ओशो ने जीवन को उत्सव की तरह जीने, पुरानी परंपराओं को छोड़ने और स्व अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित किया। वे ओशो निसर्गा और ओशो मेडिटेशन रिसोर्ट जैसे ध्यान केंद्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ध्यान विधियां, उन्होंने आधुनिक मनुष्यों के लिए डायनेमिक ध्यान यानी डायनेमिक मेडिटेशन जैसी सक्रिय ध्यान विधियां विकसित की, जो तनाव से मुक्ति में मदद करती हैं। साहित्य, उनके प्रवचनों को हजारों किताबों में संकलित किया गया है, जो हिंदी में भी व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, जैसे ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति और किताबें जो बदल सकती हैं जीवन। ये है ओशो के बारे में, भगवान रजनीश के बारे में संक्षिप्त परिचय। आइए अब सुनते हैं भगवान रजनीश को, अर्थात ओशो को। Why do complications arise in human life? अर्थात मानव जीवन में उलझने क्यों आती हैं? इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं आप क्या कहते हैं।
1: मेरे सारे विरोधी वक्तव्यों के बावजूद ही अगर तुम मेरे साथ हो तो ही मेरे साथ हो। इसलिए मैं तुमसे ये भी कह दूं कि मेरे इतने विरोधी वक्तव्यों के पीछे बहुत बहुत कारण हैं। उनमें एक ये भी है कि जो इनके बावजूद मेरे पास होंगे उनको ही मैं चाहूंगा कि मेरे पास हो। जो इनके कारण हट जाएंगे उनकी बड़ी कृपा, उनके पास होने का कोई मूल्य न था। भीड़ बढ़ाने से तो कोई प्रयोजन नहीं, वे समय ही खोते, अपना भी मेरा भी, वे जगह ही भरते। अच्छा हुआ हट गए। दो तरह के लोग हैं। सभी जीवन की घटनाएं दो हिस्सों में बटी होती हैं। मेरे करीब हजारों आने वाले लोगों में जब पुरुष मेरे पास आते तो कहते हैं आपके विचार हमें अच्छे लगते, इसलिए आपसे नाता बनाते। स्त्रियां जब मेरे पास आती वो कहती हैं आप हमें अच्छे लगते, इसलिए आपके विचार भी अच्छे लगते। और ऐसा स्त्री पुरुष का विभाजन बहुत साफ सुथरा नहीं है। बहुत से पुरुष हैं जो स्त्रियों जैसे हृदयवान हैं, बहुत सी स्त्रियां हैं जो पुरुषों जैसी बुद्धिमान हैं। बुद्धि कहती है विचार अच्छे लगते, इससे आपसे लगाव है। हृदय कहता है आपसे लगाव है, इसलिए विचार भी अच्छे लगते। अब थोड़ा सोचो, जो विचार के कारण मुझसे लगाव बनाया है, कल अगर विचार ठीक ना लगे, और ऐसे में हजारों मौके लाता हूं जब विचार ठीक नहीं लगते। मेरे पास बहुत से गांधीवादी लोग थे, फिर मैंने उनसे छुटकारा चाहा। गांधी से कुछ लेना देना ना था, लेकिन गांधीवादियों के कारण गांधी के विपरीत बोला, वो भाग गए। जो उसमें से बच गए उन्होंने सबूत दिया कि उनका नाता मुझसे। मेरे पास जब मैं गांधी के विपरीत बोला तो सारे मुल्क के समाजवादी, साम्यवादी, उनकी भीड़ बढ़ने लगी। कम्युनिस्ट जो मुझे कभी सुनने ना आए थे वो आने लगे। फिर जब मैं समाजवाद के खिलाफ बोला वो भाग गए, उसमें से कुछ रुक गए। जो रुक गए वही मूल्यवान थे। निरंतर मैं ये करता रहा हूं, निरंतर मैं ये करता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे कारण ही मेरे पास हो, कोई और इतर कारण नहीं। ये संबंध सीधा है तो ही तुम्हारा यहां होना उचित है, अन्यथा तुम किसी और की जगह घेर रहे हो। खाली करो, कोई और वहां होगा, कोई और लाभ।

इसे भूलना मत, इसे सतत स्मरण रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, इसे भी तुम समझ लो कि मैं गांधी के खिलाफ बोला, तुम गांधीवादी थे ही नहीं, इसलिए तुम्हें कोई अड़चन न हुई और तुमने सोचा कि हमारा तो प्रेम का नाता है। मैं समाजवाद के खिलाफ बोला, तुम समाजवादी कभी थे ही नहीं, तुमने कहा हमें इन विरोधी वक्ताओं से कुछ नहीं लेना, हमारा तो प्रेम का नाता है। थोड़ी प्रतीक्षा करो, कहीं ना कहीं से मैं तुम्हारी जड़ पकड़ ही लूंगा। तुम ज्यादा देर ना बच पाओगे, कहीं ना कहीं से मैं तुम्हारे मत, तुम्हारे शास्त्र पर हमला करूंगा ही, करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे शास्त्र से मुक्त ना करूं, तब तक मैं तुम्हें तुम्हारी बुद्धि से मुक्त ना कर पाऊंगा। जब तक तुम तुम्हारी बुद्धि से मुक्त ना हो, तब तक अहंकार के नीचे का आधार ना हटेगा, तुम्हारा भवन गिर ना सकेगा। तो मैं खोजे चला जाता हूं, मेरे साथ आखिर में जो बच रहेगा, सभी झंझावातों को सहकर, सभी आंधियों को सहकर, वो परीक्षा में पूरा उतरा। अगर तुम्हें होश हो तो कोई कारण नहीं कि तुम भी परीक्षा में क्यों ना पूरे उतर जाओ, लेकिन जब तुम्हारे मत पे चोट पड़ती है तब होश खो जाता है, तब आदमी बेचैन हो जाता है, क्योंकि ये मानना कि तुम कोई गलत चीज मानते थे बड़ा मुश्किल होता है। तुम इतने बुद्धिमान और किसी गलत चीज को मानते थे? तुम्हें अपनी बुद्धिमानी पर शक नहीं आता, और धार्मिक व्यक्ति का वो बुनियादी लक्षण, जिस बुद्धि को अपने पर शक आ गया वो धार्मिक हो गई, क्योंकि जिसे अपने पे संदेह आया उसने ही अपने को बदला। संदेह ही ना तो बदलोगे क्यों? जिसने पहचाना कि मैं रुग्ण हूं वही चिकित्सा की खोज में चला, औषधि

कि मनुष्य के मन में झांक कर देखने के बाद मुझे आश्चर्य होता है कि मनुष्य समाज में मैत्री, प्रेम और दयादान के कृत्य भी होते हैं। कृपा पूर्वक बताएं कि मनुष्य की वृत्तियों में कौन ज्यादा बुनियादी और बली, प्रेम या घृणा, हिंसा या अहिंसा।

कौन ज्यादा बलवान है, प्रथम से ही गलत प्रश्न उठा लेना है। और अगर गलत प्रश्न पूछ लिया है तो फिर उत्तर गलत होते चले जाते हैं। कहते हैं अच्छे होटलों में बैरा ये नहीं पूछता है कि आप चाय लेंगे या नहीं, बैरा पूछता है आप चाय लेंगे या कॉफी। फर्क समझे आप, अगर बैरा पूछे आप चाय लेंगे या नहीं तो 50 मौके नहीं के, 50 मौके चाय के। बैरा पूछता है आप चाय लेंगे या कॉफी तो 50 मौके चाय के हैं, 50 मौके कॉफी के। आपको छूटने का मौका नहीं दे रहा है, आपको नहीं कहने का अवसर नहीं दे रहा है। इसलिए पश्चिम में तो विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया जाता है कि ग्राहक से कैसी बात करनी, क्या कहना, क्योंकि तुम्हारे कहने पर उसका उत्तर निर्भर करेगा। अगर तुम खुद ही 50% ना कहने का अवसर दे रहे हो तो तुम काहे के विक्रेता, तुमने आधी दुकान तो बर्बाद कर दी, आधा काम तो तुमने धंधा खराब ही कर लिया। ये तुमने गलत जगह से पूछ लिया, नहीं ऐसा पूछना ठीक नहीं। मनुष्य जाति बहुत से ऐसे प्रश्नों से पीड़ित रही है जो गलत जगह से पूछे गए, बस एक दफा पूछ लिया कि झंझट खड़ी हो जाती। और हमारी आदतें सिखाने की, हमें सिखाया गया हां और ना की आदतें, अंधेरा और उजेला, रात और दिन, मौत और जिंदगी, हम दो हिस्सों में बांट के देखते। जिंदगी दो हिस्से में बटी नहीं है, जिंदगी तो सतरंगी है, इंद्रधनुष जैसी है। अब तुम पूछो इंद्रधनुष सफेद के काला तो क्या कहें, इंद्रधनुष ना काला ना सफेद, इंद्रधनुष सतरंगी है। तुम्हारे काले सफेद में प्रश्न बनते ही नहीं। ये तो ऐसे ही जैसे कोई आदमी तुमसे पूछे कि हां और ना में जवाब दे दे, अपनी पत्नी को अब भी पीटते हैं या नहीं। अगर कहो हां तो उसका मतलब अभी भी पीटते हैं, अगर कहो नहीं तो उसका मतलब पहले पीटते थे। उसने छोड़ा ही नहीं अवसर। ये भी हो सकता है कि आप पीटते ही ना हो। प्रश्न पूछा जाता है कि अहिंसा या हिंसा, प्रेम या घृणा, क्रोध या करुणा। ये जीवन को बांटने का गलत ढंग है। जीवन सतरंगा है, हां और नहीं में बटा हुआ नहीं। हां और नहीं के बीच बहुत सी सीढ़ियां हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी। यहां बहुत मात्राएं हैं, यहां ऐसी भी जगह है जहां ना घृणा ना प्रेम, उपेक्षा, उपेक्षा भी है। और यहां ऐसी भी घड़ियां हैं जहां घृणा भी और प्रेम भी, दोनों साथ साथ। मनस्वित कहते हैं तुम जिसको प्रेम करते हो उसी को साधारणता घृणा भी करते हो, इसलिए तो पति पत्नी के इतने झगड़े चलते, जिससे प्रेम उसी से घृणा। अब तुम उनसे कहो इतना झगड़ा चलता है तो छोड़ ही क्यों नहीं देते, तुम बात ही गलत कर रहे हो, प्रेम भी है, छोड़ तो सकते ही नहीं, न छोड़ सकते हैं न साथ रह सकते। पति पत्नी का संबंध ऐसा संबंध है कि बिना भी नहीं रह सकते और साथ भी नहीं रह सकते। पत्नी दूर चली जाती तो याद आती है, पास चली आती है तो छुटकारे की कामना पैदा होने लगती। अगर तुम जीवन को सीधा सीधा देखो, लेकिन अगर तुमने गणित से बांध लिया, तुमने कहा कि बात सीधी साफ करो, अगर पत्नी से लगाव है तो ठीक साथ रहो, अगर लगाव नहीं तो छोड़ दो, बात खत्म करो। काश जिंदगी इतनी सीधी सीधी होती, ऐसा अंधेरे उजेले की तरह जिंदगी बटी होती। बटी नहीं है जिंदगी, बड़ी मिश्रित है। तुम अगर किसी से पूछो ठीक ठीक कहो प्रेम या घृणा, तो वो भी कहेगा, वो कहेगा पक्का करना मुश्किल, कभी घृणा भी होती है कभी प्रेम भी होता, सुबह घृणा होती शाम प्रेम हो जाता। खोजने से पता चला है कि प्रेम और घृणा एक ही सिक्के के दो पहलू। इसलिए गलत प्रश्न से शुरुआत हम न करें।
जीवन में जहां जहां अति दिखाई पड़ती हो वहां समझ लेना कि बीच में सेतु भी होगा। रात भी कहीं दिन से अलग है, मौत कहीं जिंदगी से अलग है। मौत कहीं जिंदगी के बाहर थोड़ी घटती, जिंदगी के भीतर ही घटती। मौत आने के पहले मर थोड़ी जाते हो, जिंदा ही रहते हो। जब मौत आती तुम्हें जिंदा ही पाती, ऐसा थोड़ी कि पहले मर गए फिर मौत आती। मौत जिंदगी के भीतर है, बाहर नहीं। और मौत जिंदगी के विपरीत भी नहीं, क्योंकि तुम हटते हो तो किसी के लिए जगह खाली करते हो, कोई और जिंदा हो पाता है। बूढ़ा मरता है तो बच्चा पैदा हो पाता है। पुराने पत्ते गिर जाते हैं तो नए पत्ते निकल आते हैं। पुराने पत्ते ना गिरे तो नए पत्ते ना निकलेंगे। तुम थोड़ा ऐसा सोचो, तुम्हारे बुजुर्ग अगर न मरते तो तुम नहीं हो सकते थे। तुम हो क्योंकि उनकी बड़ी कृपा थी, वो मर गए। अगर वो बने ही रहते और अड्डा जमाए बैठे रहते तुम कहां होते। वैज्ञानिक कहते हैं जहां तुम बैठे हो वहां कम से कम 10 आदमियों की लाशें दबी हर स्थान पर। इतने आदमी हो चुके, तुम थोड़ा सोचो कोई मरता ना तो जिंदगी मरने से बदतर हो जाती। सब बूढ़े, जरा सोचो तो। कौरव पांडव से लेके सब ऋषि मुनि, सब राक्षस, सब बैठे पृथ्वी पर, तुम भी आ गए। वो गला घोंट देते तुम्हारा, तुम्हारे लिए जगह कहां थी। तुम हो सके हो क्योंकि कोई नहीं हो गया। किसी के नहीं होने से तुम्हारा होना जुड़ा है। अब अगर तुम बहुत जिद करोगे कि मैं सदा ही बना रहूं तो तुम दूसरों के होने में बाधा बन जाओगे। जब तुम्हारा मौका आए तुम हट जाओ ताकि दूसरे हो सके। जीवन मौत के साथ साथ चल रहा है। मौत जीवन का ही उपाय है, मौत जीवन का ही हिस्सा है। एक बार तुम्हें यह समझ में आ जाए कि विरोधी जुड़े, फिर जीवन के संबंध में कई बातें साफ हो सकती। पूछा है कि बुनियादी कौन है, बलि कौन है? कोई भी नहीं, दोनों साथ साथ हैं। और अगर छोड़ना हो तो दोनों ही छोड़ने पड़ते हैं। इसलिए तो भारत के मनुष्यों ने कहा कि अगर तुम्हें मौत से बचना हो तो जीवन का त्याग कर देना होगा। इसको तुम थोड़ा सोचो इस तरह से। बुद्ध पुरुषों ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मौत से छुटकारा हो जाए तो जीवन से छुटकारा चाहिए। जब तक तुम जीवन को पकड़ोगे मौत भी आती ही रहेगी। तुम्हारे जीवन को पकड़ने में ही तुमने मौत को निमंत्रण दे दिया। जीवेशना मौत को लाएगी और जीवन और मृत्यु का चाक घूमता रहेगा। तुम जीवन को छोड़ो, मौत अपने से छूट जाती। तुमने सम्मान चाहा तो अपमान आता ही रहेगा। तुम सम्मान छोड़ो, अपमान अपने से छूट जाता है। तुमने कुछ परिग्रह करना चाहा तो तुम्हारे जीवन में कभी ना कभी खोने का दुख झेलना ही बता है। तुम खुद ही छोड़ दो, फिर तुमसे कुछ भी छूट नहीं सकता। पकड़ोगे तो छूटेगा, ना पकड़ोगे तो छूटने की बात ही समाप्त हो गई। इसलिए पूरब की सारी मनीषा एक बात कहती है, अगर तुम चाहते हो कि दुख मिट जाए तो सुख का त्याग कर दो। इसमें विरोध का नियम काम कर रहा है। तुम चाहते हो सुख तो बच जाए और दुख का त्याग हो जाए, तुम असंभव की कामना कर रहे हो। इसका यह अर्थ हुआ, अगर तुम जीवन से घृणा के रोग को छोड़ देना चाहते हो तो जिसे तुम प्रेम कहते हो उसे भी छोड़ दो। तब तुम्हारे जीवन में एक निष्कलुषता आएगी जिसमें न तो प्रेम होगा, जिसे तुम प्रेम कहते हो वो नहीं होगा, जिसे तुम घृणा कहते हो वो भी नहीं होगी। कुछ नई ही गंध होगी, कुछ नई ही बात होगी। तुम्हारी भाषा में कहीं भी ना आ सके ऐसी कुछ बात होगी। अनिर्वचनीय कुछ होगा, अव्याक्य कुछ होगा। कुछ नए शब्द खोजने पड़ेंगे।
इसलिए हम बुद्ध को प्रेमी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेम तो बिना घृणा के हो नहीं सकता, इसलिए हमने उनको करुणावान कहा। जरा सा शब्द अलग किया, लेकिन करुणावान भी कहना क्या ठीक है, क्योंकि करुणा भी क्रोध के बिना नहीं हो सकती। मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि बुद्ध के लिए तुम्हारी भाषा का कोई भी शब्द लागू नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी शब्द तुम उपयोग करोगे उससे विपरीत को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तुम बुद्ध को त्यागी नहीं कह सकते, क्योंकि त्यागी वो तभी हो सकते हैं जब भोगी हो। तुम उनको ज्ञानी भी नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञानी वो तभी हो सकते हैं जब अज्ञानी भी हो। तुम उन्हें सन्यासी भी नहीं कह सकते, क्योंकि सन्यासी वे तभी हो सकते हैं जब संसारी भी हो। फिर क्या कहो? इसलिए शास्त्र कहते हैं उस संबंध में चुप ही रहा जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, उस संबंध में मौन ही वक्तव्य है। तो पहली तो ये बात कि दोनों साथ साथ हैं, बराबर वजन के, न तो घृणा ज्यादा है न प्रेम ज्यादा है। और दूसरी बात जीवन के प्रतिपल में स्थिति बदलती रहती। जब तुम जवान होते हो तब मोह ज्यादा लगता है वो जवानी का भ्रम है, प्रेम ज्यादा लगता है वो जवानी का भ्रम है, भोग ज्यादा लगता है वो जवानी का भ्रम है। फिर तुम्हें बूढ़े हो जाओगे और त्याग की भाषा बोलने लगोगे, वो बुढ़ापे का भ्रम। इसलिए बूढ़े और जवान में बात बड़ी मुश्किल है, वो अलग अलग भाषा बोलते। बूढ़ा कहता है ये सब सपना है जो तुम बातें कर रहे हो, जवान कहता है ये सब पराजय की बातें, तुम्हारा हारा थकापन। अब तुम बूढ़े हो गए, मौत करीब आ रही है, तुम मौत से घबरा गए। बूढ़ा आस्तिक हो जाता है, ईश्वर को मानने लगता है, जवानी नास्तिक है। जवानी अपने सिवा किसी को भी मानना नहीं चाहती। जवान कहता है बूढ़ा मौत से डर गया इसलिए ईश्वर को मानने लगा, भयातुर है, ये भगवान सब भय से पैदा हुए। और बूढ़ा कहता है ये जवान अभी अंधा है, जवानी अंधी है, और अंधे को सब जगह हरा हरा सूझता है। ये सब उतर जाएगा नशा, ये सब नशा है, तब अकल आएगी। मगर मैं तुमसे कहता हूं ना तो जवान को अकल है ना बूढ़े को। अकल का इससे कोई संबंध ही नहीं जवानी और बुढ़ापे से। जब तक तुम अपने भीतर ऐसी जगह ना खोज लोगे ना जो जवान है ना बूढ़ी, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बुद्धि का बुद्धि की किरण नहीं हो सकती। जवान जवानी से परेशान है और जवानी की भाषा बोल रहा है, बूढ़ा बुढ़ापे से परेशान है, बुढ़ापे की भाषा बोल रहा है। हालांकि बूढ़े को लगता है मैं ज्यादा समझदार, जवान को भी यही लगता है कि मैं ज्यादा समझदार हूं। इसलिए तो पीढ़ियों के बीच एक दरार पड़ जाती, बाप बेटे को नहीं समझ पाता, बेटा बाप को नहीं समझ पाता। बाप बिल्कुल भूल चुका कि वो भी कभी बेटा था और जवान था और इसी तरह की मूढ़ता की बातें उसने भी की थी, वो भूल ही जाता। मूढ़ता की बातें लोग याद ही नहीं रखते, और जवान भी ये भूल जाता है कि ये बाप भी कभी जवान था फिर बूढ़ा हुआ है। मैं आज जवान हूं कल मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, इसकी बात को ऐसे ही ना ठुकराऊं, ये आज नहीं कल मेरे जीवन में भी आने ही वाली है, इसका ऐसा तिरस्कार ना करूं। लेकिन नहीं, जवान भी अंधे बूढ़े भी अंधे, आंख तो उसके पास होती जो अपने भीतर उस धारा को खोज लेता है जो समय के बाहर है, न जो जवान है न जो

कभी एक स्वर महत्वपूर्ण मालूम होता है, कभी दूसरा स्वर महत्वपूर्ण मालूम होता है। मन के साथ तो ये धोखा, ये लुका छिपी चलती ही रहती। मन का नियम यह है कि मन पूर्ण को नहीं देख सकता, इसे तुम समझने की कोशिश करो। मन केवल आधे को देख सकता है। जैसे मैं तुम्हारे हाथ में एक सिक्का दे दूं, सिक्का छोटा सा है, क्या तुम दोनों पहलुओं को एक साथ देख सकोगे? जब तुम सिक्के का एक पहलू देखोगे, दूसरा दब जाएगा। जब दूसरा देखोगे, पहला दब जाएगा। आज तक किसी मनुष्य ने पूरा सिक्का नहीं देखा है। तुम सोचते हो कि तुमने देखा, क्योंकि तुम दोनों अलग अलग देखे पहलुओं को कल्पना में जोड़ लेते हो, अन्यथा तुमने पूरा सिक्का नहीं देखा। अगर तुम बहुत तर्कयुक्त हो तो तुम दूसरे सिक्के के संबंध में, दूसरे पहलू के संबंध में कुछ भी नहीं कह सकते। मैंने सुना है एक बहुत बड़ा विचारक विटगेंस्टीन ट्रेन से यात्रा कर रहा था, बड़ा तर्कयुक्त मनुष्य था। पास ही एक मित्र बैठा था, खिड़की से उन्होंने झांक के देखा, सर्दी की सुबह, धूप निकली है और एक खेत में बहुत सी भेड़ें खड़ी, उनके बाल अभी अभी काटे गए, वो सर्दी में थरथरा रही, धूप में एक दूसरे से सिकुड़ी खड़ी। मित्र ने विटगेंस्टीन को कहा, देखते हैं, मालूम होता है भेड़ों के बाल अभी अभी काटे गए, ठंड पड़ रही और भेड़ें ठंड में सिकुड़ रही। विटगेंस्टीन ने गौर से देखा और कहा, जहां तक इस तरफ दिखाई पड़ने वाले हिस्से का सवाल है, जरूर बाल काटे गए, उस तरफ की मैं नहीं जानता। भेड़ को पूरा तो कोई देख नहीं रहा, उस तरफ का क्या पता। इस तरफ से भेड़ें ठिठुर रही हैं ठंड में, ये पक्का है, उस तरफ की मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मन एक चीज के एक ही पहलू को देख पाता है एक बार में। जवानी में एक पहलू देखता है, बुढ़ापे तक जब तक सिक्का उलटता है दूसरा पहलू देख पाता है। तो जवानी में कहता है ये महत्वपूर्ण है, बुढ़ापे में कहने लगता है कुछ और महत्वपूर्ण है। जवानी में राग रंग महत्वपूर्ण था, बुढ़ापे में त्याग की भाषा महत्वपूर्ण हो जाती। जवानी में मदिरा ले जाता था, बुढ़ापे में मस्जिद जाने लगता है। जवानी में रस राग वैभव विलास, बुढ़ापे में सन्यास की बातें, त्याग विराग, सारी भाषा बदल जाती। पर होता कुल इतना ही है कि सिक्के का दूसरा पहलू सामने आता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि सिक्के के किसी भी पहलू को जरूरत से ज्यादा मूल्य मत दे देना, दूसरा भी उतना ही मूल्यवान है, दोनों बराबर मूल्य के। और अगर एक साथ तुमने दोनों का बराबर मूल्य आंक लिया, दोनों तुल गए तराजू पर बराबर, तो तुम दोनों से मुक्त हो जाओगे। उस व्यक्ति को ही मैं सम्यक ज्ञान को उपलब्ध कहता हूं जिसने मन के सारे विरोधों को साथ रख के देख लिया और जिसने चुनाव करना बंद कर दिया और जिसने कहा यह पूरा मन ही लुका छिपी, एक सामने आता है दूसरा छिप जाता है, फिर हम धोखे में पड़ जाते। जो धोखे में नहीं पड़ता, जो दोनों को देखकर, दोनों के विरोध को देखकर, दोनों का अनिवार्य सत्संग देखकर दोनों से छुटकारा पा लेता है, द्वंद से जो मुक्त हो जाता है, द्वैत से दुई से जो मुक्त हो जाता है, वही परम शाश्वतता में ठहरता है, वही स्वभाव को उपलब्ध होता है। आखिरी प्रश्न, भगवान होने का आनंद लेना हो तो इसी क्षण भगवान हो कर लो, क्या यही आपकी देशना है? कल भ्रांति, आज ही सत्य है। आने वाला क्षण भी आएगा या नहीं, कोई भी कह नहीं सकता। जो आ

0: गया है, बस वही आ गया है। तो कल पर छोड़ कैसे सकते हो? कल है कहां? कल रात यूरोप से एक युवक आया और संन्यास्त हुआ। मैंने उससे पूछा, कब तक रुकोगे? उसने कहा, कल तक रुका। तो मैंने कहा, फिर तुम कभी जा ना सकोगे, क्योंकि कल तो कभी आता नहीं। वो थोड़ा घबराया, अगर कल तक रुके हो तो सदा के लिए रुकना पड़ेगा। क्योंकि कल जब आएगा तो आज हो जाता है, आज होकर ही कुछ आता है। समय का स्वभाव आज अभी है, कल तो मन की कल्पना है, कल तो मन का फैलाव है, कल तो आज से बचने का उपाय है। तो अगर तुम कहते हो कि कल लेंगे भगवान होने का आनंद, तो तुम कभी ना ले पाओगे। भगवान तो अभी यही है, सब साज सामान तैयार है, तुम गाना कल पर क्यों छोड़ रहे हो? वीणा सामने रखी है, उंगलियां वीणा पर पड़ी हैं, तुम तार छेड़ना कल पर क्यों छोड़ रहे हो? क्या तुम्हें पक्का है यह हो सकता है वीणा कल भी हो तुम ना हो? कल पर छोड़ने की आदत संसार में खतरनाक से खतरनाक आदत है, आज ही जी लो। लेकिन तुम्हें सदा यही सिखाया गया है, कल पर छोड़ो, क्योंकि तुम्हें यह सिखाया गया हर चीज की तैयारी करनी होगी, तैयारी के लिए कल की जरूरत है। आज कैसे भोगोगे? सितार बजानी तो पहले सीखनी भी तो पड़ेगी, सीखने के लिए कल तक ठहरना पड़ेगा। गीत गाना है तो कंठ को साधना भी तो पड़ेगा, आवाज को व्यवस्था तो देनी होगी, तो कल की जरूरत पड़ेगी। मगर मैं तुमसे कहता हूं, भगवान को भोगने के लिए कुछ भी तैयारी की जरूरत नहीं। जो बिना तैयारी उपलब्ध है वही भगवान है, जो तैयारी से मिलता है उसका नाम ही संसार है। तुम्हें बड़ी उल्टी लगेगी मेरी बात, मैं तुमसे फिर कहूं, जो साधना से मिलता है उसका नाम संसार है, जो मिला ही हुआ है उसका नाम भगवान है। संसार के लिए कल की जरूरत है, समय की जरूरत है, भगवान के लिए कोई जरूरत नहीं। ये गीत कुछ ऐसा है कि कंठ को साधना नहीं बस गाना है, ये स्वर कुछ ऐसा है कि कोई प्रशिक्षण नहीं लेना, ऐसा ही है जैसे कि मोर नाचता है बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी नृत्यशाला में गए पक्षी गीत गा रहे हैं, बिना कंठ को साधे। तुम जैसे हो भगवान वैसे ही प्रकट होने को तैयार है, तुम जैसे हो वैसा ही भगवान ने तुम्हें स्वीकारा है। कल मैं एक गीत पढ़ता था, मुझे प्रीतिकर लगा, यह बाविकार मुकफ्फिर, यह फलसफी सायर, बहुत बुलंद फिजाओं में फड़फड़ाते चमन के फूल, हवा का खिराम, गुल की चटक, हर एक जिंदा मसर्रत से खौफ खाते। कभी खुदा न करे मुस्कुराएं भी ये बुजुर्ग, तो किस कमबींद मतानस से मुस्कुराते। रबाबे जीस्त के आतिस मिजाज तारों पर, गिलाफ बर्फ ज़दा फिक्र के चढ़ाते। है मगर फिक्र वह मुर्दा बुलंद परवाजी, कि जिससे जीस्त के आसाब ऐंठ जाते। दार्शनिक, पंडित, पुरोहित, विचारक, शास्त्रज्ञ बड़ी ऊंची हवाओं की बातें करते हैं, बड़े ऊंचे आसमानों की बातें करते हैं, लेकिन वो बातें उन आसमानों में कभी उड़ते नहीं। जिंदगी उनकी जमीन पर सरकती हुई पाओगे, बातें आकाशों की, वो सिर्फ सपने हैं। और चमन के फूल, हवा का खिराम, गुल की चटक, हर एक जिंदा मसर्रत से खौफ खाते, और तुम सदा पाओगे कि जहां भी कोई जिंदा सुख हो उससे वो घबराते, मरे मराए सुखों की बातें करते हैं या कभी होने वाले सुखों की बातें करते हैं। किन्हीं स्वर्गों की जो होंगे, किन्हीं स्वर्गों की जो कभी थे। चमन के फूल, हवा का खिराम, गुल की चटक, हर एक जिंदा मसर्रत से खौफ खाते, और जहां भी जिंदगी की खुशी दिखाई पड़ती, कहीं कोई जिंदा सुख मालूम पड़ता उससे घबराते। मैं तुमसे कहता हूं, जो जिंदा सुख से घबराए वो भगवान का दुश्मन है, क्योंकि फूल उसी के, हवा की लहरें उसी की, पक्षियों के गीत उसी के, ये जो नाच चल रहा है चारों तरफ, ये जो जीवन का उत्सव चल रहा है चारों तरफ, ये उसी का है। इससे जो घबराया, इससे जो शर्माया, इससे जो बचा, वो आदमी मुर्दा है, उसका भगवान भी मुर्दा होगा। जिंदा भगवान तो यहां है, मुर्दा भगवान कहीं और, सात आसमानों के पार। कभी खुदा ना करे मुस्कुराएं भी ये बुजुर्ग, तो किस कमीद मतानस से मुस्कुराते हैं। और ऐसे लोग हंसते तो हैं ही नहीं, और भगवान न करे कि कभी वो हंसे भी, क्योंकि वो हंसते हैं तो उनकी हंसी में भी ऐसी घबराहट, ऐसी गंभीरता, ऐसी निंदा, उनकी हंसी में भी हंसी नहीं होती, उनकी हंसी में भी लाश की सड़ांध होती। रबाबे जीस्त के आतिश मिजाज तारों पर, ये पंक्तियां बड़ी प्यारी। जिंदगी के स्वर बड़े गर्म गर्म है, जिंदा है तो गर्म है। रबाबे जीस्त के आतिश मिजाज तारों पर, और ये जिंदगी का बाजा है, जिंदगी का साज है, इसके गर्म गर्म तार हैं, तैयार हैं कि छेड़ो अभी, निमंत्रण है, बुलावा है कि नाचो अभी, गाओ अभी। रबाबे जीस के आतिश मिजाज तारों पर, गिलाफ बर्फ जदा फिक्र के चढ़ाते, और ये जो पंडित हैं, पुरोहित हैं, मौलवी हैं, ये इन गर्म गर्म जिंदगी की वीणा के तारों पर फिक्र और चिंता की बर्फ चढ़ाते, ठंडा कर देते, मार डालते। है मग्र फिक्र वह मुर्दा बुलंद परवाजी, और ये बातचीतें और ये विचारों की उड़ानें सब मरी हुई है, कि जिससे जीस्त के आसाब ऐंठ जाते, जिससे जिंदगी ऐंठ जाती, जीवन के अंग ऐंठ जाते, ये सब बातें जिंदगी के विपरीत है, मौत की पक्षपाती। तुमने जिन्हें अब तक धर्मों की तरह जाना है, बुद्धों को छोड़ दो, महावीरों कृष्णों को छोड़ दो, उनके धर्म से तुम्हारी कोई पहचान नहीं, उनका तो धर्म यही है कि भगवान अभी हो जाओ, उनका तो सभी का संदेश यही है कि वर्तमान के अतिरिक्त तो और कोई समय नहीं, उनने तो सभी ने कहा है कि इसी क्षण को तुम शाश्वत बना लो, इसी में डूब जाओ। लेकिन उनके नाम पर पंडितों पुरोहितों ने जो संप्रदाय खड़े किए, वो सब तुम्हें कल की तैयारी कहते हैं, वो कहते हैं आज छोड़ो, कल की तैयारी करो। उनकी वजह से ही तुम उदास हो, उनकी वजह से ही तुम्हारी जिंदगी के अंग ऐंठ गए, उनकी वजह से तुम कुछ भी उत्सव नहीं मना पाते। गुरजीएफ कहता था कि सभी धर्म भगवान के खिलाफ है। बड़ा कठिन वक्तव्य है, क्योंकि हमें तो लगता है धर्म तो भगवान के पक्षपाती हैं। गुरजीएफ कहता है सभी धर्म भगवान के खिलाफ। मैं भी कहता हूं धार्मिक व्यक्ति भगवान के खिलाफ नहीं होता, धर्म सभी भगवान के खिलाफ। धार्मिक व्यक्ति तो कभी कभार होता है, जो धर्मों की जमाते वो परमात्मा के विपरीत है। तुम्हारे महात्मा सभी परमात्मा के विपरीत है। महात्मा तुम्हें जिंदगी को छोड़ना सिखाते हैं, और परमात्मा ने तुम्हें जिंदगी दी है, और महात्मा कहते हैं छोड़ो, और परमात्मा कहता है भोगो, जीवन परम भोग है। अगर तुमने मेरी बातों को ठीक से समझा तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम अपने परमात्मा को अपने जीवन की ऊंचाई बनाओ, तुम अपने परमात्मा को अपने जीवन के विपरीत मत रखो, अन्यथा तुम अड़चन में पड़ोगे। न तुम जिंदगी के हो पाओगे, न परमात्मा के हो पाओगे, तुम दो नावों में सवार हो जाओगे जो विपरीत जा रही। तुम परमात्मा को जीवन का स्वर समझो और तुम जीवन के प्रतिपल को प्रार्थना बनाओ। तुम जीवन को इस ढंग से जियो कि वो धार्मिक हो जाए। धर्म के लिए जीवन में अलग से खंड मत खोजो, धर्म को पूरे जीवन पर फैल जाने दो। लेकिन दुखी लोग हैं जो दुख को पकड़ते हैं, वो जीवन में सब तरह का दुख का आयोजन करते हैं। पहले धन के नाम पर दुखी होते, पद के नाम पर दुखी होते, फिर किसी तरह इनसे छुटकारा होता है तो भगवान के नाम पर दुखी होते, लेकिन दुख की आदत उनकी छूटती नहीं। तुझको मस्जिद है, मुझको मैखाना, वाइजा अपनी अपनी किस्मत है। कुछ हैं जो जिंदगी को मधुशाला बना लेते, जिनकी जिंदगी एक उत्सव होती, महोत्सव, एक अहिर्निस आनंद। और कुछ हैं जो जिंदगी को मस्जिद बना लेते, चर्च, उदास, मुर्दा, मरघट का हिस्सा मालूम पड़ता है जीवन का नहीं। अपनी अपनी किस्मत, वाइजा अपनी अपनी किस्मत है, धर्मगुरु अपनी अपनी किस्मत है। तुम धर्मगुरु बनने की चेष्टा में मत पड़ना, तुम धार्मिक होने की फिक्र छोड़ो, तुम परमात्मा के उत्सव को अंगीकार करो। जो जीवन में मिला है उसे इतनी गहराई से भोगो कि उसकी भोग की गहराई में तुम्हें सब जगह से परमात्मा के दर्शन होने लगे। भोजन भी करो तो ऐसे अहोभाव से कि उपनिषद के वचन सत्य हो जाएं, अन्नम ब्रह्म। सौंदर्य को भी देखो तो इतने अहोभाव से कि सभी सौंदर्य उसी की सौंदर्य की झलक लाने लगे। उठो तो उसमें, बैठो तो उसमें, चलो तो उसमें, जागो तो उसमें, सो तो उसमें, परमात्मा ही तुम्हारा लिबास हो जाए, वो तुम्हें घेरे रहे, तो ही मैं कहता हूं तुम धार्मिक हो पाओगे। धार्मिक होना 24 घंटे का काम है, इसमें छुट्टी का उपाय नहीं, इसमें रविवार का दिन भी नहीं आता। ईसाइयों की कहानी है कि परमात्मा ने 6 दिन संसार बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। अब पश्चिम में यूनियनवादी लोग हैं, वो इसके खिलाफ हैं, वो कहते हैं 5 दिन होना चाहिए काम, 7 दिन 6 दिन। मुझे लगता है कि यूनियनवादियों ने ही उसको राजी किया होगा पहले भी कि तू 6 दिन काम कर, 7वें दिन छुट्टी रख, नहीं तो मामला सब खराब हो जाए। जहां तक मेरे देखे परमात्मा 7ों दिन काम कर रहा है अहिर्निस। छुट्टी तो कोई तब चाहता है जब काम दुख होता है, जब काम ही आनंद हो तो कोई छुट्टी चाहता है। किसी ने कभी प्रेम से छुट्टी चाही? काम से लोग छुट्टी चाहते हैं क्योंकि काम उनका प्रेम नहीं। तुम परमात्मा से छुट्टी ना चाहो तब तो एक ही उपाय है कि तुम जो करो वो परमात्मा को ही निवेदित हो, समर्पित हो। तुम जो करो उसमें ही प्रार्थना की गंध समाविष्ट होने लगे, प्रार्थना की धूप तुम्हारे जीवन को चारों तरफ से घेर ले, सुवासित कर दे। और अगर तुमने किसी भविष्य के परमात्मा के सामने प्रार्थना की तो वो झूठी रहेगी, क्योंकि परमात्मा सदा वर्तमान का है। भविष्य के परमात्मा तुम्हारी ईजादें, धोखे और अगर तुमने किसी भविष्य के परमात्मा के सामने प्रार्थना की तो उस प्रार्थना में मस्ती ना होगी, मस्ती तो केवल अभी हो सकती। तेरा इमाम बेहजूर, तेरी नमाज बेसरूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर, न तो तुम्हारी प्रार्थना में मस्ती है, न तुम्हारी प्रार्थना में परमात्मा है। ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर, तेरा इमाम बेहजूर, तेरी नमाज बेसरूर, प्रार्थना को मस्ती बनाओ। अच्छा हो मैं ऐसा कहूं, मस्ती को प्रार्थना बनाओ, नाचो गाओ। इसी क्षण यह हो सकता है। परमात्मा कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और कब तक प्रतीक्षा करवाओगे? निश्चित ही यही मेरी देशना है कि अगर भगवान को जीना हो तो अभी, न जीना हो तो साफ कहो कि हम जीना ही नहीं चाहते, कल पर क्यों टालते हो? कम से कम ईमानदार तो रहो, इतना ही कहो कि हमें लेना देना नहीं, हमें प्रसन्न नहीं होना, हमें आनंदित नहीं होना, हमें दुखी रहना, होश से दुखी रहो। कम से कम सच्चे तो रहोगे, और जो होश से दुखी है ज्यादा दिन दुखी नहीं रह सकता। आज नहीं कल पहचाने का कि मैं ये क्या कर रहा हूं, एक महा अवसर मिला था गंवाए दे रहा हूं। जहां कमल के फूल ही फूल खिल सकते थे वहां कांटे ही कांटे बनाए ले रहा हूं। नहीं, तुम्हारी तरकीब यह है कि तुम कहते हो नहीं होना तो है प्रसन्न, लेकिन कल, कल के बहाने आज तुम दुखी हो लोगे। तुम कहोगे आज तो कैसे खुश हो सकते हैं, कल होंगे, आज तो दुख में है सो बिता लेंगे किसी तरह, गुजार लेंगे किसी तरह, लेकिन आज के ही गुजरे होने से तो कल निकलेगा। अगर आज दुख में गया तो कल सुखी नहीं हो सकता, इसी दुख से तो आएगा, इसी दुख पर तो बुनियाद पड़ेगी, इसी दुख पर तो कल का मंदिर खड़ा होगा। यही ईंटें तो कल के मंदिर को बनाएंगी जिनको तुम आज का क्षण कह के गंवा रहे हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं आज ही मंदिर बना लो, मंदिर बना ही है, तुम आज ही प्रार्थना कर लो, कल को कल पर छोड़ो। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, कल कल की चिंता स्वयं कर लेगा। तुम आज जी लो। धार्मिक व्यक्ति में उसी को कहता हूं जिसने वर्तमान में जीने को ही एकमात्र जीवन बना लिया, फिर उसे परमात्मा को खोजने नहीं जाना पड़ता। सूफी फकीर अल हिलाज मंसूर ने कहा है कि इसमें भी क्या लुत्फ कि हम परमात्मा को खोजने जाएं, ऐसे भी ढंग है कि वो खोजता हुआ आता है। मैं तुम्हें ऐसा ही ढंग दे रहा हूं कि वो तुम्हें खोजता हुआ आए। ये भी कोई मजे की बात है कि तुम खोजते फिरो उसे, खोजोगे भी कहां, उसका कोई पता ठिकाना भी तो नहीं। तुम अगर उत्सव में जियो तो वो तुम्हें खोज लेगा, वो उत्सव का संग साथी, वो उत्सव को प्रेम करता है। इसलिए तो इतने फूल हैं, इतने गीत हैं, इतने चांद तारे, वो उत्सव का दीवाना है। तुमने उत्सव मनाया कि तुमने पाती लिख दी, तुमने उत्सव मनाया कि तुम्हारी खबर पहुंच गई। तुम नाचो, नाच की ही गहराई में तुम अचानक पाओगे उसके हाथ तुम्हारे हाथ में आ गए, वो तुम्हारे साथ नाच रहा है, पर नाच में ही पाया जा सकता है। ऐसी उदास मुर्दा शक्ल बना के लोग बैठे, परमात्मा भी झिझकता है। उसके साथ होने का एक ही ढंग है कि तुम नाचो।
1: अभी आप सुन रहे थे ओशो की विचार, विषय था Why do complications arise in human life? मानव जीवन में उलझने क्यों आती हैं? आशा करता हूं इन विचारों को बहुत ही ध्यान से आपने सुना होगा, ओशो कहते हैं अतीत से मुक्ति, अर्थात हर कोई अपने भीतर किसी दर्द, स्मृति या अपेक्षा को पकड़े बैठा है। जब अतीत का बोझ गिरता है तभी वर्तमान हल्का हो जाता है। जीवित बुद्ध, अर्थात जीवित बुद्ध हमारे बस में नहीं होते, उनके साथ तो अगर मैत्री बनानी हो तो तुम्हें उनके बस में होना पड़ता है। स्वतंत्रता अर्थात फ्रीडम, तुम जो भी अर्थ निकालना चाहो निकाल सकते हो, अर्थ तुम्हारे होंगे। ओशो के विचारों को आज भी ध्यान, आत्मविकास और जीवन के रहस्यों को समझने के लिए प्रासंगिक माना जाता है। ऐसे विचारों को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर at Sharda University।
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
6: हंसते मुस्कुराते चेहरे वाकई दिल के करीब हो तो मुझे लगता है कि आपके दिन बन जाता है, प्रोग्राम बन जाता है। और ऐसी शख्सियत, हंसती मुस्कुराती शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही है। राम राम दोस्त, आप सत श्री अकाल आदा, मैं हूं नाचिस हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं मेरे खास प्रोग्राम के माध्यम से, जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। चलिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था उसका इशारा यूं है कि मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है रूही हक। आप टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर हैं लॉस एंजलिस से और आर्मी बैकग्राउंड से आप आते हैं। कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है और यही एक वजह है कि वो खूबसूरत झलकती है इनके काम के माध्यम से। साथ ही साथ एक एनजीओ भी आप रन करती हैं, होप बी लिट, आप उसके फाउंडर हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेती हैं। और आप एक फिल्म मेकर हैं, अच्छी लेखिका हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रूही हक जी।
7: आपका बहुत आभार।
6: कैसे हैं आप?
7: बहुत बहुत अच्छा, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा।
6: थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। शाम में कहीं कोई गुस्ताखी तो नहीं हो गई? ठीक है ना?
7: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
6: तो ये जो हंसने की जो अदा है, हंसते मुस्कुराते आप लोगों को कनेक्ट कर पाती हैं, लोगों से जुड़ पाती हैं, मुझे लगता है कि जब आपके साथ लोग जुड़ते होंगे तो निश्चित तौर पर उनके चेहरे पर आप मुस्कान ला पाते होंगे अपने काम के माध्यम से। जिस तरीके से आपने हमें बताया कि आप एक एनजीओ रन करती हैं, तो प्लीज बताइए अपने बारे में, उस एनजीओ के बारे में।
7: डेफिनेटली, होप बी लिट जो मेरा एनजीओ है, जिसका मतलब है कि उम्मीद हमेशा कायम रहे सब में, वो एक ग्लोबल एनजीओ है, लॉस एंजलिस बेस्ड है, लेकिन हमारा काम एक्चुअली हर कॉन्टिनेंट में हो चुका है। हम लोग अफ्रीका जा चुके हैं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑब्वियसली हम वहाँ बेस्ड हैं, और इंडिया में भी हमारे बहुत काम चलते हैं। और अभी हमारा रुख मेंटल हेल्थ की ओर जुड़ा है, बिकॉज सोशल मीडिया, जैसे कि आप जानते हैं, एक एपिडेमिक बनता जा रहा है अमंगस्ट द यूथ, तो हम उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ वेलनेस पे फोकस किया जाए। तो अभी हमारा जो नया विंग है वो उस पे काफी फोकस्ड है।
6: क्या बात है, बातों बातों में लिसनर्स से एक इशारा हो चुका है कि जिस सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं, मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। और सच बात तो ये कि भागती दौड़ती जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह से जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें, परेशानी हमारे सामने आ रही हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रूही हक जी। बहुत सारी बातों का जो सिलसिला लगातार जारी है, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। जब कम्युनिटी का हम जिक्र करते हैं यानी कि एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते समुदाय की बातें हम कर रहे होते हैं, और इसी संबंध में बात करने के लिए आज एक एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप हैं रूही हक, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, लॉस एंजलिस बेस्ड इनकी कंपनी है और आप ग्रेटर नोएडा में हैं। और इस वक्त बहुत सारी बातें, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी, इनका जो एक NGO है वो रन करती हैं होप बी लिट, जो कि एक सामाजिक सरोकार रखता है। और इस संबंध में जैसे कि मैं बात कर रहा था ऑफेयर कि ये लोगों के बीच में जाती हैं, उनके हक की बातें होती हैं, कहीं अंधेरा आए तो उसकी ज़िंदगी में उजाला लगाने का काम करती हैं, उजाला लाने का काम करती हैं। तो जो एक विषय था, जो एक टॉपिक था, इशारा था कि हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो रूही जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कब आपको लगा कि मानसिक स्वास्थ्य के विषय में मुझे बात करनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए? आपने ये भी मुझे बताया था कि इसके बारे में आपने एक कोर्स किया है और सीखने समझने के लिए आप बाहर भी गए। कितना समय आपको उस कोर्स में लगा और क्या आप महसूस करती हैं कि किस वजह से लोगों का स्वास्थ्य डिस्टर्ब है मेंटल हेल्थ के लिए?
1: तो हमारे मेरा जो नॉन प्रॉफिट है उसमें 3-4 विंग्स हैं, और एक ओरल हेल्थ हमारा एक फोकस रहा है जिसमें कोलगेट, हेनरी शाइन जैसे बहुत बड़ी कंपनीज जुड़े हैं। मैंने देखा था कि ओरल हेल्थ में ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है, सिर्फ बताया जाता है क्या बीमारी है। तो वो हमारी शुरुआत थी, और हम लोग लॉस एंजलिस स्कूल्स में ह्यूमन वैल्यूज विद एजुकेशन पे भी काम कर रहे थे। अब इस सब के दौरान जब हम मेंटल होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, हमने देखा कि कैंप्स में हम बाकी सर्विसेज फिजिकल फोकस दे रहे थे और मेंटल एपिडेमिक बहुत ही ऑब्वियस वे में, जो कि अभी आप देख रहे हैं दुनिया के हालात हैं, बहुत डिस्टर्बिंग रहता है। और एक सोशल मीडिया स्क्रोलिंग में आई एम श्योर कि सब लोग कनेक्ट होंगे कि जब आदमी स्क्रोल करता है तो उसकी जो न्यूरोलॉजिकल सेंसेस हैं वो कितने सेंसरी चेंजेस उसमें होते हैं, ये जब आप रिसर्च करेंगे तो यू विल बी रियली शॉक्ड। और वो सब मैं उसमें घुसी क्योंकि मैं जब काम कर रही थी गाँव में या शहर में बच्चों के साथ, यूथ के साथ, पेरेंट्स के साथ, मैं देख रही थी कि मेंटल हेल्थ जो हम इग्नोर कर रहे हैं वो एज एन एपिडेमिक बढ़ता ही जा रहा है। बिकॉज फिजिकली तुम टच करके निकल सकते हो, लेकिन मेंटली बहुत चीज़ें फिजिकली आपको अल्टीमेटली यू नो इफेक्ट करती हैं। तो जड़ से उस चीज़ को उखाड़ने के लिए दोनों चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और सोशल मीडिया आजकल जो कि एक यू नो बून है, हैज़ आल्सो बिकम अ कर्स। इट्स अ वेरी थिन लाइन। तो वो थिन लाइन पे मुझे फिर जब फोकस हुआ तो मैंने कहा फिर मेंटल हेल्थ, ब्रेथ वर्क जैसे हमारे प्राणायाम है, मैं योगा टीचर रह चुकी, मैंने ऋषिकेश में किया हुआ है। लेकिन वो क्या होता है कि इंडिया में हम बहुत वास्ट, अब कौन सा बच्चा इतना लंबा प्राणायाम का कोर्स करेगा? बट एक सोमैटिक ब्रेथ वर्क, मैंने रेफ्यूजी कैंप्स में काम किया है, तो जैसे बॉम्ब के बाद पैनिक होता है उसमें कितने सिंपल ब्रेथ टूल्स कितना इम्पैक्ट करते हैं, लोगों की जनरेशनल ट्रॉमा कैसे आती है। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो कि 3-4 मिनट में आप एक दो चीज़ें छोड़ के जा सकते हो, मुझे वो बहुत इंटरेस्ट आया और मैं उसमें फिर मैंने 3-4 कोर्सेज किए।
0: सो लिसनर्स, कहने का मतलब ये है कि यहाँ जिक्र हुआ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, और बात हुई योग के बारे में। सच बात तो ये कि भागती दौड़ती जिंदगी में अगर आपने संतुलन नहीं बनाया तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने बहुत ज्यादा आ सकती हैं। और जब योग का जिक्र हुआ है तो मैं कहूंगा कि आप योग करिए, अपने आप को निरोग रखिए और देखिएगा कि जिंदगी पहले से बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आप चाहते हैं कि आप रुपया कमाएं, आप ये भूल जाते हैं भागती दौड़ती जिंदगी में कि आपकी सेहत आपसे दूर जा रही है, कोसों दूर जा रही है, और वही रुपया आपकी सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए खर्च होता है जब आप बीमार होते हैं। और ऐसे ही आप मानसिक बीमार हैं, मानसिक रोगी हैं। इसी संबंध में बात करने के लिए, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ी हुई हैं रूही हक जी। बातों का जो सिलसिला लगातार जारी है सो कहीं जाएगा मत। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। ये है ग्रेटर नोएडा का आपका अपना रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और एक्सपर्ट के तौर पर आज मेरे साथ जुड़ रही है रूही हक जी, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, लॉस एंजलिस बेस्ड इनकी कंपनी है और कश्मीर से ताल्लुक रखती है। साथ ही साथ आर्मी बैकग्राउंड से भी आप आते हैं और खुद का एक एनजीओ है जिसका नाम है होप बी लिट, आप उसकी फाउंडर हैं। लोगों के बीच में जाती हैं, बच्चों के बीच में आप जाती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो एक बार फिर से रूही जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: कैसा लगता है जब आप लोगों के बीच में जाती हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके दुख को आप पहचानती हैं, उनके दुख को दूर करने का काम करती हैं। मैं सुन रहा हूं, समझ रहा हूं कि आप लोगों के बीच में रोशनी लाने का काम करती हैं और सच में आप रोशनी ला रहे हैं, क्योंकि आपने हमें बताया था कि आप लोगों के जहां लोग रहते हैं वहां अंधेरा है, वहां लाइट्स नहीं है, आप लाइट तक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकता हूं कि आप नो डाउट कि आप लोगों के जीवन में रोशनी ला रहे हैं। तो कैसा फील करते हैं जब आप लोगों से मिलती हैं धरातल पर ऑन ग्राउंड?
1: तो एक चीज मैंने देखी है कि क्योंकि मेरे डैड आर्मी में थे तो हम हर दो साल में नए शहर जाते थे, तो वो अडेप्टेबिलिटी बहुत आनी पड़ती है, मतलब कोई चॉइस ही नहीं है। हर दो साल आप नए लोगों से मिलते हैं और नए लोगों की कल्चर और उनके अलग दुख और उनके अलग सुख वो सब देखना पड़ता है। तो इसी के साथ में बड़ी हुई और फिर कहीं भी जाना, किसी भी देश में जाना, बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग आती है कि सभी अपने हैं। यही सिखाया जाता है फौज में कि हम सभी एक देश के हैं और सभी अपने हैं। बट ये मैंने नोटिस किया कि हम लोग जब से रोड में भी चलते हैं या कहीं पे भी होते हैं, अगर हम अपने कम्युनिटी में ही देखें तो हमें बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटीज दिख जाएंगे जो कि काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं। तो आई थिंक वही मैंने इग्नोर नहीं की और इसलिए मुझे ये सारी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। जैसे मैं कनॉट प्लेस में थी और वहाँ मैंने ये जगह देखी जो कि एक इतनी लिट अप एरिया के बीच में है और इतने अमीर एरिया के बीच में है, और वहाँ पे सवेरे जाने के लिए आपको अपने फ़ोन के टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है। और जब आदमी का दिमाग एक इतने उजाले से, वो भी यू नो मई की धूप में दिल्ली में एक अंधेरे गली में जाता है 12 बजे दोपहर को, वो भी एक जारिंग मेंटल एस्पेक्ट होता है। तो वो मैं इतनी बार गई वहाँ कैंप करने, मैंने वहाँ ओरल कैंप किया, हेल्थ कैंप किया, लेकिन ये लाइट मुझे हमेशा खटकती रही और मैं उनसे पूछती रही कि आपको क्यों नहीं खटक रही है। तो लोगों ने कहा कि हाँ आदत हो गई है, लेकिन ऐसी आदतें क्यों हम डालें। तो मैं सोच रही थी पहले कि गवर्नमेंट से बात करूं, क्या करूं, लेकिन फिर मेरे को सोलर लाइट का आया, बिकॉज सस्टेनेबल एनर्जी वैसे भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और इसमें किसी को बिल नहीं आता है और धूप यहाँ बाकायदा रहती है। तो मैंने बहुत सारे पैनल्स और ये सब में हमने ट्रायल किए, क्योंकि मैं खुद, मेरे को केबलिंग वगैरह का बहुत शौक है और इस कॉलोनी में इतने केबल्स हैं, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट रहा कि रूफ से वो केबल नीचे कैसे आएगा और किस लाइट से जुड़ेगा और उसकी कैपेसिटी किस कितनी मेगाहर्ट्ज़ की रहेगी। तो एज अ प्रोजेक्ट मैंने उसको उठाया और आज की डेट में हमने काफ़ी स्ट्रीट्स को लाइट दे दी है। और मतलब मैं जब उन गलियों में जाती हूँ तो लोग आके बोलते हैं कि दीदी हम गिर जाते थे और आज हम खेल पाते हैं यहाँ पे, और अब मुझे सिक्योरिटी लग रही है और अब मैं कैमरा लगाने की सोच रही हूँ विद व्हाट्स गोइंग ऑन। तो यही है कि आदमी अगर चाहे तो बहुत आसानी से अपने दोस्तों के बीच में ही ये कर सकता है, और मैंने अपने दोस्तों के साथ ही शुरू किया। मैंने इंतजार नहीं किया कि कोई बड़ी एनजीओ आएगी और कुछ काम करेगी, और ये हर इंसान कर सकता है, बस अपने दिल और दिमाग को खुला रख के देखे तो फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी।
0: बहुत खूबसूरत एक शेर है, मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। और कहते भी हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा तो मिलकर बोझ उठाना। मैं समझता हूँ कि ये जो पहल होती है वही एक टफ समय होता है, जहाँ एक शुरुआत हो जाती है तो निश्चित तौर पर 10 लोग आप महसूस करते होंगे कि 10 लोग आज आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन वही कश्मकश में अगर इंसान रुक जाए, थम जाए, बैठ जाए, तो मुझे लगता है कि उसका जो सपना है वो सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। अरुई जी, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कुछ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, कि जब आप इन लोगों के बीच में जाती हैं तो किस तरीके की दिक्कतें, परेशानियां इनके सामने और आती हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ का जो एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो कोई एक ऐसा गाना जब आप बहुत परेशान रहती हैं, दिल को सुकून चाहती हैं, म्यूजिक के आसपास आप रहती हैं क्योंकि आप एक फिल्म मेकर हैं, तो एक गाना जो आप हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहती हूँ वही गाना मैं आपके लिए, अपने लिसनर्स के लिए प्ले करेंगे।
1: मुझे तो बहुत पुराने गाने पसंद है,
0: चलेगा,
1: तो वो है ना, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, वो मेरा बहुत फेवरेट।
0: बहुत खूबसूरत लाइन है, बहुत खूबसूरत लाइन है। तो चलिए दोस्तों, ये गाना हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं, तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ और स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान हैं। आप एनजीओ रन करती हैं, आप उसकी कर्ता धर्ता हैं, यू कहें अंग्रेजी में तो फाउंडर हैं। एनजीओ का नाम है होप बी लिट और आप टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, यानी कि एक तरफ ये काम चल रहा है, दूसरी तरफ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। लॉस एंजलिस बेस्ड आपकी कंपनी है और कश्मीर से आप ताल्लुक रखती हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। और वही जो खूबसूरती है वो आपके अंदर व्यक्तित्व में झलकती है कि लोगों से मिलना, बातचीत करना, उस मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ना। आप है रूही हक जी, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
0: ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। क्या महसूस करती हैं जब आप धरातल पर जाती हैं, ऑन ग्राउंड जाती हैं, कि उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो मानसिक अस्वस्थ हैं, वो खुश रहना चाहते हैं, वो चाहे रुपयों की बात हो, चाहे वो एक लाइट का एग्जांपल हो जैसे आपने हमें खुद बताया, इसके अलावा पढ़ाई की बातें हैं, घर गृहस्थी की बातें हैं, घरेलू हिंसा है, तो किस तरीके से उनको आप दूर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं?
1: मैं साइकियाट्रिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने थेरेप्यूटिक टूल्स किए हुए हैं, तो ये जो टूल्स होते हैं वो ज़्यादा आई थिंक ईजी होते हैं टू मैनेज, बिकॉज हमारा अटेंशन स्पैन भी बहुत कम है आज की डेट में। तो वो टूल्स सिंपल एक क्राई होता है, जैसे मैं से अफगानिस्तानी वुमेन, या फिर अभी रेफ्यूजी कैंप्स में हम लोग जॉर्डन में थे मिडल ईस्ट में, तो वहाँ की औरतों के साथ अगर वो एक रोर होता है, ये सिंपल टूल्स होते हैं जो कि मतलब पीपल यू नो पीपल कैन गूगल, इससे इतनी यू फील सो इंडिपेंडेंट बिकॉज यू जस्ट स्पेंड टू मिनट्स डूइंग दैट लिटिल थिंग। तो ये जो टूल्स हैं ये बहुत पावरफुल हैं और गूगल करके लोगों को मिल सकते हैं। बट मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो जब हम लोग खुद ग्राउंड पे जाते हैं तो हमारे खुद का मानसिक स्वास्थ्य, बिकॉज यू हैव टू बी स्ट्रांग, किसी का दुख देखना इतना आसान नहीं है, स्पेशली क्योंकि उसको वो दुख हो रहा है, उसको वो तकलीफ हो रही है और आप सिर्फ देख रहे हैं। तो दोनों जगह ये चीजें कायम रहती है कि आपको अपना मानसिक स्वास्थ्य पहले तो ठीक रखना पड़ता है, यू हैव टू रिमेन स्ट्रांग। जैसे मैंने रेप के ऊपर जब मूवी बनाई थी, लोगों ने कहा आपका रेप हुआ क्या? जब मैंने कैंसर के ऊपर बनाई तो बोला आपको कैंसर था क्या? तो वो ये ना कि तुमको नहीं होता है फिर भी वो फीलिंग
0: फील करना
1: और करना चाहिए, हम इंसानियत तो वही है,
0: तभी काम कर पाएंगे
1: समझ पाएंगे कि क्या लेवल है उसके पेन का, एंड यू कैन नेवर बी इन देयर शूज, उनका जो उनके साथ चल रहा है। और मानसिक स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड मेंटली अनस्टेबल है और बहुत ऑब्वियस चीज है, आजकल सटली सबके मानसिक में एंजाइटी और सोशल नर्वसनेस, आप देखिए कि इंटरनेट नहीं होने से क्या पागलपन होता है किसी घर में, जबकि खाना नहीं मिलने से वो पागलपन मैंने नहीं देखा है।
0: सही कहा।
1: तो ये जो चीजें हो रही हैं इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और आज का जो जेंजी और जो यूथ है वो सबसे ज्यादा इससे सफर कर रहे हैं, बिकॉज जो एडल्ट्स हैं वो उसको इतनी खुद वो व्हाट्सएप की दुनिया में खोए हुए हैं।
0: मैं इसी बात पर आ रहा था, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है हमारी जिंदगी में, हम खाना खा रहे हैं, इवन हम बड़े हैं, हम अपने आप को छोड़ते हैं, हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चे इतने आदी हो चुके हैं, अगर बच्चा हमारा रो रहा है हम उसको मोबाइल दे देते हैं, वो चुप हो जाता है और ये जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया है। अब मैं बड़ों की बात करता हूँ, आप और हम बैठे हैं, आप प्रोग्राम कर रही हैं, मुझे जरा सा भी गैप मिल रहा है, मैं सोशल मीडिया की तरफ जा रहा हूँ, मेरे बॉस का कोई मैसेज तो नहीं आया, कहीं से कोई कॉल तो नहीं आया, कहीं से कोई मैसेज मिस तो नहीं हो गया, ये जो सोशल मीडिया का हम से इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं, तो कितना सही है कितना गलत है, कैसे हम अपने आप को इससे बचा कर रखें ताकि जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो स्ट्रांग रहे?
1: ये बहुत ही थिन लाइन है, बिकॉज हम खुद उन बच्चों को बोल रहे हैं कि पढ़ाई के लिए भी वहीं जाओ जहाँ पे इनको बाकी सारी चीजें मिल रही हैं, और इसलिए साइबर ट्रोलिंग राइट, बिकॉज आपको इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए क्या कहा मेरे पोस्ट पर, ये कब रेलेवेंट हो गया इतना ज्यादा, ये कितनी जल्दी इतने सालों में पार हो गया हमें पता भी नहीं चला, करेक्ट। और वो व्यूज सही भी हैं गलत भी हैं, आजकल तो फेक भी हैं, और ट्रोलिंग फेक है, और अब AI आ गया है, तो AI बेस्ड हमने देखा है अमेरिका में बहुत ज्यादा ट्रोलिंग और एक्सटॉर्शन हो रहे हैं, बिकॉज AI कैन डू एनीथिंग, इट कैन पुट यू वेयर यू वर नेवर देयर, और वो कितना डेंजरस है, और इसलिए हम लोग इसमें जाना चाह रहे हैं कि हाउ यू कैन पुल दोज डाउन, जो चीज ऊपर जा सकती है इंटरनेट पे वो नीचे भी आ सकती है, ये वो एक्सटॉर्शन करने वाला भूल जाता है, लेकिन जो विक्टिम है वो ना भूले, वो एफर्ट है हमारी। अब
0: फाइनली अगर मैं इस रैप अप करूं इस प्रोग्राम को, फाइनली आपकी तरफ से अंत में क्या संदेश होगा, हमारे जो लिसनर्स हैं क्या कहना चाहती हैं, और किन भविष्य की योजनाओं के साथ आप आगे बढ़ रही हैं, तो बस आप अपनी बात रख सकते हैं।
1: डेफिनेटली हमारा इनफैक्ट होने वाला है, कुछ इवेंट्स हम कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया और ग्लोबली ऑल्सो, और एक व्हाट नाउ फाउंडेशन करके है जो मुंबई बेस्ड है, डेफिनेटली प्लीज अपने यूथ को बोलिए कि दे लुक इट अप, एंड वो लोग सर्विसेज दे रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं, पुलिस सपोर्ट दे रहे हैं, और साइबर सेल सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे कि अगर कोई एक्सटॉर्ट हो रहा है तो वो चुप ना रहे, पेरेंट्स के साथ मिले, अपने शेयर करे, बिकॉज वो सबसे पहला डर होता है कि ये मैं नहीं थी लेकिन कौन मेरा विश्वास करेगा, ये मैं नहीं था और कौन मेरा विश्वास करेगा. तो पहले वो उनके पास जाएं, उनसे मिले, काउंसलिंग ले खुद की, और फिर यू नो पुलिस के पास जाएं. और ये चीजें हटाई जा सकती हैं, मिटाई जा सकती हैं. टेक्निकल टूल्स आर एज पावरफुल फॉर द इविल एज दे आर फॉर द गुड.
0: सो हाउ टू कनेक्ट
1: व्हाट नाउ और होप बिलेट, दोनों के सोशल मीडिया पे जाएं. वहां पे कुछ नंबर्स भी लोकल दिए गए हैं जो कि वो कॉल कर सकते हैं एंड सपोर्ट विल स्टार्ट राइट देयर.
0: ठीक है, सोशल मीडिया का कोई लिंक अगर आप शेयर करना चाहें, कोई पर्टिकुलर कोई नंबर हो जो आप बताना चाहें जिसके जरिए.
1: तो होप बिलेट, दे कैन गो ऑन होप बिलेट एट HOPEBLIT एंड दे कैन ऑल्सो गो ऑन एट WHTNOW ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे नंबर्स मिल जाएंगे. दे कैन रीच अस, मैसेज अस डायरेक्टली. मेरा खुद का अकाउंट है @RUHELZ जिसका नाम है रू हील्स. कोशिश जारी है हीलिंग की, खुद की भी और लोगों की भी. तो वहाँ पे जुड़े और मैसेज करें और उनको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा.
0: हमारी दिली दुआएं आपके साथ हैं. आप यूं ही निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप लोगों के जीवन में रोशनी लाने का काम कर रहे हैं. वाकई बहुत नेक काम कर रहे हैं. मेरी दिली दुआएं, शुभकामनाएं आपके साथ.
1: थैंक यू सो मच. आप गगन है तो हम रूह हैं.
0: हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे. तो मेरे साथ लिसनर जुड़ी रही रूही हक, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, लॉस एंजलिस बेस्ड आपकी कंपनी है. और जैसे कि मैंने बताया कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और होप बी लिट NGO आप रन करती हैं, और बहुत अच्छा विषय जिस पर हमने बातें की, मेंटल हेल्थ के बारे में. ये विशेष कार्यक्रम, ये खास प्रोग्राम आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप मुझे कॉल कर बता सकते हैं. इसके अलावा 90.8FM@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं. और कभी मुलाकात करना चाहते हैं तो शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आप सबके लिए खुले हुए हैं. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन. सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ. हम दोनों को दीजिए अनुमति. नमस्कार.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: सॉन्ग क्रेडिट्स सिंगर्स नेहा कक्कर, रॉमी, अरुण एंड इक्का, रिक्रिएटेड तनिष्क बागची, लिरिक्स शब्बीर अहमद, ओनली ऑन टिप्स ऑफिशियल। सो लेट्स एंजॉय इट ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: रे मनोज, काय मुँह लटकाए बैठा हो, का बात होगी?
1: अब कहो बताऊं भैया, दो दो बेर कोविड को टीका लगवायो, हमसो कही यासु जो प्रमाण पत्र मिलागो ना, आगे बड़ा काम आएगो।
0: तो का हुआ, मिलो ना? तो
1: मिलो तो है, पर याय देख देख के अपना माथा ठोक रो हूँ।
0: क्यों, तेरे नाम में कोई गलती है? पिताजी का नाम कुछ और गेर दियो
1: ना। वे दोनों तो ठीक है, फोटो भी ठीक है।
0: तो का बात है
1: भैया, जब मोबाइल दुनिया हाथ में ले घूमो ना, वाकु नंबर ही गलत गेर दियो।
0: ए तो यहाँ इतने परेशान होने का बात है, छोटी सी गलती है, हो जावे कभी कदार इस गलती।
1: तो अभी वो ठीक ना हो?
0: बिल्कुल होगी। यूं मान लो, अगर या के जैसी दूसरी गलती है, जैसे तुमने दूसरो टीको लगवा लिया हो और वो प्रमाण पत्र में ना लिखो गया हो, विदेश यात्रा को प्रमाण पत्र पे पासपोर्ट का विवरण ना लिखो गया हो, या कोविन पोर्टल पे लॉगिन करने को कोई दूसरे नंबर को उपयोग करो गए हो, यो सारी गलती भी ठीक हो जावे। लेकिन एक बात याद रहे, यो बस एक ही बार ठीक हो गए।
1: अरे एक बार तो ठीक हो जाए, पर याकू करनी क्या होगी?
0: कुछ ज्यादा ना, बहुत आसान है। कंप्यूटर इंटरनेट की जाए थोड़ी सी भी जानकारी है ना, वो आदमी अपने आप या घर बैठे ठीक कर देगा। सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर पे जाके cowin.gov.in टाइप करो। वहाँ के बाद कोविन के होम पेज ऊपर दाईं ओर कोने में दिए हुए रजिस्टर साइन अप पे क्लिक करो। फिर जहाँ मोबाइल नंबर को उपयोग तुमने टीकाकरण के टाइम पे करो, वह नंबर डालो और 6 अंकन को एक ओटीपी आवे, वह वेरीफाई करके तुम्हारी प्रोफाइल खुल जाएगी। वहाँ पे तुम्हारे टीकाकरण की स्थिति दिखाई दे जावे। प्रमाण पत्र में सुधार करने को ऊपर दाईं ओर दिए हुए रेज द इशू पे क्लिक कर दो और वह प्रक्रिया पूरा कर लो। बस होगा तुम्हारा काम, चुटकी बजा चाहिए। या के अलावा अगर तुम्हें कोविड के टीकाकरण प्रमाण पत्र में कोई भी त्रुटि है, तो आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी से भी संपर्क साध सको।
1: रही ना बात, इब करूं प्रमाण पत्र में सुधार।
0: यू जानकारी यूनिसेफ और सुनो शारदा 90.8 FM

0: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
1: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
0: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:06 हो चुका है, 18 तारीख है। हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से हर रोज यही दुआ यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आज का दिन बजरंग बली का दिन, यानी कि मंगल ही मंगल हो, कभी किसी का मंगल ना हो, है ना। और इसके लिए जरूरी है कि सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि यातायात के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं। फिलहाल आज है 18 अगस्त 2026 का ग्रेटर नोएडा और NCR क्षेत्र में मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ का अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। और आसमान में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तापमान और नमी के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया 34 मैक्सिमम रहेगा, न्यूनतम रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस और नमी यानी कि ह्यूमिडिटी जिसे हम कहते हैं उमस के जो चांसेस हैं लगभग 72% से लेकर 75% तक। और हवा की जो गति है वो दक्षिण पश्चिम से 4 से लेकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और NCR की जब हम बात कर रहे हैं तो बात निकल कर ये सामने आ रही है कि NCR का जो मौसम रहने वाला है यानी कि IMD की चेतावनी है कि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम है सिस्टम के वजह से और वहाँ NCR यानी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम में मानसून सक्रिय रहेगा। उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि दिन और रात के समय हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे मौसम में आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा और जहां दिक्कतें परेशानी है वहां से यू टर्न ले लीजिएगा। ट्रैफिक अपडेट के बारे में बातें करेंगे जरूर मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुन शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। ब्यूटीफुल ट्रैक सिर्फ सुन शारदा 90.8 FM पर, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं लेकिन गड्डी पूरे होश आवाज में चलाएगा। ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। आए है क्या बात है, आ जाओ आ जाओ।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
2: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
1: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
2: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। ये एक संक्रामक रोग है जो आनुवांशिक नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब इस रोग की चपेट में आ सकता है। टीबी का 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है। 2 हफ्ते लगातार दवा खाने के बाद बीमारी फैलने का कोई खतरा नहीं रहता। टीबी हाथ मिलाने, शौचालय इस्तेमाल करने, खाना और बर्तन बांटने से नहीं फैलता। आइए टीबी के मरीज से भेदभाव न करें और मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-66-66 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते ज्ञान विज्ञान पढ़ने पढ़ाने की बातें होती हैं, जिंदगी को जीने की बातें होती हैं। जब पढ़ने पढ़ाने का मैं जिक्र कर रहा हूं तो शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिया पर्सपेक्टिव्स ऑन जीएसटी रिफॉर्म्स Empowering citizens and enhancing public awareness for विकसित भारत, जो कि लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। और इसी संदर्भ में बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कल वर्कशॉप हुई थी 17 तारीख को और इसमें भागीदारी रही प्रोफेसर डॉक्टर सचिन भारती। प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन GGSIPU से। तो सर का बहुत बहुत स्वागत है, आइए सुनते हैं सर का क्या कहना है।
4: मैं प्रोफेसर डॉक्टर सचिन भारती हूँ, मीडिया स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। ये जो इनिशिएटिव है शारदा यूनिवर्सिटी का, जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च की स्पॉन्सर्ड सेमिनार ये करा रहे हैं, ये अपने आप में यूनिक है, डिफरेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी से जो स्पॉन्सरशिप है जनरली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को तो मिलती है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बड़ा रेयर है देखने के लिए। और जो टॉपिक भी इन्होंने लिया है वो बड़ा पर्टिनेंट टॉपिक है। इस तरह की टॉपिक की अवेयरनेस काफ़ी कम है यूथ के अंदर, तो ये टॉपिक है जिस पे डेलिब्रेशंस हो रही है आज और कल भी होगी, दो दिन तक ये चर्चा चलेगी, तो बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी में आएंगी समझ में लोगों को, बच्चों को, और उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, न्यूआंसेस हैं, जिससे वो बेनिफिट हो सकें और उस टैक्स सिस्टम को समझ के, जैसे हमारे साथी भी बता रहे थे कि वसूलना जो टैक्स है या टैक्स में कंट्रीब्यूट करना है, उन चीज़ों को बहुत गहराई से समझेंगे और देश में अपने कंट्रीब्यूशन को एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ये मेरा मानना है। और ये वर्कशॉप बहुत फ्रूटफुल होगी कॉन्फ्रेंस और बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं शारदा यूनिवर्सिटी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा महत्वपूर्ण विषय उन्होंने लिया और इस पर वो बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू सर। वाकई अलग हटके सोच, बहुत ही खास बात, यानी कि यूनिक सोच का जिक्र किया उन्होंने, जिक्र किया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को स्पॉन्सरशिप मिलना एक अपने आप में खास बात है। साथ ही साथ टैक्स का जब जिक्र आता है तो सच बात तो ये कि कुछ लोग टैक्स से बचना चाहते हैं, लेकिन सच बात यह है कि टैक्स देना आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि टैक्स से अपने आप को मत बचाइए, क्योंकि जब आप टैक्स देते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं देश में हम आप अपना योगदान दे रहे होते हैं। वर्कशॉप के बारे में भी सर ने बहुत कहा, बहुत अच्छी बात कही और हमें दिली दुआएं, शुभकामनाएं दी।

0: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:23 हो चुके हैं, 18 तारीख है। हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने इशारा किया था कि जब ब्रेक के इस पार आएंगे तो हम बात करेंगे ट्रैफिक की। ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि अगर मैं शारदा विश्वविद्यालय आ रहा हूँ और नॉलेज पार्क में यानी कि MIT वाला जो रोड है उस तरफ से आ रहा हूँ, तो ये समझ लीजिए कि पीक आवर्स में ट्रैफिक जैम हो जाता है, जल्दी होती है। और जिसकी वजह से हमने लोगों को देखा है कि वो एक लेन से निकलकर दूसरी लेन बना लेते हैं, सामने वाले को निकलने का रास्ता ही नहीं देते, और यकीन मानिए कि जाम वहीं से शुरू हो जाता है। और ऐसे में दिक्कतें परेशानी हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में आपको धीरज रखने की ज़रूरत है, समझदारी से काम लीजिए, अनावश्यक तौर पर किसी से उलझिए मत, क्योंकि सुबह सुबह का जो वक्त है हर कोई चाहता है कि सुबह सुबह अच्छी तरीके से आप अपने ऑफिस पहुँचें, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और लेकिन जैसे आपका मूड ख़राब हो जाता है तो दिक्कतें परेशानियाँ बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो आज 18 अगस्त 2026 को दिल्ली NCR और ग्रेटर नोएडा में यातायात अर्थात बोले तो ट्रैफिक की स्थिति बारिश के अलर्ट और निर्माण कार्यों के चलते थोड़ी प्रभावित हो सकती है। और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो सुबह के अपडेट के अनुसार महामाया फ्लाईओवर सेक्टर 168-144 कट और सेक्टर 148-152 कट के आसपास यातायात सामान्य रूप से चल रहा है। और चिल्ला बॉर्डर और सेक्टर 50 को यानी कि दिल्ली को जोड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर रूट और स्पेक्ट्रम मॉल सेक्टर 50 मार्ग पर सुबह वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से देखी गई है। और बारिश का अलर्ट है यानी कि येलो अलर्ट पूरे दिल्ली NCR में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और जाम की स्थिति यानी कि बारिश के कारण निचले इलाकों में जल भराव बोले तो वाटर लॉगिंग हो सकता है, और जिससे सुबह और शाम के पीक आवर्स में वाहनों की रफ्तार धीमी होने की संभावना है। यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी जाती है, यानी कि इस बात को नजरअंदाज मत करेगा। और अक्सर हमने देखा कि जब हम शाम के वक्त शारदा विश्वविद्यालय से निकलते हैं तो दिक्कतें परेशानियां भी हमारे सामने बहुत ज्यादा होती हैं, तो इसलिए समय से ऑफिस पहुंचे, समय से निकले ताकि कोई दिक्कत परेशानी आपको हो ना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो मंगल ही मंगल हो। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुरु शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। शारदा विश्वविद्यालय यानी कि शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट शारदा विश्वविद्यालय की ओर से एक वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। इनके कल इसका आयोजन बहुत अच्छा रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिया पर्सपेक्टिव्स ऑन जीएसटी रिफॉर्म्स एम्पावरिंग सिटीजंस एंड एनहेंसिंग पब्लिक अवेयरनेस फॉर विकसित भारत, ये एक सब्जेक्ट है जिसमें हो रही है। और इसी संदर्भ में प्रोफेसर रमेश कुमार शर्मा जी, जो कि विवेकानंद इंस्टीट्यूट दिल्ली से हमारे साथ जुड़े रहे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि सब्जेक्ट बहुत अच्छा रहा और क्या क्या कहा उसके बारे में सुनते हैं।
2: मैं प्रोफेसर रमेश शर्मा विवेकानंद इंस्टीट्यूट दिल्ली से हूँ। जिस सेमिनार में मैं पार्टिसिपेट करने आया था, जिसके लिए मुझे आमंत्रित किया गया था, सेमिनार का विषय अपने आप में बहुत अच्छा था और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत 2047 का, उस विजन के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इससे होगा। दूसरी बात यह है कि सेमिनार के ओपनिंग में ऑनरेबल वाइस चांसलर सर का जो स्पीच था, जिसमें दो तीन चीज़ें उन्होंने हाईलाइट किया। एक तो जेन जी जेन अल्फा के पर्सपेक्टिव की बात की, ओल्ड एजिंग प्रॉब्लम्स की बात की, और इसके साथ साथ उन्होंने एक पर्सपेक्टिव की बात की कि ये टैक्सेशन सिस्टम टैक्सेशन पॉलिसी जो है, इसमें जब तक पर्सपेक्टिव लोगों का चेंज नहीं होगा तब तक लोग इसको गलत तरीके से लेते रहेंगे। ये टैक्स जो लिया जाता है या टैक्स का जो संग्रह किया जाता है, ये भारत सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं के लिए है, जो वीकर सेक्शन है उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छा इसका आयोजन है। इसके लिए मैं स्कूल की डीन रितु सूद जी को, कॉन्फ्रेंस कन्वीनर आकिब जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी हां, अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर रमेश कुमार शर्मा जी को, जो कि विवेकानंद इंस्टीट्यूट दिल्ली से आ पाते हैं, और साथ साथ एक विषय जो हम लोगों ने चुना उसके बारे में उन्होंने तारीफ की, बात की वर्ष 2047 के विकसित भारत के बारे में, विजन के बारे में, मिशन के बारे में, और साथ ही साथ जेन जी के बारे में बातें हुई, टैक्स के योगदान के बारे में। जब आप टैक्स देते हैं तो सबसे पहले बात यही आती है कि हम भी उस दायरे में आ रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है। दूसरी बात ये होती है कि जब आप टैक्स देते हैं तो निश्चित तौर पर भारत में कहीं ना कहीं आप अपना योगदान दे रहे होते हैं। आज भी वर्कशॉप आयोजित की जा रही है शारदा विश्वविद्यालय के सागर में, तो आप इसमें शिरकत कर सकते हैं। और क्या है खास जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल यू सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
1: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
0: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
1: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
0: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
2: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
0: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
1: कल नहीं, अभी।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।

गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुन शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:38 हो चुके हैं। 18 तारीख है, मंगलवार का दिन है और ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, आपको कोई दिक्कत परेशानी न हो। अगर दिक्कत परेशानी है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि वर्तमान समय में सोचना पड़ेगा कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि अगर आपने बासी, तला भुना या क्वालिटी फूड का, क्वालिटी प्रोडक्ट का ध्यान नहीं रखा तो दिक्कतें आपके सामने बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो ऐसे समय में आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और जब मौसम बदलता है, मौसम के साथ साथ त्यौहार भी आते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम देख रहे होते हैं कि मार्केट में भी मिलावट का दौर शुरू हो जाता है। और जो खाद्य विभाग की जो टीमें हैं, प्रशासन है, शासन अपना काम कर रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, ये भी हम चाहते हैं। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लापरवाही न बरतें। बरसात के मौसम है, कुल मिलाकर आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, लापरवाही बिल्कुल भी न बरतेगा, है ना। और जब घेवर का जिक्र होता है, घेवर आए हाय, मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि बरसात का मौसम और रक्षाबंधन का मौसम, और जब ये सब मौसम चल रहा होता है तो तबीयत खराब होने के चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपको ब्रेक लेना पड़ जाता है, आपको नुकसान होता है, आपके ऊपर वर्क लोड पड़ जाता है, और सबसे बड़ी बात जो है कि वो शारीरिक जो पीड़ा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो प्लीज़ ईश्वर के वास्ते, खुदा के वास्ते एक्सरसाइज करिए, अपनी सोच को उम्दा रखिए, लोगों से मिलिए, हंसिए, खूब बातें करिए, लेकिन अपने आप को स्वस्थ जरूर रखिए क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। इंस्टीट्यूट ऑल यू सुरशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ 9:40 18 तारीख। और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे, आज हमारे यहाँ शारदा विश्वविद्यालय के आंगन में, प्रांगण में सेकेंड डे है वर्कशॉप का, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिया पर्सपेक्टिव्स ऑन जीएसटी रिफॉर्म्स, एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड एनहेंसिंग पब्लिक अवेयरनेस फॉर विकसित भारत। इस प्रोग्राम में आप शिरकत कर सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सुरक्षित चलिएगा, गुड मॉर्निंग।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 17 अगस्त का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि कल खास दिन रहा। एक विषय को हमने चुना जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिया पर्सपेक्टिव्स ऑन GST रिफॉर्म्स एम्पावरिंग सिटीजंस एंड इनहेंसिंग पब्लिक अवेयरनेस फॉर विकसित भारत। ये ऑर्गेनाइज किया गया शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट शारदा यूनिवर्सिटी की तरफ से विश्वविद्यालय के आंगन में इस प्रांगण में, और इसमें शिरकत की। हमारे साथ जुड़ी रही मिस शालिनी कपूर जो कि सीनियर जर्नलिस्ट और पॉडकास्टर हैं। बहुत अच्छी बातें इन्होंने की।
1: हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप सुनना शुरू कर चुके हैं। सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूँ आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। मुझे आप यूट्यूब पर मेरे 3 अलग अलग पॉडकास्ट में सुनते हैं, टेक ऑफ विद SKT, चिंतामणि विद SKT, पैसा बोलता है विद SKT। वेल, मैं शालिनी कपूर तिवारी आज शारदा यूनिवर्सिटी और इस इवेंट में यहाँ पर पहुँची हुई थी। एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा अनुभव रहा। स्टूडेंट्स बहुत इंटरैक्टिंग थे और बहुत शानदार अनुभव रहा GST को लेके। हालांकि हमने यहाँ पे चर्चा की, GST ये माना जाता है कि वो कोर सब्जेक्ट नहीं है जिसे स्टूडेंट्स सुनना पसंद करेंगे, पर मुझे ऐसा लगा कि न सिर्फ GST की जो टिपिकल बातें हैं वो स्टूडेंट समझ पाए, इसके अलावा भी आगे ग्रोथ में भी उनके मदद करेगा शारदा यूनिवर्सिटी। आई एम श्योर जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं वो बहुत अच्छे से आगे तैयारी करें, उनके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। और हमेशा ही शारदा यूनिवर्सिटी आना, यहाँ की फैकल्टी के साथ टाइम बिताना, स्टूडेंट्स के साथ टाइम बिताना अच्छा रहता है।
0: हमारे साथ जुड़ी रही मिस शालिनी कपूर जो कि सीनियर जर्नलिस्ट और पॉडकास्टर हैं। बहुत अच्छी बातें इन्होंने की, और इन्होंने जिक्र ये भी किया कि हमारा विकास समझिए देश का विकास, और देश का विकास समझिए कि हमारा विकास। निश्चित तौर पर जब आप और हम कोशिश करते हैं अपने विकास की तो कहीं ना कहीं देश का विकास भी हो रहा होता है। तो आप कोशिश करते जाइए और मेहनत करिए। स्टूडेंट्स के बारे में भी मैडम ने बहुत अच्छी बातें कही कि जो एक बॉन्डिंग है वो देखते ही बनती है। इस जैन जी को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है सेकंड डे, इस वर्कशॉप में आप पार्टिसिपेशन अपना दे सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो कहीं जाएगा, मैं सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।
1: हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप सुनना शुरू कर चुके हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: बिल्कुल आपने सही सुना कि सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। उत्तर प्रदेश में क्या खास है उसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि आउटसोर्स कर्मिकों के मानदेय में जुलाई से 5% की बढ़ोतरी की जा रही है और ये फैसला अभी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनके लिए लाभकारी रहेगा। और उत्तर प्रदेश में आप हैं, हम हैं, ग्रेटर नोएडा में हमारे आसपास क्या खास हो रहा है उसके बारे में भी जान लेते हैं। पीक आवर्स के दौरान लगने वाले भीषण जाम से निपटने के लिए डीसीपी ट्रैफिक ने स्थानीय निवासियों के साथ एक बैठक की है। जमीनी सर्वे की अगर मैं बात करूं तो प्रमुख ट्रैफिक जाम वाले जो स्थान है ग्राउंड सर्वे वहां हो रहे हैं और हॉटस्पॉट की पहचान की जा रही ताकि वहां स्थायी समाधान लागू किया जा सके। और यूपी T20 लीग चल रही है तो नोएडा सुपर किंग्स की हार हुई है और ये एक अपडेट थी। और साथ ही साथ वक्त का इशारा हो चुका है, वक्त का जब इशारा होता है तो मैं लेता हूं अनुमति। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। जिंदगी बहुत खूबसूरती से प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए और फिर कल होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार। मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ 90.8 FM पर। क्या बात है, आए हाय।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
4: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
3: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
4: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
3: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
4: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
3: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
4: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
3: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
5: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
6: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
5: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर at Sharda University.

0: हंसते हंसते कट जाएंगे रस्ते। राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूँ गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूँ अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से। ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से अगर दुआओं में कुछ मांगना चाहते हैं तो यही मांगेगा जो अक्सर हमने सुना है, पढ़ा है कि प्रथम सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया। इसी प्रकार से कई सारे सुख बताए गए हैं, लेकिन जब बात हो आपके स्माइल की तो जाहिर सी बात है कि इस मुस्कान के पीछे राज क्या है, इस राज को हम सब जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से इस मुस्कान को मेंटेन करके रखा जाए। जाहिर सी बात है कि इस संबंध में बात करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, तो एक कम्युनिटी कनेक्ट के तहत हम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, एक रابطہ हम यहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस संबंध में मेरे साथ दो खूबसूरत मेहमान जुड़ रहे हैं, बहुत बड़े अनुभव के साथ आप आते हैं। आप हैं स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेस से डिपार्टमेंट ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर पल्लवी शर्मा। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: मैंने करेक्ट प्रोनाउंस किया या नहीं, क्योंकि मेरे सामने बहुत दिनों के बाद ये वर्ड आया। चलिए आप यूं ही मुस्कुराते रहे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरे जो शख्सियत है, बहुत बड़े अनुभव के साथ आप आते हैं और आप भी इसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। आप हैं प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर सुखदीप सिंह जी, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, ये आपका डिपार्टमेंट है। तो सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, शुक्रिया।
0: आप लोग कैसे हैं पहले मुझे ये बताइए।
2: मजे में,
0: वेरी गुड। और मैम आप कैसे हैं?
1: खुश।
0: वेरी गुड, मजे में रहिए, खुश रहिए। और ईश्वर से ही मेरी परवरदिगार से कामना है कि हम सब खुश रहें। कहा जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यही हमारी सोच है। तो मैम सबसे पहले हम ये जानना समझना चाहते हैं, जिस विषय के साथ आज रेडियो पर आप आई हैं, हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे अपने दांतों का हम ख्याल रखें, कैसे अपनी मुस्कान को हम बरकरार रखें। तो जो सबसे पहले जहन में यही सवाल आता है कि मुस्कान क्यों हमारे लिए, हम सबके लिए जरूरी है?
1: मुस्कान जरूरी है क्योंकि वो हमारी खूबसूरती बढ़ाती है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरी बात, मुस्कान हमारी पर्सनालिटी में बढ़ावा देती है, हमें लोगों से कनेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है स्माइल करना
0: जी,
1: है ना। आप मुस्कुराइए तब आपके साथ लोग जुड़ते जाते हैं
0: जी।
1: सो मुस्कान हमारे सिर्फ आत्मविश्वास के लिए ही नहीं जरूरी है, मुस्कान हमारे रिलेशनशिप्स के लिए जरूरी है, हमारी पर्सनालिटी के लिए जरूरी है। और मुस्कान एक तरीका है ये जताने का कि हम कितने आभारी हैं, खुश हैं जो फॉर द लाइफ दैट वी हैव।
0: यस यस। तो सर मैम ने जो कहा इसमें कुछ आप ऐड ऑन करना चाहेंगे?
2: मुस्कान स्माइल जो है कि लैंग्वेज है, ये कम्युनिकेशन जो इंसान करता है, इंसान जो हम हैं, हम सोशल एनिमल्स हैं, सामाजिक जानवर कहते हैं इसको। तो हमारी जो भाषाएं हैं बहुत सारी हैं जिसे मुंह से बोलते हैं हम, लेकिन उसके लिए हमें एफर्ट करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, खपत करनी पड़ती है। लेकिन स्माइल एक ऐसी लैंग्वेज है, आप किसी पे स्माइल करिए, आपको अपने आप फ्री में तुरंत जवाब आएगा स्माइल से, स्माइल का जवाब। तो ये हमारे को भगवान ने, एक नेचर ने बहुत बड़ा एक
0: तोहफा
2: स्ट्रेंथ दी है कि आप किसी पे स्माइल करे, वो स्माइल करेगा। तो लेकिन स्माइल के पीछे बहुत मेहनत लगती है, डेंटिस्ट को बनाने के लिए स्माइल। अच्छा। लेकिन भगवान ने हमको फ्री में दिया है, आपको सिर्फ बस अपने लिप्स को हिलाना है और दांत दिखाने हैं, लेकिन ये भी कई बार लोग नहीं कर पाते।
0: आपने जो बात एक छेड़ दी, यहाँ पर भी एक सवाल हमारे सामने रख ही दिया है लिसनर्स के सामने कि जो डेंटिस्ट होता है उसको बड़ी मेहनत लगती है कि अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है किसी पेशेंट के साथ, वो जो मेहनत लगती है उसके बारे में आप प्लीज बताइए कि किस मेहनत की बात आप कर रहे हैं।
2: सो इस मेहनत को हम एकदम जीरो कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक डेंटिस्ट और एक मरीज पेशेंट
0: जी।
2: अब अगर कोई भी, अब मरीज, हर एक इंसान मरीज नहीं है, इंसान मरीज बनता है। कैसे बनता है? वो खुद बनाता है अपने आप को। अगर हर एक इंसान बचपन से, जब से पैदा हुआ है, बच्चे की उम्र से, एक साल की उम्र से, जब से उसका पहला दांत निकलता है, अगर वो एक डेंटिस्ट के पास जाए, अपना रूटीन चेकअप कराता रहे, तो वो कभी मरीज नहीं बनेगा जिंदगी में, और डेंटिस्ट को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अफसोस कि आम तौर पे देखा गया है एक्सपीरियंस में कि लोग सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें दर्द होता है या कोई दिखने में परेशानी आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, अफसोस। सो अगर रहते वक्त में लोग आ जाएं, चेक कराते रहें, तो ये हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत से मेरा मतलब ये था कि यस, जब तकलीफ हो जाती है फिर इसे रिपेयर करना पड़ता है, तो उसमें फिर इलाज करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कहाँ तकलीफ है, क्या दिक्कत है, वगैरह वगैरह
0: जी। डॉक्टर पल्लवी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इसी बात को हम आगे लेकर जाएंगे, कुछ एक रिसर्च के जरिए हमने क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं कि व्हाट इज द लिंक बिटवीन ओरल हाइजीन एंड अपीयरेंस ऑफ स्माइल, हाउ डज इट इंपैक्ट कम्युनिकेशन। मैं अपने श्रोताओं को इसका रूपांतरण बताना चाहूंगा। दोस्तों, मौखिक स्वच्छता और मुस्कान के बीच क्या संबंध है और ये संचार को कैसे प्रभावित करती है, तो इसी संबंध में डॉक्टर से जानते हैं इसका आंसर जी।
1: थैंक यू। तो मेरी नजर से ओरल हाइजीन और मुस्कान में वही संबंध है जो जय और वीरू में है।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: देखिए, अगर आपके दांत गंदे हैं
0: जी,
1: पीले हैं, मसूड़ों में सूजन है, मुंह में बदबू है, तो आप चाहकर भी नहीं मुस्कुरा पाएंगे। आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा बात करने का, मुस्कुराने का। और जैसे अभी सर ने बताया कि मुस्कुराहट जरूरी है आत्मविश्वास के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। जहाँ ओरल हाइजीन खराब है वहाँ मुस्कुराहट में कॉम्प्रोमाइज है, और जहाँ मुस्कुराहट नहीं है वहाँ आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और जहाँ कॉन्फिडेंस नहीं है वहाँ कम्युनिकेशन तो इफेक्टिव हो ही नहीं सकता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बात में अगर आपको लगता है कि डॉक्टर पल्लवी की बात को हम और आगे लेकर जा सकते हैं, मेरा सोचना मानना ये है, कुछ और अगर आप कहना चाहें।
2: देखिए, इंसान की जो सेहत है, ऐसा माना जाता है, हमारी किताबों में लिखा है कि जो मुंह है इंसान का, जो ओरल कैविटी है, माउथ है, ये गेटवे टू द बॉडी है, ये द्वार है हमारे पूरे शरीर के अंदर की सीक्रेट्स का, अंदर की कितनी आपकी हेल्थ ठीक है जानने का। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो पहले मुंह में दिखाई देती हैं, फिर बॉडी में आपको पता लगता है किसी को कि अंदर बीमारी भी थी। लेकिन अफसोस की बात कि ज़्यादातर लोग अपने मुंह को निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे जो दांत हैं या जो उसके आसपास की जो स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ही भगवान ने स्ट्रांग बनाए हैं, स्टडी है, वो रेजिलिएंट हैं, वो बहुत देर तक अब्यूज़ सह लेते हैं। लेकिन जब वो ब्रेकडाउन होते हैं फिर ऑफकोर्स फिर लोग जाते हैं ठीक कराने, और लेकिन ज़्यादातर वो एक लंबी प्रोसेस है फिर, चाहे वो छोटी सी कैविटी हो, चाहे वो जैसे मैडम ने बताया मसूड़ों की दिक्कत हो, कोई सर्जरी करनी हो, उसमें फिर वक्त लगता है, एक्सपर्टीज लगती है, और फिर जो लोगों का सबसे बड़ा डर है आज की तारीख में कि डेंटिस्ट्री बहुत महंगी भी है।
0: तो क्या महंगी है या नहीं?
2: देखिए, महंगी जो है ये लफ्ज़ बहुत ही रिलेटिव है। जो चीज़ मुझे महंगी लगती है आपको शायद सस्ती लगती हो, और उसमें बहुत सारे इसके बहुत सारे रंग हैं इसके। महंगा सिर्फ पैसे की वजह से नहीं होता है, वैल्यू की वजह से भी होता है। अब कोई चीज़ मेरे लिए, अगर मेरा भी पेन है, अगर ये टूट जाए अभी इसलिए मैं दवाई लगता हूँ, इसकी एक्चुअल MRP 10 रुपये है, पर वैल्यू मेरे लिए इसकी हज़ारों में है अगर ना मिले टाइम पर मेरे। तो इसलिए सेहत जो है, जैसे मैंने कहा, ये फ्री है, मुफ्त है, हर एक के पास भगवान ने बांट रखी है, पर उसका हम ख्याल नहीं करते हैं। तो डेंटिस्ट्री महंगी कभी कभी पैसों की वजह से हो जाती है, क्योंकि हमारे जो हमारे मशीन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं, वो काफ़ी महंगे आते हैं और ज़्यादातर इम्पोर्टेड हैं। ऑफकोर्स आजकल तो खैर इंडिया में सब कुछ बनता है, सब कुछ से मेरा मतलब है जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो जाती है, पर कुछ चीज़ें अभी भी हम बाहर से मंगाते हैं, यूज़ करते हैं, तो उस वजह से महंगी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक लेकिन कहना चाहूँगा, फीस जो है वो एक्सपीरियंस, स्किल और जगह की वजह से होती है
0: जी,
2: सिर्फ मटेरियल से नहीं होती है।
0: सर, आपने जो जिस तरीके से एक परिभाषा दी है आपने, डॉक्टर पल्लवी ने बहुत खूबसूरत उसको यू कहें कि हमारे लिसनर्स तक पहुंचाया, कि किस तरीके से हम अपने दांतों का ख्याल रखें, किस तरीके से मुस्कान का ख्याल रखें, और जब आपकी मुस्कान रहती है तो निश्चित तौर पर एक कॉन्फिडेंस आता है। मैं आपकी बात को यहाँ कहना चाहूँगा, जो हमारे साथ लिसनर्स जुड़ रहे हैं, कि आप लोगों का हमारा डेंटल स्कूल है, यानी कि बहुत रियायत दर पर यहाँ ट्रीटमेंट आप लोगों को मिलता है। सो लिसनर्स, आप यहाँ आ सकते हैं, और ख़ास बात यह है कि सर और मैडम की जो टीम है लोगों के बीच में भी जाती है, और कभी कभी वहां से लोगों को लेकर भी आती है, और बहुत सुविधाजनक यहां से ट्रीटमेंट आप लोगों को मिलता है। तो चलिए, इस बात का जो सिलसिला है लगातार जारी है, तो आप मेरे साथ बस यूं ही जुड़े रहिए। अगर आपको लगता है कि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में चार चांद लग जाएंगे। तो कोई आप दोनों की पसंद का एक गाना, या कोई पहले आप बताना चाहें, पहले आप चल रहा है तो ये तो सर आपको मौका दे रहा है, कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट मैम, तो प्लीज आपके दिमाग में कुछ जहन में आ रहा होगा ना।
2: बहुत पुराना गाना है, आई थिंक मुकेश का था, मुकेश जी का, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार।
0: क्या बात है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो यही खूबसूरत गाना सिर्फ आपके लिए कहीं जाएगा। बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम, मेरे यानी गगन के साथ, और दो खूबसूरत मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बातें हो रही हैं आपकी ओरल हाइजीन के विषय में। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर वक्दम, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम राब्ता। और हम आपसे राब्ता कर रहे हैं एक विषय के साथ हाजिर हुए। मेरे साथ दो एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, आप हैं डॉक्टर पल्लवी शर्मा जी और आप हैं डॉक्टर सुखदीप सिंह जी। अपने एक बहुत बड़े फील्ड के साथ आते हैं, बहुत बड़े अनुभव के साथ आते हैं। तो सर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने जो गाना सुनाया, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गाने का आपने चुनाव किया, हमारे भी चेहरे पर स्माइल आ गई और एक छोटी सी एनर्जी आ गई। तो सर, सबसे पहले मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ ब्रेक के आने के बाद कि समटाइम्स चिल्ड्रंस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिट्स, हाउ डू दे इम्पैक्ट ओरल हेल्थ एंड कम्युनिकेशन। सो लिसनर्स, मैं आपको हिंदी में भी बताना चाहूंगा, इसका मतलब ये कि इसका जो अनुवाद है वो हमने किया है, आपके लिए आसान हो जाए कि कभी कभी बच्चों की आदतें अलग अलग होती हैं, ये मौखिक स्वास्थ्य और संचार को कैसे प्रभावित करती हैं, ये मेरा सवाल है डॉक्टर सुखदीप सिंह जी से।
1: ठीक, जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। पहले हम एक्सपेंसिव की बात कर रहे थे, मुंह का और दांतों का ख्याल रखना बहुत ही आसान है और उसकी कीमत ना के बराबर है। हमें सिर्फ दिन में दो बार ब्रश करना है एक नॉर्मल किसी भी टूथपेस्ट के साथ। हमें अगर सीख जाएं, और सीखना चाहिए एक्चुअली, हमें फ्लॉस करना चाहिए। दांतों के बीच की जो जगह होती है उसे हमें कभी साफ़ नहीं करते हैं। हमें दो बार ब्रश करना है, फ्लॉस करना है, मुंह साफ रखना है। जितनी बार खाते हैं उतनी बार अगर हम ब्रश कर लें तो बहुत ही बढ़िया, हमें कभी कोई तकलीफ होगी नहीं। इतना आसान है दांतों का ख्याल रखना।
0: जी,
1: आगे बढ़ते हैं। बच्चों की हैबिट्स के बारे में बात कर रहे थे हम। सो बच्चों में बहुत तरह की हैबिट्स हैं, जिनके बच्चे हैं वो जानते हैं, जिनके नहीं हैं वो देखते रहते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कोई अपनी उंगली में, अपने मुंह में उंगली डालता है, कोई अपनी उंगली चूसता है, कोई अपने नाखून खाता है, कोई बाल खाता है, कोई अपने लिप्स बाइट करता है, कोई जीभ को बाहर निकालता है, वगैरह वगैरह। सो बच्चे बड़े यूनिक होते हैं, बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करते रहते हैं। लेकिन इन इंटरेस्टिंग बातों का कई बार बैड इफेक्ट्स होते हैं, दे हैव बैड कॉन्सिक्वेंसेज। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा अंगूठा चूसता है 2.5-3 साल की उम्र के आगे जाकर के, तो उसके जो ऊपर के दांत है, जो ऊपर का उसका जबाड़ा है, जो जॉ है, जो मैक्सिला कहते हैं हम, वो बाहर को आ जाता है, दांत बाहर आ जाते हैं और उसका फिर हमें इलाज करना पड़ता है। सो अगर किसी भी बच्चे को आप देखते हैं, आपके इर्द गिर्द आपके हों या पड़ोसियों के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, आपके बच्चे में कोई हैबिट है, तो प्लीज़ आप ज़रूर गो टू योर नियरेस्ट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट या कम टू स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज। हमारे यहाँ पर हम ऑलमोस्ट मुफ्त इलाज करते हैं और सब इस तरह की बीमारियों से निजात मिलेगी आपको।
0: बहुत खूबसूरत। और इसीलिए कहा जाता है शारदा विश्वविद्यालय की जो टैग लाइन है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर। हाँ, मेरा बहादुर, यानी कि मैं इसको हिंदी में रूपांतरण करता हूँ कि तुम कहाँ हो, मैं यहाँ हूँ। सर, ये मेरे साथ आ जाता है बहादुर। तो ये बहादुर होता है और सुबह मेरा लाइव प्रोग्राम जाता है जिसमें कि ये मेरे साथ संवाद करता है और अच्छी अच्छी बातें करता है, ये मुझे करेक्ट करता है, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। तो मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सर का जो सवाल का जवाब मेरा सवाल था और जवाब सर का था, और उसमें मैं थोड़ी सी छोटी सी बात ये समझना चाहूंगा कि सर ने कहा कि 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, एक अच्छी आदत है, बच्चों में इस आदत को हमें डालना चाहिए। मैं यहाँ टाइम की बात करना चाहूंगा कि कितना टाइम ब्रश में लगाना चाहिए, एक एटलीस्ट स्टैंडर्ड टाइम जो रहता है।
2: जी बिल्कुल, एक ठीक से ब्रश करने की प्रक्रिया करीब 2 मिनट लेती है।
0: दो मिनट
2: लेती है। कहते हैं अगर आप हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग चलाएंगे तो वो पूरा सॉन्ग खत्म होना चाहिए, तब तक आपका ब्रश चलता रहना चाहिए। और ठीक से ब्रश करने का एक तरीका भी है, हम दांतों को बर्तनों की तरह नहीं घिसना है, है ना। आपको कोशिश करनी है कि अपने हाथ को गोल गोल घुमाएं, अपने ब्रश को थोड़ा गोल तरीके से घुमाएं और ऊपर के मैक्सिला को और मैंडिबल को, ऊपर वाले जबड़ों को और नीचे वाले जबड़ों को अलग अलग ब्रश करें। मुंह को बंद करके नहीं रगड़ना है दांतों को, ऊपर वाले दांतों को अलग से ब्रश करना है और नीचे वाले दांतों को अलग से ब्रश करना है।
0: तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ब्रश करना और कितना टाइम देना। जल्दबाजी में लोग बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं जिसका खामियाजा आगे चलकर भुगतना पड़ता है। तो मैम, जब बच्चों का आप जिक्र कर रही हैं, जैसे सर ने बताया कि नाखून है, बच्चे खा लेते हैं, कुछ और दिक्कतें परेशानी उनके सामने आती हैं, तो इसी से रिलेटेड मैं समझना चाहूंगा कि चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सारी चीजें बच्चों को बहुत नुकसानदायक साबित होती हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहती हैं, किस तरीके से वो अपने दांतों का ख्याल रखें?
2: जैसे सर ने पहले बताया कि ओरल कैविटी इज ऑल्सो अ मिरर टू दी सिस्टमिक हेल्थ, है ना। तो ये चिप्स हैं या कोल्ड ड्रिंक है या बहुत ज्यादा स्वीट्स खाना, वो सिर्फ दांतों के लिए ही हानिकारक नहीं है, वो हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अगर मैं सिर्फ दांतों की बात करती हूँ तो यही ये सारी चीजें एक तो स्टिकी होती हैं, ये दांतों में जाके दांतों के बीच में जाके अटक जाती हैं, फिर ये हमारे दांतों में जो कीटाणु होते हैं जर्म्स होते हैं उनका खाना भी बनती है। तो इन द होल प्रोसेस क्या होता है कि दांतों में कैविटीज हो सकती है, दांतों में कैविटीज हो जाती हैं जो जिनको फिर भरना पड़ता है, या फिर मसूड़ों में सूजन हो सकती है जिसकी वजह से कि ब्लीडिंग गम्स होना या फिर बदबू होना उसकी परेशानी होती है।
0: ठीक है।
2: इसके अलावा बार बार बच्चों को बार बार मीठा खाना, उससे ये प्रॉब्लम एग्रीवेट होती है। अगर आप बार बार मीठा खाते हैं या बार बार चिप्स खाते हैं, बार बार कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इससे ये प्रॉब्लम एग्रीवेट होती है।
1: मजेदार बात ये है कि बच्चों को आपने कहा चिप्स और ये कोल्ड ड्रिंक्स पसंद हैं, और जो कैविटी बनाते हैं कीड़े उन्हें भी यही पसंद है।
0: अच्छा।
1: तो ये बड़ा मजा आ जाता है। तो जो कीड़े हैं वो पार्टी करते हैं बच्चे के साथ, लेकिन बच्चा तो पार्टी करके सो जाता है, लेकिन कीड़े सोते नहीं है। वो दांत के ऊपर बैठ के ये सब खाते हैं और काइंड ऑफ तेजाब बनाते हैं, उस तेजाब से वो दांत घुल जाते हैं, उसी को हम कैविटी कहते हैं।
0: बहुत खूबसूरत, मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहा था और वाकई मानना पड़ेगा आप डॉक्टर साहब कि आपने मेरे दिमाग को पढ़ लिया। तो मैं इस सिलसिले को आगे लेकर जाता हूँ। सवाल तो बहुत है, बातों बातों में सवालों का जवाब आता रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर पल्लवी आपसे ही समझना चाहूंगा, अंग्रेजी में पहले ये सवाल रख लेता हूँ कि हाउ डू यू अप्रोच यंग पेशेंट्स हु आर सेल्फ कॉन्शियस अबाउट देयर टीथ और स्माइल, स्पेशली इन द स्कूल और टीन ईयर्स, करेक्ट? तो दोस्तों, इसका जो अनुवाद अगर हम करें तो आप उन युवा रोगियों से कैसे संपर्क करते हैं जो अपने दांतों या मुस्कान को लेकर खासकर स्कूल या किशोरावस्था में आत्म जागरूक होते हैं, तो मैम क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में?
2: देखिए, सबसे जरूरी है पहले उनकी परेशानी को समझना
0: जी,
2: कि क्या ऐसी परेशानी है उनके दांतों में या जो कि उनके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर रही है। फिर दूसरी चीज मेरे लिए जरूरी है उन्हें ये समझाना कि टीनेज ईयर्स में जब आपके प्राइमरी दांत जो आपके मिल्क टीथ होते हैं वो टूट रहे होते हैं और आपके नए दांत परमानेंट टूथ आ रहे होते हैं, तब दांतों का थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होना एक पर्टिकुलर स्टेज होती है जिसे हम अगली डकलिंग स्टेज कहते ही हैं, कि जब आपके आगे वाले दो दांत बड़े दिखते हैं अलग से जो आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करने लगते हैं, ये सब कुछ टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है। थोड़े टाइम बाद दांत अपने आप ही, जब आपके सारे परमानेंट दांत आ जाएंगे तब आपके दांत ठीक दिखने लगेंगे, विच विल एनीवेज गिव यू कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज युवा अवस्था में ये परेशानी होना कि मैं ब्रेसेस लगाया है, बहुत सारे बच्चों को ब्रेसेस लगाने के बाद मुस्कुराने में तकलीफ होने लगती है, उन्हें लगता है कि लोग उनका शायद मजाक उड़ाएंगे या दे डोंट फील कॉन्फिडेंट इनफ। तो उनको ये भी बताना कि ये सिर्फ एक ट्रीटमेंट, इट्स ट्रीटमेंट का पार्ट है
0: जी,
2: और इवेंचुअली आपके दांत टेढ़े मेढ़े नहीं रहेंगे, ठीक हो जाएंगे।
1: आजकल वैसे भी सेल्फी का जमाना है, तो हमारे को इन बच्चों तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, खुद ही आ जाते हैं कि मेरे दांत ठीक करिए, मेरी स्माइल ठीक करिए। और पेरेंट्स को आमतौर पर यह परेशानी होती है कि इनसे ब्रश कैसे करवाया जाए, बच्चे हैं। इनफैक्ट उसका बहुत ही सिंपल सा एक समाधान है कि जब बच्चे पैदा होते हैं, कुछ महीने के होते हैं, जब पहला दांत आता है, अगर पेरेंट्स उससे भी पहले जब दांत नहीं भी होता है, हम ये रेकमेंड करते हैं कि हमारा सुझाव है कि आप कोई भी गीला कपड़ा, साफ कपड़ा लेकर गीला करके कॉटन वगैरह बच्चे के जो मसूड़े हैं उन्हें साफ करने की हैबिट डालिए। बच्चे का मुँह साफ रहेगा, उसको हैबिट पड़ेगी मुँह साफ रखने की। फिर जब पहला दांत है तभी से आप दांत ब्रश करना शुरू करिए, उस तरह के ब्रश अवेलेबल हैं मार्केट में, महंगे नहीं हैं, और या कॉलेज हमारे पास स्कूल में आइए, हम आपको फ्री भी दे सकते हैं, वो ब्रश करिए आप बच्चों का पहले दांत आने के टाइम से, और उनकी हैबिट बनती रहेगी, और जब बड़े होंगे तो वो अपने आप ब्रश करते ही रहेंगे। हम हैबिट बहुत लेट डालते हैं, ये दिक्कत है।
0: तो लिसनर्स, कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही कि अगर दोनों की बातों को हम निष्कर्ष निकालें, कंक्लूजन करें, तो यही समझ में आता है कि इन बातों को आप गांठ बांध लीजिए, इन बातों को सोचिए, समझिए और अप्लाई करिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उनके दांतों को मजबूत करिए ताकि वो अच्छी तरीके से फल खा पाए और वो चबा पाए, क्योंकि कहते हैं बड़े बुजुर्ग की एक फल अगर आपके दांत 32 हैं, 32 बार चबाएंगे, तो चबाना भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, एक अच्छी प्रक्रिया है जो कि आपके स्वास्थ्य को मजबूत करती है। तो डॉक्टर पल्लवी, अब आपकी बारी है, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे और कौन सा गाना सुनाना चाहेंगी?
2: किसी की मुस्कुराहटों पे
0: हाँ, ये तो हो चुका है। हाँ, और दूसरा आप मुझे बताएं।
2: पहला नशा।
0: चलिए, नशा आप करिए, खुशबू का नशा करिए, काम का नशा करिए, मोहब्बत का नशा करिए, और नशे से अपने आप को बचा कर रखिएगा। यानी कि इस विषय पर हम बात करेंगे। मैम ने बहुत अच्छा इशारा कर दिया कि तंबाकू, सिगरेट या और भी प्रकार का नशा आपके दांतों के लिए नुकसानदायक है। वो वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के तहत हम यहाँ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर सुखदीप सिंह, जो की प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज शारदा विश्वविद्यालय से, और साथ ही साथ मेरे साथ हैं डॉक्टर पल्लवी शर्मा, प्रोफेसर हैं आप डिपार्टमेंट ऑफ पीरियडोंटोलॉजी स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज शारदा यूनिवर्सिटी से। तो एक बार फिर से सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
0: बहुत अच्छे अच्छे गाने आप सुन रहे हैं, अपने श्रोताओं को हम सुना रहे हैं। तो सर अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा सुखदीप सर जी, अगर कोई व्यक्ति यू कहें कि थोड़ा मैं इंग्लिश में ले लेता हूँ फिर इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, व्हाट कैन गो रॉन्ग इफ अ पर्सन डज नॉट मेंटेन गुड ओरल हाइजीन, यानी कि लिसनर्स अगर कोई व्यक्ति अच्छी जैसे कहते हैं ना कि आपने दांतों का या यू कहें कि मौखिक स्वच्छता नहीं रखता है, तो क्या उसके साथ दिक्कतें हो सकती हैं, क्या परेशानियाँ हो सकती हैं सर?
1: सबसे आसान जवाब ये है कि हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाने की जरूरत है और खाना खाने के लिए हमें दांतों की ज़रूरत है, और दांत सिर्फ दांत नहीं, स्वस्थ अच्छे दांत, और दांतों को अच्छा रखने के लिए अच्छे मसूड़े चाहिए क्योंकि मसूड़ों के अंदर ही दांत होते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक सी बात है जो हम सब जानते हैं, लेकिन हम इसकी कदर नहीं करते क्योंकि हमें 32, 28 या 20, 30 दांत मिले हुए हैं मुफ्त में और हम उसको अब्यूज़ करते रहते हैं। वो एक खराबी हो गया तो निकाल दिया, फिर भी 20 हैं जो अपना काम करते जा रहे हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब ये दांत हमारा साथ छोड़ देते हैं और फिर हम कुछ खा नहीं पाते ढंग से, और इसके फिर बहुत सारे नतीजे हैं। जैसे कि सबसे पहला ये है सिंपल सा कि आप खाने का मज़ा नहीं ले सकते। अगर आप खाने का मज़ा नहीं ले, जिंदगी में कुछ मज़ा ही नहीं है। हमारी भाषा में कहते हैं दांत गए थे खान गया जहान गया। सो अगर आप खाना नहीं एंजॉय कर रहे हैं तो आपके पास आनंद लेने का एक मौका कम हो गया। दूसरा, अगर आप ठीक से खा नहीं रहे हैं तो आपकी जो सेहत है वो गई। ये बहुत गहरी और उतनी सिंपल बात भी है कि दांत का काम बहुत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको अच्छा खाना पचा करके अंदर बॉडी में डालता है ताकि आपकी बॉडी चलती रहे, आपका स्वास्थ्य बना रहे और आप लंबा जिए और अच्छा जिए। सिर्फ लंबा नहीं, नॉट ओनली क्वालिटी ऑफ लाइफ बट ऑल्सो क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इज वेयर द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ टीथ एंड द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स कम इन। बाकी डॉक्टर पल्लवी आपको बताएंगे मसूड़ों के बारे में, ये एक्सपर्ट है उसमें।
0: हाँ ठीक है, चलिए बताइए डॉक्टर पल्लवी, गेंद अब आपके पाले में।
2: सर ने सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बोली है कि जहाँ दांत नहीं है वहाँ न्यूट्रिशन अफेक्ट होता है
0: जी।
2: बाकी मसूड़ों की बात है तो अगर आप साफ सफाई नहीं रखते हैं तो डिपॉजिट्स होते हैं जिसे हम हमारी भाषा में प्लाक कहते हैं, और इस प्लाक में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो जर्म्स जो कि मसूड़ों को और दांतों को हानि पहुंचाते हैं। तो सूजन से शुरू होता है, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों की सूजन बढ़ते बढ़ते मसूड़ों से खून आना, कभी कभी स्पॉन्टेनियस ही खून आ जाता है, कभी ब्रश करते वक्त या हार्ड, बहुत आमतौर पर लोग कहते हैं कि एप्पल खाते वक्त खून आता है
0: जी।
2: फिर बदबू, मुंह से बदबू आना। अब अगर आपने ये परेशानी को वहीं नहीं रोका, अगर आपने हम डेंटिस्ट के पास नहीं आते हैं, स्केलिंग नहीं करवाते हैं, अपनी ओरल हाइजीन ओरल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, तो यही कीटाणु आपके चले जाते हैं हड्डी तक, दांतों की हड्डी तक
0: जी।
2: फिर उसको नुकसान पहुंचाते हैं जो कि इवेंचुअली दांतों को ढीला करता है, लीड्स टू मोबिलिटी, और अगेन दांत झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं,
0: आम भाषा में कहें तो हम पोपले हो जाते हैं। अब आप सोच लीजिए जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, अपने दांतों को मजबूत रखना चाहते हैं, अपनी मुस्कान को बरकरार रखना चाहते हैं, तो भैया ये गुरु मंत्र आपको दे दिया है, इन बातों को जान लीजिए समझ लीजिए। डॉक्टर पल्लवी, नशे का आपने जिक्र किया, नशा एक गाना हमने सुना बहुत ही खूबसूरत गाना था, लेकिन मैं यहाँ जिस संबंध में बात करना चाहता हूँ, तंबाकू है, सिगरेट है, कोयला का अपने आप में नशा है कि लोग कोयले से मंजन करते हैं, तो ये कितना नुकसानदायक है हमारे दांतों के लिए?
2: गाने के लिए तो ठीक था
0: जी जी जी जी,
2: पर नशा तो नुकसानदायक है
0: जी।
2: अब चाहे वो सिगरेट हो या तंबाकू हो,

लायक है। वो पिक्चर भी दिखाई जाती है कि एक जबड़ा दिखाया जा रहा है, उसको कैंसर था, वो उस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लोग अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक तो ये होता है कि हम अवेयर नहीं है, हमें पता नहीं है, लेकिन जब हम अवेयर हैं, जब हमें पता है, तो आप सोचिए छोटी छोटी हमारी तनख्वाहें होती हैं, अगर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने में लगा ही देंगे तो फिर हमारे पास सेविंग्स क्या होंगी। हाँ, अगर जाने अनजाने में आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो निश्चित तौर पर आप डॉक्टर से सलाह मशवरा करिए, लेकिन कहा कि अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मत मारिएगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको खुशनुमा बनाइए, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करिए, सेविंग्स करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें साझा करते रहिए। वक्त है यहाँ पर एक और छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। अब की मेरी पसंद का गाना सुना देता हूँ मुस्कुराने की वजह तुम हो, यानी कि आप दोनों मेरी मुस्कुराने की वजह है, तो ये गाना आप दोनों के नजर सिर्फ सुरुशादा 90.8 FM पर।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। समुदाय का जब जिक्र होता है तो यहाँ ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, एक कम्युनिटी को साथ लेकर चलने की बातें होती हैं और उस कम्युनिटी से हम कनेक्ट करते हैं यानी कि कम्युनिटी को जोड़ने का काम करते हैं। और इसीलिए ये प्रोग्राम बना है राबता, यानी कि हम आपसे राबता कर रहे हैं। और इसी संबंध में दो डॉक्टर हमारे साथ आज जुड़े हैं जो कि बहुत अपने फील्ड के महारथी हैं और हर एक सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी तरीके से बातें हो रही हैं। आप हैं हमारे साथ डॉक्टर सुखदीप सिंह जी जो कि प्रोफेसर एंड हेड हैं डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट शारदा हॉस्पिटल शारदा यूनिवर्सिटी से। आप हैं डॉक्टर पल्लवी शर्मा जो कि आप प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर पल्लवी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: कुछ भ्रम होते हैं जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में मिथ, और दूसरी हम बात करें कि कुछ लोग जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो कैसे आप अपने शब्दों में लोगों को अवेयर करेंगे? जैसे कि मुझे समझ में आता है कि एक नशे का मंजन आता है। हमारी महिलाएं, हमने देखा है कि वो रगड़ रगड़ के उसका आनंद ले रही होती हैं। दूसरा हमने ये भी देखा है घरों में राख, कोयला, तो कितना गलत है। मुझे समझ में आता है कि गलत है, कितना गलत है। और इसी में अगर आपको लगता है कि कुछ मिथ हैं, यही ये भी एक मिथ है, तो इस संबंध में आप रोशनी डालिए, क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, इतने सालों से प्रैक्टिस करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को जो मिथ लगता है कि डेंटिस्ट के पास तभी जाना है जब दर्द है। कितने लोग बोलते रहते हैं हम तब तक नहीं आए क्योंकि दर्द नहीं था मैम।
0: जी,
1: जैसे सर ने बताया कि अगर आप दर्द का वेट करेंगे तो तब तक आपका दांत या तो इतना कमजोर हो गया होगा कि बचाना मुश्किल होगा, या फिर उसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा, मे बी डिफिकल्ट और महंगा हो चुका होगा। तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना है हर 6 महीने में,
0: हर छह महीने में।
1: और दांतों में दर्द का इंतजार नहीं करना है। सिर्फ थोड़ा ही दांतों में खाना फंसता हो या मसूड़ों में सूजन लगती हो या कभी ब्लीडिंग हो रही हो या बदबू आ रही हो, ये सभी परेशानियां बड़ी परेशानियां का इंडिकेशन है। तो हमें इंतजार नहीं करना है कि हमें हमारी परेशानी बड़ी हो जाए।
0: जी।
1: एक दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट वो है, लोग कहते हैं ब्रश तो करते हैं।
0: हाँ।
1: अब सिर्फ ब्रश करना ही जरूरी नहीं है। ब्रश दिन में 2 बार करना, रात को ब्रश करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सुबह का ब्रश है। मेरी समझ से इनफैक्ट रात वाला ब्रश थोड़ा ज्यादा जरूरी है, जिससे कि जो जर्म्स हमारे पार्टी कर रहे हैं ना, उनकी पार्टी को बंद करना है। हमें रात को ब्रश करके लाइट्स आउट करना है कि पार्टी ओवर।
0: जी जी,
1: 4 बज गए पर पार्टी अभी बाकी है नहीं।
0: नाइस,
1: ठीक है। ऊपर से जैसे हमने बताया कि ब्रश करने का एक सही तरीका
0: है, सलीका
1: जरूरी है, सलीका भी। फिर एक ब्रेसेस के लिए, लोग अधिकतर मानते हैं कि ब्रेसेस सिर्फ बच्चों के लिए हैं, ऐसा नहीं है। आजकल एक इनविजिलाइन करके ट्रीटमेंट आता है जो कि अडल्ट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है और ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है एंड डूएबल है, विच हेल्प यू नो क्रुकेड दांत है, टेढ़े मेढ़े दांतों हैं, उसका ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। सो ब्रेसेस सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बने हैं। उसके बाद एक सर ने जैसे बोला कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है। डेंटल ट्रीटमेंट हम एक्सपेंसिव बनाते हैं क्योंकि हम तब तक इंतजार करते हैं कि दर्द ना हो हमें। दूसरी बात, आप हमारे यहाँ आइए शारदा स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज में, जहाँ पे अधिकतर ट्रीटमेंट हम फ्री भी करते हैं और बहुत ही
0: कंसेशन के साथ रियायत
1: करते हैं।
0: वेरी गुड। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे जो कोयले को मंजन के साथ मतलब इस्तेमाल करते हैं, कोयले की राख को और इस तरह से नशे का जो है, तो क्या कहना चाहेंगे?
2: आजकल बहुत ही उम्दा टूथपेस्ट मिलते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है, एडवांस्ड है और महंगे भी नहीं है।
0: जी।
2: इसकी कुछ वजह है, इसकी वजह यह है कि जो ये आप बता रहे हैं कोयले की कोयला या राख से करना, वो डेफिनेटली हानिकारक है और काफ़ी हानिकारक है दांतों के लिए, और आगे जाके जो आपके दांतों को इरिवर्सिबल नुकसान करते हैं, आपको 6 दांत खोने पड़ेंगे अपने। मिथ्स में मैं ये कहना चाहूँगा कि कई लोग आगे कहते हैं हमारे को पेरेंट्स के बच्चों के दांत जो दूध के हैं उनको क्या साफ़ करना है, वो तो गिरी जाने हैं। ऐसा कतई नहीं है। देखिए, बच्चे के जो दूध के दांत हैं वो करीबन 12-13 साल की उम्र तक रहते हैं, और 12-13 साल तक की उम्र का बच्चा अगर ठीक से नहीं खा पाएगा, 6 साल पे दांत खराब हो गए, 7 साल पे दर्द हो रहा है या पस भरी हुई है, तो खाना नहीं खा पाएगा तो ग्रो कैसे करेगा? उस उम्र में बच्चे को ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एक मिथ है जो बहुत सारे लोगों को है कि दूध के दांत साफ करने का क्या फायदा, गए तो गए कोई बात नहीं, निकल ही जाने, नए आ जाएंगे। पर नए कब आएंगे? 12-13 साल की उम्र में। दूसरा बहुत सुनने में आता है कई बार कि ऊपर का दांत निकाल देंगे तो आंखों पर असर पड़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आधे से ज्यादा दुनिया के लोगों के ऊपर के दांत निकाले हुए हैं।
0: दाढ़ का भी जिक्र होता है,
2: जाड़ का खासतौर पर, कि ऊपर की जाड़ निकालेंगे तो आंख पे असर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद ही सोचिए, देखिए अपने इर्द गिर्द कितने लोगों के दांत उभर के निकाले हुए हैं, क्या वो सब अंधे हो गए हैं?
0: जी।
2: Okay. तो ये ऐसे बहुत सारे और भी मिथ हैं, लेकिन आजकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है। लेकिन राख और कोयले से कतई बिल्कुल भी ब्रश मत करिए, दांत साफ मत करिए।
0: सर, इसी से संबंध में मेरे दिमाग में एक बात आ रही है जो अक्सर मैंने देखा है, सुना है कि नमक और सरसों का तेल मिला के लोग करते हैं, वो कितना गलत है या सही?
2: बहुत लोग करते हैं, हमने भी सुना है। देखिए, हमारी किताब में साइंस में इसके बारे में कुछ कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर, क्योंकि आजकल बहुत सारा नेचुरोपैथी का ज़माना है, अगर कोई उस पे जो एक्सपर्ट है वो ये कहता है कि इसके पीछे कुछ रिसर्च की है और उससे कुछ फ़ायदे हुए हैं, वो अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। पर हमारी किताब में, हमारी साइंस में कुछ इसके बारे में मेंशन नहीं किया हुआ।
0: तो दोस्तों, कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये कि इस बात को अगर हम समाप्त करें, निष्कर्ष निकालें कि अपने दांतों का ख्याल रखिए। बहुत गहनता से, अच्छी तरीके से सर ने, मैडम ने ये बातें हमें बताई और ब्रश जरूर करेगा। साधारण तरीके से यही समझ में आता है कि अच्छा खाइए, अपने आप को तंदुरुस्त बनाकर रखिए, दांत मजबूत रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी माशाल्लाह सातवें आसमान पर रहेगा। और निश्चित तौर पर कहीं कुछ आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे तो वो इंटरव्यू आप फाइट कर पाएंगे बिकॉज ऑफ योर स्माइल, बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो डॉक्टर साहब, आप दोनों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और मैं एक दावत भी देता हूं कि अगर आप जब भी समय मिले कोई दूसरी श्रृंखला करना चाहें तो ढूंढिएगा गगन का, गगन के साथ ही मुझे दूसरी श्रृंखला करनी है।
2: जरूर जरूर जी, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ बुलाने के लिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और खुश रहें, आबाद रहें।
0: क्या बात है, कुछ अगर और कुछ कहना चाहें?
1: थैंक यू सो मच। मुस्कुराइए क्योंकि आप राब्ता से जुड़े हैं।
0: अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, मुस्कुराइए क्योंकि आप राब्ता से जुड़े हुए हैं और हम आपसे राब्ता कर रहे हैं। फिलहाल किसी के दिल में जगह बनानी हो तो मैं अपनी भाषा में कहूंगा कि मुस्कुराते रहिए। वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9:11। अपना ख्याल रखिएगा, और ये भी कहना चाहता हूँ कि ना टेंशन लेना, ना किसी को टेंशन देना, जिंदगी को सरल, खुशनुमा, आसान बनाइए। और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनुशादा 90.8 FM। कैसा लगा आपको प्रोग्राम? 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा सुनुशादा 90.8 FM का फेसबुक पेज है, वहां पर भी आप अपना कॉमेंट दे सकते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।

0: हंसते हंसते कट जाएंगे रस्ते। राम राम, दो सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से। ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से अगर दुआओं में कुछ मांगना चाहते हैं तो यही मांगेगा जो अक्सर हमने सुना है, पढ़ा है कि प्रथम सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया। इसी प्रकार से कई सारे सुख बताए गए हैं, लेकिन जब बात हो आपके स्माइल की तो जाहिर सी बात है कि इस मुस्कान के पीछे राज क्या है, इस राज को हम सब जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से इस मुस्कान को मेंटेन करके रखा जाए। जाहिर सी बात है कि इस संबंध में बात करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, तो एक कम्युनिटी कनेक्ट के तहत हम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, एक राबता हम यहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस संबंध में मेरे साथ दो खूबसूरत मेहमान जुड़ रहे हैं, बहुत बड़े अनुभव के साथ आप आते हैं। आप हैं स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज से डिपार्टमेंट ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर पल्लवी शर्मा। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: मैंने करेक्ट प्रोनाउंस किया या नहीं, क्योंकि मेरे सामने बहुत दिनों के बाद ये वर्ड आया। चलिए आप यूं ही मुस्कुराते रहे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरे जो शख्सियत है, बहुत बड़े अनुभव के साथ आप आते हैं और आप भी इसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। आप हैं प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर सुखदीप सिंह जी, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, ये आपका डिपार्टमेंट है। तो सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, शुक्रिया।
0: आप लोग कैसे हैं पहले मुझे ये बताइए।
2: मजे में,
0: वेरी गुड। और मैम आप कैसे हैं?
1: खुश।
0: वेरी गुड, मजे में रहिए, खुश रहिए। और ईश्वर से ही मेरी परवरदिगार से कामना है कि हम सब खुश रहें। कहा जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यही हमारी सोच है। तो मैम सबसे पहले हम ये जानना समझना चाहते हैं, जिस विषय के साथ आज रेडियो पर आप आई हैं, हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे अपने दांतों का हम ख्याल रखें, कैसे अपनी मुस्कान को हम बरकरार रखें। तो जो सबसे पहले जहन में यही सवाल आता है कि मुस्कान क्यों हमारे लिए, हम सबके लिए जरूरी है?
1: मुस्कान जरूरी है क्योंकि वो हमारी खूबसूरती बढ़ाती है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरी बात, मुस्कान हमारी पर्सनालिटी में बढ़ावा देती है, हमें लोगों से कनेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है स्माइल करना
0: जी,
1: है ना। आप मुस्कुराइए तब आपके साथ लोग जुड़ते जाते हैं
0: जी।
1: सो मुस्कान हमारे सिर्फ आत्मविश्वास के लिए ही नहीं जरूरी है, मुस्कान हमारे रिलेशनशिप्स के लिए जरूरी है, हमारी पर्सनालिटी के लिए जरूरी है। और मुस्कान एक तरीका है ये जताने का कि हम कितने आभारी हैं, खुश हैं जो फॉर द लाइफ दैट वी हैव।
0: यस यस। तो सर मैम ने जो कहा इसमें कुछ आप ऐड ऑन करना चाहेंगे?
2: मुस्कान स्माइल जो है कि लैंग्वेज है, ये कम्युनिकेशन जो इंसान करता है, इंसान जो हम हैं, हम सोशल एनिमल्स हैं, सामाजिक जानवर कहते हैं इसको। तो हमारी जो भाषाएं हैं बहुत सारी हैं, जैसे मुंह से बोलते हैं हम, लेकिन उसके लिए हमें एफर्ट करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, खपत करनी पड़ती है। लेकिन स्माइल एक ऐसी लैंग्वेज है, आप किसी पे स्माइल करिए, आपको अपने आप फ्री में तुरंत जवाब आएगा स्माइल से, स्माइल का जवाब। तो ये हमारे को भगवान ने, एक नेचर ने बहुत बड़ा एक
0: तोहफा
2: स्ट्रेंथ दी है कि आप किसी पे स्माइल करें वो स्माइल करेगा। तो लेकिन स्माइल के पीछे बहुत मेहनत लगती है, डेंटिस्ट को बनाने के लिए स्माइल। अच्छा। लेकिन भगवान ने हमको फ्री में दिया है, आपको सिर्फ बस अपने लिप्स को हिलाना है और दांत दिखाने हैं, लेकिन ये भी कई बार लोग नहीं कर पाते।
0: आपने जो बात एक छेड़ दी, यहाँ पर भी एक सवाल हमारे सामने रख ही दिया है लिसनर्स के सामने, कि जो डेंटिस्ट होता है उसको बड़ी मेहनत लगती है कि अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है किसी पेशेंट के साथ, वो जो मेहनत लगती है उसके बारे में आप प्लीज बताइए कि किस मेहनत की बात आप कर रहे हैं।
2: सो इस मेहनत को हम एकदम जीरो कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक डेंटिस्ट और एक मरीज पेशेंट। अब अगर कोई भी, अब मरीज, हर एक इंसान मरीज नहीं है, इंसान मरीज बनता है। कैसे बनता है? वो खुद बनाता है अपने आप को। अगर हर एक इंसान बचपन से, जब से पैदा हुआ है, बच्चे की उम्र से, एक साल की उम्र से, जब से उसका पहला दांत निकलता है, अगर वो एक डेंटिस्ट के पास जाए, अपना रूटीन चेकअप कराता रहे, तो वो कभी मरीज नहीं बनेगा जिंदगी में, और डेंटिस्ट को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अफसोस कि आम तौर पे देखा गया है एक्सपीरियंस में कि लोग सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें दर्द होता है या कोई दिखने में परेशानी आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, अफसोस। सो अगर रहते वक्त में लोग आ जाएं, चेक कराते रहें, तो ये हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत से मेरा मतलब ये था कि यस, जब तकलीफ हो जाती है फिर इसे रिपेयर करना पड़ता है, तो उसमें फिर इलाज करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कहाँ तकलीफ है, क्या दिक्कत है, वगैरह वगैरह
0: जी। डॉक्टर पल्लवी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इसी बात को हम आगे लेकर जाएंगे, कुछ एक रिसर्च के जरिए हमने क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं कि व्हाट इज द लिंक बिटवीन ओरल हाइजीन एंड अपीयरेंस ऑफ स्माइल, हाउ डज इट इंपैक्ट कम्युनिकेशन। मैं अपने श्रोताओं को इसका रूपांतरण बताना चाहूंगा। दोस्तों, मौखिक स्वच्छता और मुस्कान के बीच क्या संबंध है और ये संचार को कैसे प्रभावित करती है, तो इसी संबंध में डॉक्टर से जानते हैं इसका आंसर जी।
1: थैंक यू। तो मेरी नजर से ओरल हाइजीन और मुस्कान में वही संबंध है जो जय और वीरू में है।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: देखिए, अगर आपके दांत गंदे हैं
0: जी,
1: पीले हैं, मसूड़ों में सूजन है, मुंह में बदबू है, तो आप चाहकर भी नहीं मुस्कुरा पाएंगे। आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा बात करने का, मुस्कुराने का। और जैसे अभी सर ने बताया कि मुस्कुराहट जरूरी है आत्मविश्वास के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। जहाँ ओरल हाइजीन खराब है वहाँ मुस्कुराहट में कॉम्प्रोमाइज है, और जहाँ मुस्कुराहट नहीं है वहाँ आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और जहाँ कॉन्फिडेंस नहीं है वहाँ कम्युनिकेशन तो इफेक्टिव हो ही नहीं सकता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बात में अगर आपको लगता है कि डॉक्टर पल्लवी की बात को हम और आगे लेकर जा सकते हैं, मेरा सोचना मानना ये है, कुछ और अगर आप कहना चाहें।
2: देखिए, इंसान की जो सेहत है, ऐसा माना जाता है, हमारी किताबों में लिखा है कि जो मुंह है इंसान का, जो ओरल कैविटी है, माउथ है, ये गेटवे टू द बॉडी है, ये द्वार है हमारे पूरे शरीर के अंदर की सीक्रेट्स का, अंदर की कितनी आपकी हेल्थ ठीक है जानने का। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो पहले मुंह में दिखाई देती हैं, फिर बॉडी में आपको पता लगता है किसी को कि अंदर बीमारी भी थी। लेकिन अफसोस की बात कि ज़्यादातर लोग अपने मुंह को निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे जो दांत हैं या जो उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं बहुत ही भगवान ने स्ट्रांग बनाए हैं, स्टर्डी है, वो रेजिलिएंट हैं, वो बहुत देर तक अब्यूज सह लेते हैं, लेकिन जब वो ब्रेकडाउन होते हैं फिर ऑफकोर्स फिर लोग जाते हैं ठीक कराने। और लेकिन ज़्यादातर वो एक लंबी प्रोसेस है, फिर चाहे वो छोटी सी कैविटी हो, चाहे वो जैसे मैडम ने बताया मसूड़ों की दिक्कत हो, कोई सर्जरी करनी हो, उसमें फिर वक्त लगता है, एक्सपर्टीज लगती है, और फिर जो लोगों का सबसे बड़ा डर है आज की तारीख में कि डेंटिस्ट्री बहुत महंगी भी है।
0: तो क्या महंगी है या नहीं?
2: देखिए, महंगी जो है ये लफ्ज़ बहुत ही रिलेटिव है। जो चीज़ मुझे महंगी लगती है आपको शायद सस्ती लगती हो, और उसमें बहुत सारे इसके बहुत सारे रंग हैं इसके। महंगा सिर्फ पैसे की वजह से नहीं होता है, वैल्यू की वजह से भी होता है। अब कोई चीज़ मेरे लिए, अगर मेरा भी पेन है, अगर ये टूट जाए अभी इसलिए मैं दवाई लिखता हूँ, इसकी एक्चुअल MRP 10 रुपये है, पर वैल्यू मेरे लिए इसकी हज़ारों में है अगर ना मिले टाइम पर मेरे। तो इसलिए सेहत जो है, जैसे मैंने कहा, ये फ्री है, मुफ्त है, हर एक के पास भगवान ने बांट रखी है, पर उसका हम ख्याल नहीं करते हैं। तो डेंटिस्ट्री महंगी कभी कभी पैसों की वजह से हो जाती है, क्योंकि हमारे जो हमारे मशीन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं, वो काफ़ी महंगे आते हैं और ज़्यादातर इम्पोर्टेड हैं। ऑफकोर्स आजकल तो खैर इंडिया में सब कुछ बनता है, सब कुछ से मेरा मतलब है जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो जाती है, पर कुछ चीज़ें अभी भी हम बाहर से मंगाते हैं, यूज़ करते हैं, तो उस वजह से महंगी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक लेकिन कहना चाहूँगा, फीस जो है वो एक्सपीरियंस, स्किल और जगह की वजह से होती है
0: जी,
2: सिर्फ मटेरियल से नहीं होती है।
0: सर, आपने जो जिस तरीके से एक परिभाषा दी है, आपने, डॉक्टर पल्लवी ने बहुत खूबसूरत उसको यूं कहें कि हमारे लिसनर्स तक पहुंचाया कि किस तरीके से हम अपने दांतों का ख्याल रखें, किस तरीके से मुस्कान का ख्याल रखें, और जब आपकी मुस्कान रहती है तो निश्चित तौर पर एक कॉन्फिडेंस आता है। मैं आपकी बात को यहां कहना चाहूंगा, जो हमारे साथ लिसनर्स जुड़ रहे हैं, कि आप लोगों का हमारा डेंटल स्कूल है, यानी कि बहुत रियायत दर पर यहां ट्रीटमेंट आप लोगों को मिलता है। सो लिसनर्स, आप यहां आ सकते हैं, और ख़ास बात यह है कि सर और मैडम की जो टीम है लोगों के बीच में भी जाती है, और कभी कभी वहां से लोगों को लेकर भी आती है, और बहुत सुविधाजनक यहां से ट्रीटमेंट आप लोगों को मिलता है। तो चलिए, इस बात का जो सिलसिला है लगातार जारी है, तो आप मेरे साथ बस यूं ही जुड़े रहिए। अगर आपको लगता है कि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में चार चांद लग जाएंगे। तो कोई आप दोनों की पसंद का एक गाना, या कोई पहले आप बताना चाहें, पहले आप चल रहे हैं तो ये तो सर आपको मौका दे रहा है, कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट मैम, तो प्लीज आपके दिमाग में कुछ जहन में आ रहा होगा ना।
2: बहुत पुराना गाना है, आई थिंक मुकेश का था, मुकेश जी का, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार।
0: क्या बात है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो यही खूबसूरत गाना सिर्फ आपके लिए कहीं जाएगा। बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम, मेरे यानी गगन के साथ, और दो खूबसूरत मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बातें हो रही हैं आपकी ओरल हाइजीन के विषय में। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर वक्त, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम राब्ता। और हम आपसे राब्ता कर रहे हैं एक विषय के साथ हाजिर हुए। मेरे साथ दो एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, आप हैं डॉक्टर पल्लवी शर्मा जी और आप हैं डॉक्टर सुखदीप सिंह जी। अपने एक बहुत बड़े फील्ड के साथ आते हैं, बहुत बड़े अनुभव के साथ आते हैं। तो सर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने जो गाना सुनाया, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गाने का आपने चुनाव किया, हमारे भी चेहरे पर स्माइल आ गई और एक छोटी सी एनर्जी आ गई। तो सर, सबसे पहले मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ ब्रेक के आने के बाद कि समटाइम्स चिल्ड्रंस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिट्स, हाउ डू दे इम्पैक्ट ओरल हेल्थ एंड कम्युनिकेशन। सो लिसनर्स, मैं आपको हिंदी में भी बताना चाहूंगा, इसका मतलब ये कि इसका जो अनुवाद है वो हमने किया है, आपके लिए आसान हो जाए कि कभी कभी बच्चों की आदतें अलग अलग होती हैं, ये मौखिक स्वास्थ्य और संचार को कैसे प्रभावित करती हैं, ये मेरा सवाल है डॉक्टर सुखदीप सिंह जी से।
1: ठीक, जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। पहले हम एक्सपेंसिव की बात कर रहे थे, मुंह का और दांतों का ख्याल रखना बहुत ही आसान है और उसकी कीमत ना के बराबर है। हमें सिर्फ दिन में दो बार ब्रश करना है एक नॉर्मल किसी भी टूथपेस्ट के साथ। हमें अगर सीख जाएं, और सीखना चाहिए एक्चुअली, हमें फ्लॉस करना चाहिए। दांतों के बीच की जो जगह होती है उसे हमें कभी साफ़ नहीं करते हैं। हमें दो बार ब्रश करना है, फ्लॉस करना है, मुंह साफ रखना है। जितनी बार खाते हैं उतनी बार अगर हम ब्रश कर लें तो बहुत ही बढ़िया, हमें कभी कोई तकलीफ होगी नहीं। इतना आसान है दांतों का ख्याल रखना।
0: जी,
1: आगे बढ़ते हैं। बच्चों की हैबिट्स के बारे में बात कर रहे थे हम। सो बच्चों में बहुत तरह की हैबिट्स हैं, जिनके बच्चे हैं वो जानते हैं, जिनके नहीं हैं वो देखते रहते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कोई अपनी उंगली में, अपने मुंह में उंगली डालता है, कोई अपने उंगली चूसता है, कोई अपने नाखून खाता है, कोई बाल खाता है, कोई अपने लिप्स बाइट करता है, कोई जीभ को बाहर निकालता है, वगैरह वगैरह। सो बच्चे बड़े यूनिक होते हैं, बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करते रहते हैं। लेकिन इन इंटरेस्टिंग बातों का कई बार बैड इफेक्ट्स होते हैं, दे हैव बैड कॉन्सिक्वेंसेज। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा अंगूठा चूसता है 2.5-3 साल की उम्र के आगे जा करके, तो उसके जो ऊपर के दांत है, जो ऊपर का उसका जबाड़ा है, जो जॉ है, जो मैक्सिला कहते हैं हम, वो बाहर को आ जाता है, दांत बाहर आ जाते हैं और उसका फिर हमें इलाज करना पड़ता है। सो अगर किसी भी बच्चे को आप देखते हैं, आपके इर्द गिर्द आपके हों या पड़ोसियों के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, आपके बच्चे में कोई हैबिट है, तो प्लीज़ आप ज़रूर गो टू योर नियरेस्ट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट या कम टू स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज। हमारे यहाँ पर हम ऑलमोस्ट मुफ्त इलाज करते हैं और सब इस तरह की बीमारियों से निजात मिलेगी आपको।
0: बहुत खूबसूरत, और इसीलिए कहा जाता है शारदा विश्वविद्यालय की जो टैग लाइन है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर। हाँ, मेरा बहादुर, यानी कि मैं इसको हिंदी में रूपांतरण करता हूँ कि तुम कहो मैं यहाँ हूँ। सर, ये मेरे साथ आ जाता है बहादुर। तो ये बहादुर होता है और सुबह मेरा लाइव प्रोग्राम जाता है जिसमें कि ये मेरे साथ संवाद करता है और अच्छी अच्छी बातें करता है, ये मुझे करेक्ट करता है, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। तो मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सर का जो सवाल का जवाब मेरा सवाल था और जवाब सर का था, और उसमें मैं थोड़ी सी छोटी सी बात ये समझना चाहूंगा कि सर ने कहा कि 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, एक अच्छी आदत है, बच्चों में इस आदत को हमें डालना चाहिए। मैं यहाँ टाइम की बात करना चाहूंगा कि कितना टाइम ब्रश में लगाना चाहिए, एक एटलीस्ट स्टैंडर्ड टाइम जो रहता है।
2: जी बिल्कुल, एक ठीक से ब्रश करने की प्रक्रिया करीब 2 मिनट लेती है।
0: दो मिनट
2: लेती है। कहते हैं अगर आप हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग चलाएंगे तो वो पूरा सॉन्ग खत्म होना चाहिए, तब तक आपका ब्रश चलता रहना चाहिए। और ठीक से ब्रश करने का एक तरीका भी है, हम दांतों को बर्तनों की तरह नहीं घिसना है, है ना? आपको कोशिश करनी है कि अपने हाथ को गोल गोल घुमाएं, अपने ब्रश को थोड़ा गोल तरीके से घुमाएं और ऊपर के मैक्सिला को और मैंडिबल को, ऊपर वाले जबड़ों को और नीचे वाले जबड़ों को अलग अलग ब्रश करें। मुंह को बंद करके नहीं रगड़ना है दांतों को, ऊपर वाले दांतों को अलग से ब्रश करना है और नीचे वाले दांतों को अलग से ब्रश करना है।
0: तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ब्रश करना और कितना टाइम देना। जल्दबाजी में लोग बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं जिसका खामियाजा आगे चलकर भुगतना पड़ता है। तो मैम, जब बच्चों का आप जिक्र कर रही हैं, जैसे सर ने बताया कि नाखून है, बच्चे खा लेते हैं, कुछ और दिक्कतें परेशानी उनके सामने आती हैं, तो इसी से रिलेटेड मैं समझना चाहूंगा कि चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सारी चीजें बच्चों को बहुत नुकसानदायक साबित होती हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहती हैं, किस तरीके से वो अपने दांतों का ख्याल रखें?
2: जैसे सर ने पहले बताया कि ओरल कैविटी इज ऑल्सो अ मिरर टू दी सिस्टमिक हेल्थ, है ना? तो ये चिप्स हैं या कोल्ड ड्रिंक हैं या बहुत ज्यादा स्वीट्स खाना, वो सिर्फ दांतों के लिए ही हानिकारक नहीं है, वो हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अगर मैं सिर्फ दांतों की बात करती हूँ तो यही ये सारी चीजें एक तो स्टिकी होती हैं, ये दांतों में जाके दांतों के बीच में जाके अटक जाती हैं, फिर ये हमारे दांतों में जो कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनका खाना भी बनती हैं। तो इन द होल प्रोसेस क्या होता है कि दांतों में कैविटीज हो सकती हैं, दांतों में कैविटीज हो जाती हैं जो जिनको फिर भरना पड़ता है, या फिर मसूड़ों में सूजन हो सकती है जिसकी वजह से कि ब्लीडिंग गम्स होना या फिर बदबू होना उसकी परेशानी होती है।
0: ठीक है।
2: इसके अलावा बार बार बच्चों को बार बार मीठा खाना, उससे ये प्रॉब्लम एग्रेवेट होती है। अगर आप बार बार मीठा खाते हैं या बार बार चिप्स खाते हैं, बार बार कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इससे ये प्रॉब्लम एग्रेवेट होती है।
1: मजेदार बात ये है कि बच्चों को आपने कहा चिप्स और ये कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, और जो कैविटी बनाते हैं कीड़े उन्हें भी यही पसंद है। तो ये बड़ा मजा आ जाता है। तो जो कीड़े हैं वो पार्टी करते हैं बच्चे के साथ, लेकिन बच्चा तो पार्टी करके सो जाता है, लेकिन कीड़े सोते नहीं है, वो दांत के ऊपर बैठ के ये सब खाते हैं और काइंड ऑफ तेजाब बनाते हैं, उस तेजाब से वो दांत घुल जाते हैं, उसी को हम कैविटी कहते हैं।
0: बहुत खूबसूरत, मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहा था और वाकई मानना पड़ेगा आप डॉक्टर साहब कि आपने मेरे दिमाग को पढ़ लिया। तो मैं इस सिलसिले को आगे लेकर जाता हूँ। सवाल तो बहुत हैं, बातों बातों में सवालों का जवाब आता रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर पल्लवी आपसे ही समझना चाहूंगा, अंग्रेजी में पहले ये सवाल रख लेता हूँ कि हाउ डू यू अप्रोच यंग पेशेंट्स हु आर सेल्फ कॉन्शियस अबाउट देयर टीथ और स्माइल, स्पेशली इन द स्कूल और टीन ईयर्स, करेक्ट? तो दोस्तों, इसका जो अनुवाद अगर हम करें तो आप उन युवा रोगियों से कैसे संपर्क करते हैं जो अपने दांतों या मुस्कान को लेकर खासकर स्कूल या

0: किशोरावस्था में आत्म जागरूक होते हैं, तो मैम क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में?
1: देखिए, सबसे जरूरी है पहले उनकी परेशानी को समझना
0: जी,
1: कि क्या ऐसी परेशानी है उनके दांतों में या जो कि उनके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर रही है। फिर दूसरी चीज मेरे लिए जरूरी है उन्हें ये समझाना कि टीनेज इयर्स में जब आपके प्राइमरी दांत जो आपके मिल्क टीथ होते हैं वो टूट रहे होते हैं और आपके नए दांत परमानेंट टूथ आ रहे होते हैं, तब दांतों का थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होना एक पर्टिकुलर स्टेज होती है जिसे हम अगली डकलिंग स्टेज कहते ही हैं।
0: जी,
1: कि जब आपके आगे वाले दो दांत बड़े दिखते हैं अलग से, जो आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करने लगते हैं, ये सब कुछ टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है। थोड़े टाइम बाद दांत अपने आप ही, जब आपके सारे परमानेंट दांत आ जाएंगे, तब आपके दांत ठीक दिखने लगेंगे, विच विल एनीवेज गिव यू कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज, युवा अवस्था में ये परेशानी होना कि मैं ब्रेसेस लगाया है, बहुत सारे बच्चों को ब्रेसेस लगाने के बाद मुस्कुराने में तकलीफ होने लगती है, उन्हें लगता है कि लोग उनका शायद मजाक उड़ाएंगे या दे डोंट फील कॉन्फिडेंट इनफ। तो उनको ये भी बताना कि ये सिर्फ एक ट्रीटमेंट, इट्स अ ट्रीटमेंट का पार्ट है
0: जी,
1: और इवेंचुअली आपके दांत टेढ़े मेढ़े नहीं रहेंगे, ठीक हो जाएंगे,
0: ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। नाइस।
2: आजकल वैसे भी सेल्फी का जमाना है, तो हमारे को इन बच्चों तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, खुद ही आ जाते हैं कि मेरे दांत ठीक करिए, मेरी स्माइल ठीक करिए। और पेरेंट्स को आमतौर पर यह परेशानी होती है कि इनसे ब्रश कैसे करवाया जाए। बच्चे हैं, इनफैक्ट उसका बहुत ही सिंपल सा एक समाधान है कि जब बच्चे पैदा होते हैं, कुछ महीने के होते हैं, जब पहला दांत आता है, अगर पेरेंट्स उससे भी पहले जब दांत नहीं भी होता है, हम ये रेकमेंड करते हैं कि हमारा सुझाव है कि आप कोई भी गीला कपड़ा, साफ कपड़ा लेकर, गीला करके, कॉटन वगैरह, बच्चे के जो मसूड़े हैं उन्हें साफ करने की हैबिट डालिए। बच्चे का मुँह साफ रहेगा, उसको हैबिट पड़ेगी मुँह साफ रखने की। फिर जब पहला दांत आता है तभी से आप दांत ब्रश करना शुरू करिए। उस तरह के ब्रश अवेलेबल हैं मार्केट में, महंगे नहीं हैं, और या कॉलेज हमारे पास, स्कूल में आइए, हम आपको फ्री भी दे सकते हैं
0: जी।
2: वो ब्रश करिए आप बच्चों का पहले दांत आने के टाइम से, और उनकी हैबिट बनती रहेगी, और जब बड़े होंगे तो वो अपने आप ब्रश करते ही रहेंगे। हम हैबिट बहुत लेट डालते हैं, ये दिक्कत है।
0: तो लिसनर्स, कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही कि अगर दोनों की बातों को हम निष्कर्ष निकालें, कंक्लूजन करें, तो यही समझ में आता है कि इन बातों को आप गांठ बांध लीजिए, इन बातों को सोचिए, समझिए और अप्लाई करिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उनके दांतों को मजबूत करिए ताकि वो अच्छी तरीके से फल खा पाएं और वो चबा पाएं। क्योंकि कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि एक फल अगर आपके दांत 32 हैं, 32 बार चबाएंगे, तो चबाना भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, एक अच्छी प्रक्रिया है जो कि आपके स्वास्थ्य को मजबूत करती है। तो डॉक्टर पल्लवी, अब आपकी बारी है, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे और कौन सा गाना सुनाना चाहेंगी?
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो,
0: हाँ ये तो हो चुका है। हाँ, और दूसरा आप मुझे बताएं,
1: पहला नशा।
0: चलिए, नशा आप करिए, खुशबू का नशा करिए, काम का नशा करिए, मोहब्बत का नशा करिए, और नशे से अपने आप को बचा कर रखिएगा। यानी कि इस विषय पर हम बात करेंगे। मैम ने बहुत अच्छा इशारा कर दिया कि तंबाकू, सिगरेट या और भी प्रकार का नशा आपके दांतों के लिए नुकसानदायक है। वो वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सोर्स आर द 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनुशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के तहत हम यहाँ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर सुखदीप सिंह, जो की प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज शारदा विश्वविद्यालय से। और साथ ही साथ मेरे साथ हैं डॉक्टर पल्लवी शर्मा, प्रोफेसर हैं आप डिपार्टमेंट ऑफ पीरियडोंटोलॉजी स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज शारदा यूनिवर्सिटी से। तो एक बार फिर से सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
0: बहुत अच्छे अच्छे गाने आप सुन रहे हैं, अपने श्रोताओं को हम सुना रहे हैं। तो सर अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा सुखदीप सर जी, अगर कोई व्यक्ति यू कहें कि थोड़ा मैं इंग्लिश में ले लेता हूँ फिर इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, व्हाट कैन गो रॉन्ग इफ अ पर्सन डज नॉट मेंटेन गुड ओरल हाइजीन। यानी कि लिसनर्स, अगर कोई व्यक्ति अच्छी, जैसे कहते हैं ना कि आपने दांतों का, या यू कहें कि मौखिक स्वच्छता नहीं रखता है, तो क्या उसके साथ दिक्कतें हो सकती हैं, क्या परेशानियां हो सकती हैं सर?
1: सबसे आसान जवाब ये है कि हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाने की जरूरत है और खाना खाने के लिए हमें दांतों की जरूरत है। और दांत, सिर्फ दांत नहीं, स्वस्थ अच्छे दांत। और दांतों को अच्छा रखने के लिए अच्छे मसूड़े चाहिए, क्योंकि मसूड़ों के अंदर ही दांत होते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक सी बात है जो हम सब जानते हैं, लेकिन हम इसकी कदर नहीं करते, क्योंकि हमें 32, 28 या 20, 30 दांत मिले हुए हैं मुफ्त में और हम उसको अब्यूज़ करते रहते हैं। वो एक खराबी हो गया तो निकाल दिया, फिर भी 20 हैं जो अपना काम करते जा रहे हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब ये दांत हमारा साथ छोड़ देते हैं और फिर हम कुछ खा नहीं पाते ढंग से, और इसके फिर बहुत सारे नतीजे हैं। जैसे कि सबसे पहला ये है सिंपल सा कि आप खाने का मजा नहीं ले सकते। अगर आप खाने का मजा नहीं ले, जिंदगी में कुछ मजा ही नहीं है। हमारी भाषा में कहते हैं दांत गए थे खान गया, जहान गया। सो अगर आप खाना नहीं एंजॉय कर रहे हैं तो आपके पास आनंद लेने का एक मौका कम हो गया। दूसरा, अगर आप ठीक से खा नहीं रहे हैं तो आपकी जो सेहत है वो गई। ये बहुत गहरी और उतनी सिंपल बात भी है कि दांत का काम बहुत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको अच्छा खाना पचा करके अंदर बॉडी में डालता है ताकि आपकी बॉडी चलती रहे, आपका स्वास्थ्य बना रहे और आप लंबा जिए और अच्छा जिए। सिर्फ लंबा नहीं, नॉट ओनली क्वांटिटी ऑफ लाइफ बट आल्सो क्वालिटी ऑफ लाइफ। दैट इज वेयर द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ टीथ एंड द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स कम इन। बाकी डॉक्टर पल्लवी आपको बताएंगे मसूड़ों के बारे में, ये एक्सपर्ट है उसमें।
0: हाँ ठीक है। चलिए बताइए डॉक्टर पल्लवी, गेंद अब आपके पाले में।
2: सर ने सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बोली है कि जहाँ दांत नहीं है वहाँ न्यूट्रिशन अफेक्ट होता है
0: जी।
2: बाकी मसूड़ों की बात है तो अगर आप साफ सफाई नहीं रखते हैं तो डिपॉजिट्स होते हैं जिसे हम हमारी भाषा में प्लाक कहते हैं। और इस प्लाक में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो जर्म्स जो कि मसूड़ों को और दांतों को हानि पहुंचाते हैं। तो सूजन से शुरू होता है, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों की सूजन बढ़ते बढ़ते मसूड़ों से खून आना, कभी कभी स्पॉन्टेनियस ही खून आ जाता है, कभी ब्रश करते वक्त या हार्ड, बहुत आमतौर पर लोग कहते हैं कि एप्पल खाते वक्त खून आता है
0: जी।
2: फिर बदबू, मुंह से बदबू आना। अब अगर आपने ये परेशानी को वहीं नहीं रोका, अगर आपने, हम डेंटिस्ट के पास नहीं आते हैं, स्केलिंग नहीं करवाते हैं, अपनी ओरल हाइजीन, ओरल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, तो यही कीटाणु आपके चले जाते हैं हड्डी तक, दांतों की हड्डी तक
0: जी।
2: फिर उसको नुकसान पहुंचाते हैं जो कि इवेंचुअली दांतों को ढीला करता है, लीड्स टू मोबिलिटी और अगेन दांत झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं।
0: आम भाषा में कहें तो हम पोपले हो जाते हैं। अब आप सोच लीजिए जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, अपने दांतों को मजबूत रखना चाहते हैं, अपनी मुस्कान को बरकरार रखना चाहते हैं, तो भैया ये गुरु मंत्र आपको दे दिया है, इन बातों को जान लीजिए, समझ लीजिए। डॉक्टर पल्लवी, नशे का आपने जिक्र किया, नशा एक गाना हमने सुना, बहुत ही खूबसूरत गाना था, लेकिन मैं यहाँ जिस संबंध में बात करना चाहता हूँ, तंबाकू है, सिगरेट है, कोयला का अपने आप में नशा है कि लोग कोयले से मंजन करते हैं, तो ये कितना नुकसानदायक है हमारे दांतों के लिए?
2: गाने के लिए तो ठीक था
0: जी जी जी जी,
2: पर नशा तो नुकसानदायक है
0: जी।
2: अब चाहे वो सिगरेट हो या तंबाकू हो या बीड़ी, खैनी, किसी भी तरह का नशा हो, वो दांतों तक ही नहीं, वो बाकी आपके मसूड़ों के लिए, आपके शरीर के लिए ही बहुत नुकसानदायक है। और हम सभी जानते हैं कि नशा करने से कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं।
0: ये बात निकल कर आई सामने।
2: और इंडिया में, इस बेल्ट में हमें अनफॉर्चुनेटली ओरल कैंसर के केसेस, स्पेशली बिकॉज ऑफ टोबैको च्यूइंग, काफी दिखाई देते हैं
0: जी।
2: और बड़ा तकलीफ है, इलाज भी बहुत मुश्किल है। मैं वहाँ कहना चाहूंगी कि ये इलाज बहुत महंगा है हर तरह से।
0: जी, एक विज्ञापन मेरे जहन में आ रहा है, जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, तंबाकू आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है, वो पिक्चर भी दिखाई जाती है कि एक जबड़ा दिखाया जा रहा है, उसको कैंसर था, वो उस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लोग अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक तो ये होता है कि हम अवेयर नहीं है, हमें पता नहीं है, लेकिन जब हम अवेयर हैं, जब हमें पता है, तो आप सोचिए छोटी छोटी हमारी तनख्वाहें होती हैं, अगर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने में लगा ही देंगे तो फिर हमारे पास सेविंग्स क्या होंगी। हाँ, अगर जाने अनजाने में आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो निश्चित तौर पर आप डॉक्टर से सलाह मशवरा करिए, लेकिन कहा कि अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मत मारिएगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको खुशनुमा बनाइए, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करिए, सेविंग्स करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें साझा करते रहिए। वक्त है यहाँ पर एक और छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। अब की मेरी पसंद का गाना सुना देता हूँ मुस्कुराने की वजह तुम हो, यानी कि आप दोनों मेरी मुस्कुराने की वजह, तो ये गाना आप दोनों के नजर सिर्फ सुरुषा 90.8 FM पर।

0: आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: कुछ भ्रम होते हैं जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में मिथ, और दूसरी हम बात करें कि कुछ लोग जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो कैसे आप अपने शब्दों में लोगों को अवेयर करेंगे? जैसे कि मुझे समझ में आता है कि एक नशे का मंजन आता है, हमारी महिलाएं हमने देखा है कि वो रगड़ रगड़ के उसका आनंद ले रही होती हैं। दूसरा हमने ये भी देखा है घरों में राख कोयला, तो कितना गलत है। मुझे समझ में आता है कि गलत है, कितना गलत है। और इसी में अगर आपको लगता है कि कुछ मिथ हैं, यही ये भी एक मिथ है, तो इस संबंध में आप रोशनी डालिए, क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, इतने सालों से प्रैक्टिस करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को जो मिथ लगता है कि डेंटिस्ट के पास तभी जाना है जब दर्द है। कितने लोग बोलते रहते हैं हम तब तक नहीं आए क्योंकि दर्द नहीं था। मैम
0: जी,
1: जैसे सर ने बताया कि अगर आप दर्द का वेट करेंगे तो तब तक आपका दांत या तो इतना कमजोर हो गया होगा कि बचाना मुश्किल होगा, या फिर उसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा, मे बी डिफिकल्ट और महंगा हो चुका होगा। तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना है हर 6 महीने में,
0: हर छह महीने में। जी।
1: और दांतों में दर्द का इंतजार नहीं करना है। सिर्फ थोड़ा ही दांतों में खाना फंसता हो, या मसूड़ों में सूजन लगती हो, या कभी ब्लीडिंग हो रही हो, या बदबू आ रही हो, ये सभी परेशानियां बड़ी परेशानियां का इंडिकेशन है। तो हमें इंतजार नहीं करना है कि हमें हमारी परेशानी बड़ी हो जाए।
0: जी।
1: एक दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट वो है, लोग कहते हैं ब्रश तो करते हैं।
0: हाँ।
1: अब सिर्फ ब्रश करना ही जरूरी नहीं है। ब्रश दिन में 2 बार करना, रात को ब्रश करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सुबह का ब्रश है। मेरी समझ से इनफैक्ट रात वाला ब्रश थोड़ा ज्यादा जरूरी है, जिससे कि जो जर्म्स हमारे पार्टी कर रहे हैं ना, उनकी पार्टी को बंद करना है। हमें अपनी रात को ब्रश करके लाइट्स आउट करना है कि पार्टी ओवर।
0: जी जी,
1: 4 बज गए पर पार्टी अभी बाकी है नहीं।
0: नाइस।
1: ठीक है, ऊपर से जैसे हमने बताया कि ब्रश करने का एक सही तरीका सलीका भी है। फिर एक ब्रेसेस के लिए, लोग अधिकतर मानते हैं कि ब्रेसेस सिर्फ बच्चों के लिए हैं, ऐसा नहीं है। आजकल एक इनविजिलाइन करके ट्रीटमेंट आता है जो कि अडल्ट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है और ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है एंड डूएबल है, विच हेल्प यू नो क्रुकेड दांत है, टेढ़े मेढ़े दांतों हैं, उसका ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। सो ब्रेसेस सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बने हैं। उसके बाद एक सर ने जैसे बोला कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है। डेंटल ट्रीटमेंट हम एक्सपेंसिव बनाते हैं क्योंकि हम तब तक इंतजार करते हैं कि दर्द ना हो हमें। दूसरी बात, आप हमारे यहाँ आइए शारदा स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज में, जहाँ पे अधिकतर ट्रीटमेंट हम फ्री भी करते हैं और बहुत ही
0: कंसेशन के साथ रियायत
1: करते हैं।
0: वेरी गुड। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे जो कोयले को मंजन के साथ मतलब इस्तेमाल करते हैं, कोयले की राख को और इस तरह से नशे का जो है, तो क्या कहना चाहिए?
2: आजकल बहुत ही उम्दा टूथपेस्ट मिलते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है, एडवांस्ड है और महंगे भी नहीं है।
0: जी।
2: इसकी कुछ वजह है, इसकी वजह यह है कि जो ये आप बता रहे हैं कोयले की कोयला या राख से करना, वो डेफिनेटली हानिकारक है और काफ़ी हानिकारक है दांतों के लिए, और आगे जाके जो आपके दांतों को इरिवर्सिबल नुकसान करते हैं, आपको 6 दांत खोने पड़ेंगे अपने। मिथ्स में मैं ये कहना चाहूँगा कि कई लोग आगे कहते हैं हमारे को पेरेंट्स के बच्चों के दांत जो दूध के हैं उनका क्या साफ़ करना है, वो तो गिरी जाने हैं। ऐसा कतई नहीं है। देखिए, बच्चे के जो दूध के दांत हैं वो करीबन 12-13 साल की उम्र तक रहते हैं, और 12-13 साल तक की उम्र का बच्चा अगर ठीक से नहीं खा पाएगा, 6 साल पे दांत खराब हो गए, 7 साल पे दर्द हो रहा है या पस भरी हुई है, तो खाना नहीं खा पाएगा, तो ग्रो कैसे करेगा? उस उम्र में बच्चे को ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एक मिथ है जो बहुत सारे लोगों को है कि दूध के दांत साफ करने का क्या फायदा, गए तो गए, कोई बात नहीं, निकल ही जाने, नए आ जाएंगे, पर नए कब आएंगे? 12-13 साल की उम्र में। दूसरा बहुत सुनने में आता है कई बार कि ऊपर का दांत निकाल देंगे तो आंखों पे असर पड़ जाएगा।
0: जी,
2: ऐसा
0: जी,
2: बिल्कुल भी नहीं है। आधे से ज्यादा दुनिया के लोगों के ऊपर के दांत निकाले हुए हैं,
0: दाढ़ का भी जिक्र होता है,
2: जाड़ का खासतौर पर, कि ऊपर की जाड़ निकालेंगे तो आंख पे असर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद ही सोचिए, देखिए अपने इर्द गिर्द कितने लोगों के दांत उभर के निकाले हुए हैं, क्या वो सब अंधे हो गए हैं?
0: जी।
2: तो ये ऐसे बहुत सारे और भी मिथ हैं, लेकिन आजकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है। लेकिन राख और कोयले से कतई बिल्कुल भी ब्रश मत करिए, दांत साफ मत करिए।
0: सर, इसी से संबंध में मेरे एक दिमाग में एक बात आ रही है जो अक्सर मैंने देखा है, सुना है कि नमक और सरसों का तेल मिला के लोग करते हैं, वो कितना गलत है या सही?
2: बहुत लोग करते हैं, आप हमने भी सुना है। देखिए हमारी किताब में साइंस में इसके बारे में कुछ कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर क्योंकि आजकल बहुत सारा नेचुरोपैथी

0: का जमाना है, अगर कोई उस पे जो एक्सपर्ट है वो ये कहता है कि इसके पीछे कुछ रिसर्च की है और उससे कुछ फायदे हुए हैं, वो अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, पर हमारी किताब में, हमारी साइंस में कुछ इसके बारे में मेंशन नहीं किया हुआ।
1: तो दोस्तों, कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये कि इस बात को अगर हम सम अप करें, निष्कर्ष निकालें कि अपने दांतों का ख्याल रखिए। बहुत गहनता से, अच्छी तरीके से सर ने, मैडम ने ये बातें हमें बताई और ब्रश जरूर करेगा। साधारण तरीके से यही समझ में आता है कि अच्छा खाइए, अपने आप को तंदुरुस्त बनाकर रखिए, दांत मजबूत रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी माशाल्लाह सातवें आसमान पर रहेगा। और निश्चित तौर पर कहीं कुछ आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे तो वो इंटरव्यू आप फाइट कर पाएंगे बिकॉज ऑफ योर स्माइल, बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो डॉक्टर साहब, आप दोनों का दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और मैं एक दावत भी देता हूँ कि अगर आप जब भी समय मिले कोई दूसरी श्रृंखला करना चाहें तो ढूंढिएगा गगन का, गगन के साथ ही मुझे दूसरी श्रृंखला करनी
0: है। जरूर जरूर जी, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ बुलाने के लिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और खुश रहें, आबाद रहें।
1: क्या बात है, कुछ अगर और कुछ कहना चाहें?
2: थैंक यू सो मच, मुस्कुराइए क्योंकि आप राब्ता से जुड़े हैं।
1: अरे वाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, मुस्कुराइए क्योंकि आप राब्ता से जुड़े हुए हैं और हम आपसे राब्ता कर रहे हैं। फिलहाल किसी के दिल में जगह बनानी हो तो मैं अपनी भाषा में कहूंगा कि मुस्कुराते रहिए। वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9:11, अपना ख्याल रखिएगा। और ये भी कहना चाहता हूँ कि ना टेंशन लेना, ना किसी को टेंशन देना, जिंदगी को सरल, खुशनुमा, आसान बनाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। कैसा लगा आपको प्रोग्राम? 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा सुनो शारदा 90.8 FM का फेसबुक पेज है, वहां पर भी आप अपना कॉमेंट दे सकते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज का जो समय है वो इंटरनेट का जमाना है, इसलिए हमें दुनियादारी के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी हम समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे और अपनी खेती से अधिक मुनाफा ले पाएंगे। किसान मित्रों, भारत सरकार द्वारा भारत में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में अपने ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करके नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराना है। किसान मित्रों, भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। किसी भी देश के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूती आज के वक्त में प्राथमिक वाला मुद्दा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करके ही भारत विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। डिजिटल इंडिया का समाज के हर क्षेत्र के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस अभियान का पूर्ण रूप से व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इसने पूरे समाज की प्रगति में योगदान दिया है। इस पहल के तहत सरकार ने डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने, डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने और डिजिटल सर्विसेज को पहुंचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इससे नागरिकों को आसानी से विभिन्न सरकारी सेवाओं और जानकारी का उपयोग करने का मौका मिलता है। ये भारत को एक डिजिटल युग में आगे बढ़ने में मदद कर रहा है और साथ ही देश के विकास को गति दे रहा है। किसान मित्रों, डिजिटल इंडिया का महत्व आज की तकनीकी दुनिया में बढ़ता जा रहा है और हमारे देश के साथ ही हम सभी के लिए एक मजबूत भविष्य बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि जनधन योजना, आधार, डिजिटल रोजगार और डिजिटल एजुकेशन। इससे गांव और शहरों के लोग आसानी से सरकारी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जो समृद्धि और सुविधा की दिशा में महत्वपूर्ण है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत में डिजिटल शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे तकनीकी ज्ञान और कौशलों का संवर्धन हो रहा है। इससे देश का विकास और सामाजिक न्याय में सुधार हो रहा है। डिजिटल इंडिया भारत को ग्लोबल तकनीकी नागरिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है और देश के विकास को सुनिश्चित रूप से गति दे रहा है। इसका महत्व आज की तकनीकी दुनिया में और भी बढ़ रहा है और हमारे देश के लिए एक सशक्त भविष्य बनाने में मदद कर रहा है। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही डिजिटल इंडिया की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागनी। किसान मित्रों, कुछ साल पहले तक आप पुराने पारंपरिक तरीकों से खेती करते रहते थे। आपके पास इतने साधन और सुविधाएं नहीं थी कि आप खेती में नई खेती में होने वाली समस्याओं से निपट पाए। लेकिन पिछले कुछ समय में आप जिस तरह से डिजिटली सक्षम हुए हैं, उससे कृषि क्षेत्र का काफी विकास हुआ है। हाल ही में एक नया टर्म डिजिटल एग्रीकल्चर चलन में आया है। डिजिटल एग्रीकल्चर यानी फसलों की पैदावार बढ़ाने और खेती को सक्षम और लाभदायक बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों और सेवाओं का इस्तेमाल करना। हमारे किसान भाई अब खेती से जुड़ी अपनी समस्याओं से निपटने, नई कृषि विधियां सीखने और दुनिया भर में हो रहे कृषि प्रयोगों के बारे में जानने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे साधनों से जुड़ रहे हैं। खेती को बेहतर बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े ये प्लेटफॉर्म काफी काम आ रहे हैं। भारत में आज भी ज्यादातर खेती मौसम के हाल पर टिकी है, जिसमें ज्यादा जोखिम है। लेकिन किसान भाई, घर बैठे कृषि वैज्ञानिकों के बताए तरीकों से इन समस्याओं से निपट रहे हैं। पहले खेत में किसी फसल पर कोई रोग लग जाए तो बिना कृषि विशेषज्ञ को दिखाए उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी, और जब तक कृषि सलाहकार खेतों का मुआयना करने पहुंचते थे, तब तक उस फसल का समय ही बीत चुका होता था, और कई बार तो छोटी सी बीमारी भी जानकारी के अभाव में पूरी फसल के बर्बाद होने का कारण बन जाती थी। लेकिन अब किसान भाइयों की कोई भी समस्या हो, चुटकियों में हल हो जाती है। सोशल मीडिया ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। किसानों को खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो, वे व्हाट्सएप या फेसबुक पर बने ग्रुप में समस्या को बताकर उसका निदान पूछते हैं और फटाफट उसके जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। इन समूह में कृषि वैज्ञानिक, कृषि सलाहकार, ये सब जुड़े रहते हैं। हमारे किसान भाई ज्यादातर जैविक खेती, फसल में लगने वाले रोग, जानवरों से फसलों को बचाने के तरीके, खेती में उत्पादन कैसे बढ़ाएं, प्रोसेसिंग, सरकार की किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और अनुदान जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो किसान भाइयों, आप सोशल मीडिया का जरूर आप लाभ उठाएं, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सावधानी भी बरतनी चाहिए। कई बार हम ठगी का शिकार भी हो जाते हैं, तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जब भी आप सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सतर्क होकर इस्तेमाल करें ताकि आप किसी भी ठगी का शिकार ना हो पाए। तो किसान मित्रों, इन सब बातों का आप जरूर ध्यान रखेंगे। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं लोकेंद्र सिंह।

अभी आप सुन रहे थे लोकेंद्र सिंह से ये रागनी। किसान मित्रों, भारत सरकार आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए गोबर धन योजना चला रही है। इस योजना के तहत गांवों में संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और इस संयंत्र की स्थापना से गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायोगैस और बायो सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा और इससे किसानों, खासकर हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। गोबरधन योजना के मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं, पहला गांव को स्वच्छ बनाना और दूसरा पशुओं और अन्य प्रकार के जैविक अपशिष्ट से अतिरिक्त आय और ऊर्जा उत्पन्न करना। इसका लक्ष्य उद्यमियों को जैविक खाद, बायोगैस और बायो सीएनजी उत्पादन के लिए गांव के क्लस्टर्स बनाकर इनमें पशुओं का गोबर और ठोस अपशिष्टों के एकत्रीकरण और संग्रहण को बढ़ावा देना है। किसान मित्रों, गोबरधन योजना को स्वच्छ भारत मिशन के तहत आरंभ किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन का प्रमुख लक्ष्य भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाने के साथ ही शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र में स्वच्छता का प्रसार करना है। इन उद्देश्यों को गोबरधन योजना के साथ एकीकृत कर इस दिशा में प्रगति की जा सकती है। और किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हमारे किसान भाइयों की आय पूरी तरह फसल की पैदावार पर निर्भर करती है, इसीलिए ये योजना किसानों की आय बढ़ाने में काफी हद तक कारगर होगी। सरकार ने इस योजना द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता देने के साथ साथ उनको आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना गोबरधन योजना के बारे में, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं ऋषिपाल खदाना और उनके साथियों से ये रागनी।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जांच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए

0: 0001-1-6-6-6-6 पर संपर्क करें।
1: टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनुशादा 90.8 एफएम में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार

0: स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की, पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रैनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीज और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनुआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: दोस्तों, समय समय की बात है, समय समय की बात है, समय समय का फेर और समय बदलते सज्जनों लगे ना कोई देर। मेहरबानों, सत्यवान कि प्राण लेने के लिए यम के दूत आए लेकिन सावित्री के तेज से वापस यमपुरी चले गए। महाराज,

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: आज का पाठ है साफ सफाई रखना, दिमागी बुखार से बचना। तुम रोल नंबर एक,
2: साफ सफाई हो भरपूर, सुअर बाड़े घर से दूर।
1: अरे वाह। नंबर दो,
3: मच्छर चूहे और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर।
1: शाबाश। नंबर तीन,
2: बंद करो खुले में जाना, हर घर शौचालय बनवाना।
1: बढ़िया। रोल नंबर चार,
4: शौच करने या कराने के बाद साबुन पानी से धोना हाथ।
1: अरे वाह। तुम
2: हैंड पंप के आसपास से सब गंदगी निकालो, पीने वाले पानी में क्लोरीन की गोली डालो।
1: बिल्कुल ठीक। दिमागी बुखार जानलेवा है, ये ज्यादातर गंदगी से फैलता है। गांव और घर में साफ सफाई रखकर इससे बचा जा सकता है। चलो अब सब बच्चों के लिए ताली बजाते हैं।
5: बच्चे तो ये बात जानते हैं, आप भी जान लीजिए।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है, जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है, गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर at Sharda University।
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। कार्यक्रम हिंसा को नो के अंतर्गत बहुत सारी बातें हो रही हैं। सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से वो अच्छी अच्छी बातें, जागरूकता वाली बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं का ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। जाने अनजाने में अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो इन बातों को हमें समझना होगा कि ये एक अत्याचार का मामला है, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन सी बातें आती हैं महिलाओं के लिए, चाहे वो कानून के हक की बात हो, उनके

अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात हो। और कहा जाता है कि महिला लक्ष्मी का रूप होती है, काली का रूप होती है, और हमारे हिंदुस्तान में प्रत्येक महिला का सम्मान किया जाता है और सम्मान करना भी चाहिए। कहा यह भी जाता है कि जिस घर में महिला का सम्मान होता है उस घर में सुख शांति का वास होता है, और जहां इसके विपरीत अगर कुछ ऐसा हो रहा होता है तो सच ये भी है कि उस घर में तरक्की, बरकत या शांति कभी हो नहीं सकती। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा पर आवाज उठाने में आशा की क्या भूमिका है, यानी कि आशा वर्कर की। और इसी संबंध में बहुत सारे टॉपिक्स पर हमने बात की, जैसे कि हिंसा के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करना, इसके अंतर्गत बात की मुद्दे के बारे में सचेत रहें, बात की सवाल पूछें, तीसरा बिंदु था स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाना, चौथा बिंदु था भावनात्मक सहयोग प्रदान करना, पांचवा बिंदु है जिसकी अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं, महिला की सुरक्षा के उपाय करें। अब बात सामने आती है कि महिला को बताएं कि कैसे उन्हें हिंसा होने की संभावना के प्रति सचेत रहना चाहिए और स्वयं अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। यदि महिला उत्पीड़क व्यक्ति को छोड़ देने का फैसला करती है तो समुदाय या VHSNC की मदद से आप कोई सुरक्षित जगह खोजने में उनकी मदद कर सकती है। ये बात कर रहे हैं हम आशा वर्कर के लिए, जैसे कि उनका मायका, किसी सहेली या संबंधी का घर, जहां वो मामला सुलझ जाने तक अस्थायी तौर पर रह सके। कुछ जिलों में सरकार अथवा गैर सरकारी संगठनों द्वारा ऐसी मुश्किल परिस्थितियों से जूझ रही महिलाओं की मदद के लिए सहायता केंद्र भी चलाए जा रहे हैं। आप महिला के परिवार या सहेलियों से सहयोग न मिल पाने की स्थिति में इन केंद्रों में आश्रय खोजने में सहायता कर सकती है। बात सामने आती है कि जब महिला घर छोड़े तो ये सुनिश्चित करें कि वो अपने साथ अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि पहचान पत्र, बैंक की पासबुक, राशन कार्ड, उनका और उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा सबूत, शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज, संपत्तियां अथवा उनके अपने गहने आदि साथ लेकर जाए। हिंसा करने वाले व्यक्ति का सामना करना आवश्यक होता है ताकि बार बार होने वाली हिंसा को रोका जा सके, और यही सारी बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि हम जानें कि महिलाओं के हक क्या हैं, उनकी किस तरीके से हम आवाज बुलंद कर सकते हैं अपनी आवाज में साथ देकर। कानून के तहत महिलाओं के लिए उपलब्ध प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं आशा वर्कर की, सो ये काम ANM, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा अपने समुदाय के अन्य सदस्यों की मदद से भी कर सकती हैं, जिसमें VHSNC, साथ ही महिला समूह और ग्राम पंचायत भी इसमें शामिल होते हैं। अगला बिंदु है महिला को कानूनी उपायों के बारे में जानकारी देना। ये सच बात है कि कहीं कहीं या यूं कहें कि अधिकतर मामलों में महिलाओं को अपने कानून के हक के बारे में, उनको उनके अधिकार के बारे में मालूमात नहीं होती। यह भूमिका होती है एक आशा वर्कर की। आपको महिला को ऐसे स्थानों अथवा व्यक्तियों के बारे में जानकारियां देनी चाहिए जहां वो चाहे तो हिंसा की रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है और हिंसा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकती है। देश के अधिकांश जिलों में महिला थाने हैं, वो महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ICDS के पर्यवेक्षक, बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी CDPO से भी संपर्क कर सकती हैं। ये व्यक्ति उनकी शिकायत को महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंध संरक्षण अधिकारी के पास भेज देंगे और ये अधिकारी सरकार द्वारा महिला हिंसा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी होता है। साथ ही इस अधिकारी से संपर्क करने के लिए एक टोल फ्री नंबर होता है, यानी जहां मुफ्त में फोन किया जा सकता है। आप उसे कानूनी सहायता केंद्रों और वहां से ली जा सकने वाली कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दे सकती है जो जिला स्तर पर अदालत में मौजूद होते हैं। आखिरी बिंदु है सहायता के लिए अन्य संसाधनों तक पहुंचना।
तो सोचिए, कल्पना करिए कि हमारे देश में कितनी जागरूकता का अभाव है। और यही सारी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जागरूक रहिए, निडर रहिए और अपने हक के बारे में बात करिए। अगर आपके साथ यानी महिलाओं के साथ कुछ गलत हो रहा है तो अपनी आवाज बुलंद करिए। बात करते हैं हिंसा के खिलाफ कार्रवाई में सहायता के लिए आपके पास पुलिस, सहयोगी संगठनों और मीडिया अधिकारियों जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, संवाददाता, पत्रकार, रेडियो और टीवी पत्रकार के टेलीफोन नंबर होने चाहिए। मीडिया हिंसा के खिलाफ कार्रवाई हेतु सामाजिक दबाव बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो ये कुछ खास बातें हमने आप तक पहुंचाई। अगले भाग में ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे बलात्कार के मामले में क्या करें। इसकी गहराई को हमें समझना होगा और इसका समाधान हमें ढूंढना होगा। इसके विषय में कुछ खास बातें बात करेंगे जरूर। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन मेरे यानी गगन के।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। हम बात कर रहे हैं महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास और ऐसे समय में एक आशा वर्कर की क्या खास भूमिका होती है, हमारी क्या खास भूमिका होती है, महिलाओं की क्या खास भूमिका होती है, वो सारी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब विषय आता है कि बलात्कार के मामले में क्या करें, किन बातों को ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं, यदि कोई महिला बलात्कार की शिकार हुई है तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यौन हमले के तुरंत बाद पीड़ित महिला को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये जगह पीड़िता का घर, उसकी दोस्त अथवा पारिवारिक सदस्य का घर हो सकता है। अगला बिंदु है सहयोग पूर्ण रवैया अपनाएं और उसे विश्वास दिलाएं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसके साथ विनम्रता पूर्ण और समझदारी के साथ व्यवहार करें। अगला बिंदु है पीड़ित महिला से ये पता करें कि क्या वो बलात्कार करने वाले की पहचान कर सकती है और बलात्कार की परिस्थितियों साथ ही अपनी चोटों के बारे में बता सकती है। अगला बिंदु है महिला को तुरंत डॉक्टरी सहायता मिलना जरूरी है और तत्काल चिकित्सीय फोरेंसिक यानी बलात्कार के मामलों में की जाने वाली जांच कराए जाने पर खास जोर दिया जाना चाहिए। आपको भी महिला के साथ स्वास्थ्य केंद्र पर जाना चाहिए। अगला बिंदु है सबूतों को सुरक्षित रखना अथवा पीड़ित के शरीर में रह गई जैविकीय सामग्री महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन्हीं से यौन हमला करने वाले उत्पीड़क की पहचान होती है, खास तौर से उन मामलों में जिनमें उत्पीड़क कोई अजनबी हो। इसलिए महिला को जांच से पहले नहाना या अपनी साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। अगला बिंदु आता है महिला और उसके परिवार वालों को पुलिस की सहायता लेने में मदद करें और उन्हें समुदाय में काम करने वाले ऐसे अन्य संगठनों से मिलवाएं जो बलात्कार की शिकार हुई महिला को सहायता मुहैया कराने का काम करते हैं। अगला बिंदु आता है महिला द्वारा अपराध की रिपोर्ट अभी दर्ज न कराने का फैसला करने पर भी फॉरेंसिक यानी कानूनी कार्रवाई में मदद के लिए की जाने वाली जांच, चिकित्सा जांच कराना और रिपोर्ट और सबूतों को सुरक्षित रखना जरूरी है ताकि पुलिस बाद में उन्हें मामले की कार्रवाई और जांच के लिए प्रयोग कर सके। अगला बिंदु आता है गर्भ ठहरने से बचाने के लिए महिला को आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां दें। अगर गंभीर चोटें लगी हो तो तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। अगला बिंदु है महिला की मदद करें जिससे अगर उसने अभी तक इस घटना के बारे में अपने परिवार वालों को न बताया हो तो वो उन्हें बता सके। याद रखें कि पारिवारिक सदस्यों को भी बलात्कार की घटना के बारे में अपनी भावनाओं से उबरना होता है। अगला बिंदु है महिला और उसके परिवार वालों का हौसला बढ़ाएं और बताएं कि बेशक ये एक दिल दहलाने वाली घटना है किंतु इससे बाहर निकलकर आगे बढ़ना ही होगा और इस घटना से जीवन रुकता नहीं और हर चीज का अंत नहीं हो जाता। आखिर में बात करते हैं महिला को विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है और इस बारे में उसे जिला अस्पताल में ले जाने के लिए सहयोग दिया जाना चाहिए। ये कुछ ऐसी खास बातें थी तो जिन बातों को हमें ध्यान में रखना अति आवश्यक है। मैं तो यही कहूंगा कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। महिला दुर्गा भी है, महिला लक्ष्मी भी है और महिला ही एक घर को चलाती है। और जिस प्रकार हम अपनी माताओं बहनों के लिए सम्मान चाहते हैं तो उसी प्रकार हमें दूसरों की माताओं बहनों का सम्मान करना चाहिए। ये विशेष कार्यक्रम सुनो शारदा 90.8 FM पर हम आपके लिए लेकर आए। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद कुछ खास बातें करेंगे। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन मेरे यानी गगन के साथ।

एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। एक गंभीर विषय जिस पर हर कोई बात करना चाहता है या कोई नहीं चाहता, लेकिन हम चाहते हैं कि इस विषय पर हम बात करें ताकि जन जन को ये बातें मालूम हो, महिलाओं को अपने हक की बातें मालूम हो, उनके साथ क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है ये उनको मालूम। हम बात कर रहे हैं महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास के बारे में और ऐसे समय में एक आशा वर्कर की क्या भूमिका होती है, उस विषय में बातें कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो बिंदु आता है हमारे सामने, अपने आप को हम कैसे सुरक्षित रखें, यानी महिलाएं। अन्य महिलाओं की तरह आपके साथ भी घर के अंदर या बाहर हिंसा हो सकती है। ये संभव है कि आप इस हिंसा को सहे जा रही हो सकता है कि इस हिंसा को आप आसानी से सहन किए जा रही हो और अपने डर या शंकाओं से बाहर न आ पा रही। इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि भले ही आप अन्य महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा के बारे में कदम उठाने में सक्षम हो, लेकिन अपने साथ होने वाली हिंसा को खुद पहचानने और दूसरों के सामने स्वीकार करने में झिझकती हो। याद आपको ये रखना होगा कि आपको दूसरों की मदद करने से पहले खुद की मदद करनी होगी। अपनी समस्या को बयान कर पाने से इस बारे में आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है और इससे अपने अनुभवों के आधार पर अन्य महिलाओं यानी कि दूसरी महिलाओं को बेहतर ढंग से सहायता करने में आपको मदद मिलेगी। खास बात ध्यान रखने वाली ये है कि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा सत्ता का ही एक रूप है। जो व्यक्ति सत्ता या ताकतवर स्थिति में होते हैं वो अक्सर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इस बात की संभावना होती है कि समस्या के खिलाफ लोगों को एकजुट करने और हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की सहायता में आपकी भागीदारी से आप समुदाय के ताकतवर व्यक्तियों द्वारा स्वयं उत्पीड़न का शिकार हो जाएं या ऐसे किसी खतरे से घिर जाएं। आपको इस बारे में सदैव सचेत रहना चाहिए और सक्रिय रूप से अपने गाँव के बुजुर्गों साथ ही VHSNC की मदद लेनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखना होगा कि समुदाय में लोग जानते हों कि आपके सम्मानित लोगों, पुलिस और स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्थाओं के साथ संपर्क और जुड़ाव है। इस बात का लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही सुरक्षा उपायों को भी अपनाएं, जैसे अकेले चलने से बचना, एकांत सुनसान इलाकों से दूर रहना, अंधेरा होने के बाद समूह में चलना इत्यादि। तो ये खास बातें हैं जो एक महिला को ध्यान में रखना चाहिए और ये बात बता रहा हूं सामूहिक हिंसा के खिलाफ प्रयास और इसके अंतर्गत एक आशा वर्कर की क्या भूमिका है। अगला बिंदु आता है परिचर्चा के लिए स्थितियां। हर स्थिति को पढ़ने समझने के बाद आप ये पहचानें कि आप उस स्थिति में क्या कदम उठा सकती हैं। इनमें से कुछ में तत्काल कार्रवाई की जरूरत हो सकती है और कुछ में लगातार जाने और परामर्श देने की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ में अन्य समूह जैसे कि ग्राम सभा, VHSNC और महिला समूह इत्यादि के साथ मिलकर काम करने की भी जरूरत पड़ सकती है। ये भी जानना समझना होगा कि इनमें से किन स्थितियों में ग्राम स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है और किसमें शिक्षा व जागरूकता उत्पन्न करने की और किसमें अन्य उच्च स्तरों पर मामले को ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। तो जो मैं बात कर रहा था उसी से संबंधित हिंसा की परिस्थितियां अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला बिंदु है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के मुंह पर मुक्का मारता है क्योंकि उसे बीबी द्वारा बनाया गया भोजन पसंद नहीं आया। दूसरी बात, एक महिला के साथ उसकी सास और पति द्वारा शारीरिक दुर्व्यवहार और अपमान किया जाता है क्योंकि वो पर्याप्त दहेज नहीं लेकर आई। पति पत्नी को पीटने की धमकी देता है और वो उसके साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहती। अगला बिंदु है पैसे की कमी के कारण एक औरत अपना इलाज ठीक से नहीं करा पाती। पति अपनी पत्नी को बाहर जाने नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि दूसरे पुरुष उसको देखते हैं। एक औरत का 4 बार गर्भपात हुआ है क्योंकि उसका परिवार बेटा चाहता है। 3 लड़कियों और 1 लड़के वाले एक गरीब परिवार में पुरुषों को पहले खिलाया जाता है और अक्सर लड़कियों को बाद में बचा खुचा खाने को मिलता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार बेटे को उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज पढ़ने भेजता है जबकि उनकी बेटी की पढ़ाई प्राथमिक स्कूल के बाद ही रोक दी जाती है। अगला बिंदु आता है कि एक 15 साल की लड़की को स्कूल छोड़ देना पड़ा क्योंकि लड़कों का एक समूह उसके साथ रोजाना छेड़छाड़ करता था।
अगला बिंदु है, एक महिला को बस स्टॉप पर या किसी सार्वजनिक वाहन में यात्रा करते समय पुरुषों का एक समूह परेशान करता है। एक साथ में रहने वाले अविवाहित जोड़े में पुरुष महिला को परेशान करता है। और आखिर में बिंदु है, एक भाई अपनी बहन को मार डालता है क्योंकि वो किसी ऐसे लड़के से प्रेम करती है जिसे उनके परिवार वाले और समुदाय ठीक नहीं समझते। चलिए, वक्त हो चुका है यहाँ पर एक छोटे से अंतराल का, म्यूजिकल ब्रेक का, और उसके बाद मैं आपको मिलूंगा यहीं एक अच्छी खास जानकारी के माध्यम से, जिसे मैं भी समझ रहा हूँ इस कार्यक्रम के जरिए और आप तक वो बातें पहुंचा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी इन बातों पर गौर फरमाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये मुझसे मेरी मिलती जुलती कहानी है तो प्लीज आप अपनी आवाज जरूर आगे तक लेकर जाएं। सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरी यानी गगन के साथ।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: कभी तो हंसाए
1: सोनू शारदा।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90

0: चांद। दोनों ने शुरू किया डॉट्स कोर्स एक समान। रघु ने तो पूरा किया कोर्स, मगर राघव बीच में ही बंद की दवाई। रघु हो गया चंगा, पर राघव की टीवी ना छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं, कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
3: मैं एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ, जैसे नासिर हुसैन। वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम पे मेरे साथ वो शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूँगा। कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे, उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं।

0: एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। So

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.in।

0: चार, पानी रे पानी। इस पृष्ठ पर एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहां से आता है हमारा पानी और फिर कहां चला जाता है हमारा पानी, हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लोग, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में ये नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। ये तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है।
1: यहाँ पृष्ठ के दाईं ओर एक चित्र है जिसमें उदय होता हुआ सूर्य है। सूर्य के नीचे कुछ

का बैग लिए स्कूल जा रही है। एक मुर्गा और एक मुर्गी दाना चुग रहे हैं। पास ही एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है तथा एक स्त्री सर पर घड़ा लिए जा रही है। आसमान में कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 42। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर

मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई

0: बालक खुले में पानी से नहा रहा है।
1: पृष्ठ संख्या 43। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल ले तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है, तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गाँव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का ये खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस पृष्ठ पर कुछ चित्र दिए हैं। बाईं ओर एक पेड़ है, दाईं ओर एक महिला फल तोड़ रही है। इस पृष्ठ के अंतिम भाग में कुछ चित्र हैं। एक नल से बच्चा पानी पी रहा है, एक महिला भोजन पका रही है और उसके पीछे कुछ वस्त्र सूख रहे हैं। किसान अपनी फसलों को देखकर मुस्कुरा रहा है। एक पात्र में पक्षी पानी से खेल रहे हैं और साथ ही एक गुल्लक है जिसमें पानी जा रहा है। पृष्ठ संख्या 44। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझे, जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। इस पाठ के लेखक हैं अनुपम मिश्र। यहाँ पर एक चित्र है। इस चित्र में बादल हैं, एक घर है, एक व्यक्ति कपड़े सुखा रहा है, महिला पौधों को पानी दे रही है और यहाँ एक जल संग्रहण टंकी है जिसमें एक घर की छत से पानी गिर रहा है। लेखक से परिचय। अनुपम मिश्र एक प्रखर लेखक, संपादक और जाने माने पर्यावरण विद होने के साथ साथ छायाकार भी थे। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रयोगात्मक कार्य किए हैं। आज भी खड़े हैं तालाब उनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। ब्रेल लिपि सहित इसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है। साफ माथे का समाज उनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है। वे गांधी शांति प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाली पत्रिका गांधी मार्ग के संस्थापक और संपादक भी थे। इस पृष्ठ पर उनका चित्र है। उनका जन्म वर्ष 1948 और मृत्यु वर्ष 2016।
0: पृष्ठ संख्या 45, पाठ से। आइए अब हम इस पाठ को थोड़ा और निकटता से समझते हैं। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से क, यहां दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए।

कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। एक, हमारा भूजल भंडार यहाँ दिए गए वाक्यों में से किससे समृद्ध होता है? नल सूख जाने से, पानी बरसने से, तालाब और झीलों से, बाढ़ आने से।

वर्षा जल का संग्रहण करना, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना, नदियों का समुद्र में जाकर मिलना, बरसात में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देना। 3. इस बड़ी गलती की सजा हम सबको मिल रही है। यहाँ किस गलती की ओर संकेत किया गया है? जलचक्र की अवधारणा को ना समझना, आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करना, तालाबों

0: और वर्षा के द्वारा पुनः समुद्र में मिल जाना। इस पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ यहाँ दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। पानी आता भी है तो बेवक्त, देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेख को एक बार पुनः पढ़िए और यहाँ दिए गए विषय में पता लगाकर लिखिए। क, पाठ में धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक क्यों कहा गया है? ख, जल चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है? ग, यदि सारी नदियाँ, झीलें और तालाब सूख जाएं तो क्या होगा? घ, पाठ में पानी को रुपयों से भी कई गुना मूल्यवान क्यों बताया गया है? इस पृष्ठ पर सूखा या अकाल पड़ जाने की स्थिति का एक चित्र है। एक सूखा हुआ पेड़, एक टूटी हुई झोपड़ी और एक जल विहीन मटका।
1: पृष्ठ संख्या 47, शीर्षक क, इस पाठ का शीर्षक पानी रे पानी दिया गया है। पाठ का यह नाम क्यों दिया गया होगा? अपने सहपाठियों के साथ

सूरज रेखांकित किया गया है। ख, समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है। इस वाक्य में भाप को रेखांकित किया गया है। ग, अचानक बादल गरजने लगे। इस वाक्य में बादल को रेखांकित किया गया है। घ, जलचक्र में हवा की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इस वाक्य में हवा को रेखांकित किया गया है। दाईं ओर एक बादल का चित्र है जिसके पीछे से सूर्य निकल रहा है। अब इन रेखांकित शब्दों के लिए उपयुक्त शब्द चुनकर लिखिए। आपके लिए संकेत शब्द इस प्रकार हैं: सूर्य, मेघ, भास्कर, पवन, वारिद, वायु, दिवाकर, जलद, वाष्प, समीर, दिनकर,

0: पहाड़ों की चोटियों पर गिर रहा है, उससे निकलती हुई एक नदी समुद्र को मिल रही है, समुद्र पर एक स्टीमर चल रहा है और समुद्र से भाप उठती हुई जा रही है।
1: पृष्ठ संख्या 48। उपसर्ग। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में अ ने काल शब्द में जुड़कर एक नया अर्थ दिया है। काल का अर्थ है समय, मृत्यु, जबकि अकाल का अर्थ है कुसमय, सूखा। कुछ शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं और इस प्रकार नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इस तरह के शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। आइए कुछ और उपसर्गों की पहचान करते हैं। यहाँ दो तालिका दी गई है जिसके मध्य में देश लिखा है। बाईं ओर कुछ उपसर्ग दिए गए हैं जिन्हें दाईं ओर शब्दांशों के साथ मिलाना है। बाईं ओर प्र, वी, पर, स्व और दाईं ओर प्रदेश, विदेश, परदेश, स्वदेश। अब आपको देश शब्द के साथ इनको मिलाना है। अब आप भी उपसर्ग के प्रयोग से नए शब्द बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ मध्य में पात्र और ज्ञान लिखा है और बाईं ओर सु, अ, वी। अब आप बाईं ओर दिए गए उपसर्गों से शब्द बनाकर मध्य में दिए गए शब्दों से जोड़कर दाईं ओर दी गई तालिका में लिखिए। पाठ से आगे आपकी बात। क, धरती के गुल्लक में जलराशि की कमी न हो, इसके लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके लिखिए। ख, इस पाठ में एक छोटे से खंड में जल चक्र की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है। उस खंड की पहचान करें और जल चक्र को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करें। ग, अपने द्वारा बनाए गए जल चक्र के चित्र का विवरण प्रस्तुत

जहां एक नल से पानी भरने के लिए एक बालिका और दो लड़के आए हुए हैं। यहां एक चित्र है जिसमें एक नल से पानी बाल्टी में भरा जा रहा है।

0: कोई एक चित्र उभर आया होगा। उस चित्र को बनाकर उसमें रंग भरिए। यहाँ आपके चित्र के लिए समुचित रिक्त स्थान दिया गया है।
1: पृष्ठ संख्या 50। यहाँ हम सबकी दिनचर्या से जुड़ी कुछ गतिविधियों के चित्र हैं। उन चित्रों पर बातचीत कीजिए जो धरती पर पानी के संकट को कम करने में सहायक है, और उन चित्रों पर भी बात करें जो पानी की गुल्लक को जल्दी ही खाली कर रहे हैं। यहाँ कुछ चित्र हैं। पहला चित्र, यहाँ एक बालक पानी से नहा रहा है। दूसरा चित्र, बालिका पौधों को पानी दे रही है। तीसरा चित्र, एक फिल्टर है जिसमें नल के माध्यम से पानी दूसरे पात्र में आ रहा है। चौथे चित्र में कुछ मजदूर मिट्टी खोद रहे हैं। पांचवा चित्र, एक बालक मंजन कर रहा है और नल खुला हुआ है। छठे चित्र में एक मोटर के द्वारा नल से पानी बाल्टी में भरा जा रहा है। सातवां चित्र, एक बालक और एक बालिका पौधा रोपण कर रहे हैं। आठवां चित्र, एक महिला पानी से अपना स्कूटर धो रही है। नौवां चित्र, एक खाली कक्षा का चित्र है जहां पर लाइट और पंखे चल रहे हैं। सबका पानी, सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी कैसे मिले, इस विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन करें। परिचर्चा के मुख्य बिंदुओं को आधार

पानी भरने के लिए लाइन में खड़े हैं। दूसरे चित्र में एक पानी का टैंकर है जिससे बहुत से लोग पानी भर रहे हैं। तीसरे चित्र में एक जलाशय है जिससे बहुत से लोग अपने बर्तनों में पानी भर रहे हैं। चौथे चित्र में एक महिला सर पर घड़ा रखकर कहीं जा रही है, वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति अपने कंधे पर पानी भरकर ला रहा है। छठा चित्र और पांचवें चित्र में जल रेल के माध्यम से पानी टैंकर

गांव या शहर के स्थानीय प्रशासन द्वारा भूजल स्तर बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, पता लगाकर लिखिए। यहाँ एक चित्र है जिसमें बादलों से बरसता पानी जल संग्रहण टंकी में एकत्रित हो रहा है, वहीं एक बालक हैंडपंप से पानी निकाल रहा है। यह भी जाने, वर्षा जल संग्रहण, वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करने के बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल उद्देश्य यही है कि जल जहां गिरे वहीं एकत्र कीजिए। वर्षा जल संग्रहण की एक तकनीक इस प्रकार है। छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा जल को पाइप द्वारा भंडारण टंकी में पहुंचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण मिल जाते हैं, अतः इसका उपयोग करने से पहले इसे स्वच्छ करना आवश्यक होता है। अपने घर या विद्यालय के आसपास, मोहल्ले या गांव में पता लगाइए कि वर्षा जल संग्रहण की कोई विधि अपनाई जा रही है या नहीं। यदि हाँ तो कौन सी विधि है, उसके विषय में लिखिए। यदि नहीं तो अपने शिक्षक या परिजनों की सहायता से इस विषय में समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। आज की पहेली। जल के प्राकृतिक स्रोत हैं वर्षा, नदी, झील और तालाब। दिए गए वर्ग में जल और इन प्राकृतिक स्रोतों के समानार्थी शब्द ढूंढिए और लिखिए। और यहाँ चित्र में एक वर्ग पहेली दी गई है जिसमें कुछ वर्ण दिए गए हैं। इन वर्णों से आपको वर्षा, नदी, झील और तालाब के समानार्थी शब्द ढूंढने हैं। पहली पंक्ति क मे क ग ब पा ज र। दूसरी पंक्ति ल ह व नी न र ला ज। तीसरी पंक्ति अंग बु स र ब स श नी। चौथी पंक्ति म न रो रि ल लि य य। पांचवी पंक्ति य भ व थ ता ल श त। छठी पंक्ति ज वा र म ग र पा टी। सातवीं पंक्ति बा रि श त प्र वा ही नी। आठवीं पंक्ति व र त रंग गी।

खोजबीन के लिए। पानी से संबंधित गीत या कविताओं का संकलन कीजिए और इनमें से कुछ को अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। इसके लिए आप अपने परिजनों एवं शिक्षक अथवा पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। झरोखे से आपने तालाबों और नदियों से रिसकर धरती रूपी गुल्लक में जमा होने वाले पानी के संबंध में यह रोचक लेख पढ़ा। अब आप तालाबों के बनने के इतिहास के विषय में अनुपम मिश्र के एक लेख पाल के किनारे रखा इतिहास का अंश पढ़िए। पाल के किनारे रखा इतिहास। अच्छे अच्छे काम करते जाना, राजा ने कूड़न किसान से कहा था। कूड़न, बुढ़ान, सरमन और कौराई थे चार भाई।

चारों सुबह जल्दी उठकर अपने खेत पर काम करने जाते। दोपहर को कूड़न की बेटी आती पोटली में खाना लेकर। एक दिन घर से खेत जाते समय बेटी को एक नुकीले पत्थर से ठोकर लग गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी दराती से उस पत्थर को उखाड़ने की कोशिश की, पर लो उसकी दराती तो पत्थर पर पड़ते ही लोहे से सोने में बदल गई। और फिर बदलती जाती है इस लंबे किस्से की घटनाएं बड़ी तेजी से। पत्थर उठाकर लड़की भागी भागी

जल्दी जल्दी सब घर लौटते हैं। उन्हें मालूम पड़ चुका है कि उनके हाथ में कोई साधारण पत्थर नहीं है, पारस है। वे लोहे की जिस चीज को छूते हैं वह सोना बनकर उनकी आंखों में चमक भर देती है, पर आंखों की यह चमक ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। कूड़न को लगता है कि देर सवेर राजा तक यह बात पहुंच ही जाएगी और तब पारस छिन जाएगा। तो क्या यह ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि वे खुद जाकर राजा को सब कुछ बता दें। किस्सा आगे बढ़ता है। फिर जो कुछ घटता है वह लोहे को नहीं बल्कि समाज को पारस से छुआने का किस्सा बन जाता है। राजा ना पारस लेता है ना सोना, सब कुछ कूड़न को वापस देते हुए कहता है, जाओ इससे अच्छे अच्छे काम कर।

बड़े हिस्से में यह इतिहास को अंगूठा दिखाती हुई लोगों के मन में रमी हुई है। यहीं के पाटन नामक क्षेत्र में चार बहुत बड़े तालाब आज भी मिलते हैं और इस कहानी को इतिहास की कसौटी पर कसने वालों को लजाते हैं। चारों तालाब इन्हीं चारों भाइयों के नाम पर पड़े हैं। रिपीट, चारों तालाब इन्हीं चारों भाइयों के नाम पर हैं। बूढ़ा सागर है, मझगवा में सरमन सागर है, कुआं ग्राम में कौराई सागर है तथा कुंडम गांव में कुंडम सागर। सन 1907 में गजेटियर के माध्यम से इस देश का इतिहास लिखने के लिए घूम रहे एक अंग्रेज ने भी इस इलाके में

पर वह विशाल ताल तीनों गांवों को जोड़ता था और सरमन सागर की तरह स्मरण किया जाता था। इतिहास ने सरमन, बुढ़ान, कौराई और कूड़न को याद नहीं रखा, लेकिन इन लोगों ने तालाब बनाए और इतिहास को उनके किनारे पर रख दिया था। देश के मध्य भाग में ठीक हृदय में धड़काने वाला यह किस्सा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों तरफ किसी न किसी रूप में फैला हुआ मिल सकता है। और इसी के साथ मिलते हैं सैकड़ों हजारों तालाब। इनकी कोई ठीक गिनती नहीं है। इन अनगिनत तालाबों को गिनने वाले नहीं, उन्हें तो बनाने वाले लोग आते रहे और तालाब बनते रहे। किसी तालाब को राजा ने बनाया तो किसी को रानी ने, किसी को किसी साधारण गृहस्थ ने तो किसी को किसी असाधारण साधु संत ने। जिस किसी ने भी तालाब बनाया वह महाराज या महात्मा ही कहलाया। एक कृतज्ञ समाज तालाब बनाने वालों को अमर बनाता था और लोग भी तालाब बनाकर समाज

0: यही समाप्त होता है। पढ़ने के लिए विश्वेश्वरैया।
1: आकाश में अंधेरा छाया हुआ था। बादल आकाश में मंडराते हुए एक दूसरे से टकरा जाते तो बिजली चमक उठती और गर्जन होता। फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। कुछ ही देर में गड्ढे और नालियां पानी से भर गईं। 6 वर्षीय विश्वेश्वरैया अपने घर के बरामदे में खड़ा इस दृश्य को निहार रहा था। गली में पंक्तियों में खड़े पेड़ बारिश में धुल जाने के कारण साफ व सुंदर दिखाई दे रहे थे। पत्तियों और टहनियों से पानी की बूंदें टप टप गिर रही थी। थोड़ी ही दूरी पर हरे भरे धान के खेत लहलहा रहे थे। जहां विश्वेश्वरैया खड़ा था वहीं निकट की नाली का पानी उमड़ घुमड़ रहा था। उसमें भंवर भी उठ रहे थे। उसने एक जलप्रपात का रूप धारण कर लिया था। वह एक बहुत ही बड़े पत्थर को अपने साथ बहाकर ले जा रहा था, जिससे उसकी शक्ति का प्रदर्शन होता था। विश्वेश्वरैया ने हवा और सूर्य की शक्ति को भी देखा था। सामूहिक रूप से वे प्रकृति की असीम शक्ति की ओर संकेत कर रहे थे। प्रकृति शक्ति है। मुझे प्रकृति के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। वह छोटा सा लड़का बुदबुदाया। फिर उसने थोड़ी दूरी पर निर्भीकता से मूसलाधार वर्षा में खड़ी एक आकृति को ताड़ पत्र की छतरी हाथ में लिए देखा। वह उसे तुरंत पहचान गया। उसके कपड़े फटे हुए थे। वह कमजोर और भूखी लग रही थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। उसके बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते। वह गरीब थी। विश्वेश्वरैया ने सोचा, वह इतनी गरीब क्यों है? उन्होंने बड़ी गंभीरता से प्रकृति और गरीबी के कारण के बारे में जानने का प्रयास किया। वह परिवार के बड़ों से इन बातों का उत्तर जानना चाहते थे। वह अपने अध्यापकों से भी जिरह करते। वह उनसे प्रकृति के बारे में पूछते, ऊर्जा के कौन से प्रचलित स्रोत हैं, कैसे इस ऊर्जा को पकड़कर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वह यह भी पूछते कि आखिर इतने लोग गरीब क्यों हैं? नौकरानी फटी साड़ी क्यों पहनती है? वह झोपड़ी में क्यों रहती है? क्या उसे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए? धीरे धीरे इस लड़के को प्रकृति और जीवन के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त होने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि ज्ञान असीमित है। उसे बिना रुके सीखते रहना होगा। तभी उन्हें उन प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं जो उन्होंने उठाए थे। उन्होंने निश्चय किया कि वह जीवन पर्यंत तक छात्र बने रहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसी संकल्प में उनकी महानता की कुंजी थी। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर, जो अब कर्नाटक में है, के मुद्देनहल्ली नामक स्थान पर 15 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके पिता वैद्य थे। वर्षों पहले उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्षगुंडम से यहाँ आए और मैसूर में बस गए थे। 2 वर्ष की आयु से ही उनका परिचय रामायण, महाभारत और पंचतंत्र की कहानियों से हो गया था। ये कहानियाँ हर रात घर की वृद्ध महिलाएं उन्हें सुनाती थी। कहानियाँ शिक्षाप्रद व मनोरंजक थी। इन कहानियों से विश्वेश्वरैया ने ईमानदारी, दया और अनुशासन जैसे मूल मानवीय मूल्यों को आत्मसात किया। विश्वेश्वरैया चिकबल्लापुर के मिडिल व हाई स्कूल में पढ़े। जब उन्हें गॉड सेव द किंग, ईश्वर राजा को सुरक्षित रखे वाला गीत गाने को कहा गया, तो उन्हें पता चला कि भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश है। अपने मामलों में भी भारतीयों को कुछ कहने का अधिकार न था। भारत की अधिकांश संपत्ति विदेशियों ने हड़प ली थी। क्या उनके घर में काम करने वाली नौकरानी विदेशी शासन के कारण गरीब है? ये प्रश्न विश्वेश्वरैया के मस्तिष्क में उमड़ता घुमड़ता रहा। राष्ट्रीयता की चिंगारी जल उठी थी और उनके जीवन में ये अंत समय तक जलती रही। विश्वेश्वरैया जब केवल 14 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। क्या वह अपनी पढ़ाई जारी रखें? इस प्रश्न पर तब विचार विमर्श हुआ जब उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा क्या मैं बंगलौर जा सकता हूँ? मैं वहाँ मामा रामैया के यहाँ रह सकता हूँ? वहाँ मैं कॉलेज में प्रवेश ले लूंगा। पर बेटा, तुम्हारे मामा अमीर नहीं है, तुम उन पर बोझ क्यों बनना चाहते हो? उनकी माँ ने तर्क दिया, अम्मा मैं अपनी जरूरतों के लिए स्वयं कमाऊंगा। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूंगा। अपनी फीस देने और पुस्तकें खरीदने के लिए मैं काफी धन कमा लूंगा। मेरे ख्याल से मेरे पास कुछ पैसे बच भी जाएंगे जिन्हें मैं मामा को दे दूंगा। विश्वेश्वरैया ने समझाया। उनके पास हर प्रश्न का उत्तर था। समाधान ढूंढने की क्षमता उनके पूरे जीवन में लगातार विकसित होती रही और इस कारण वह एक व्यवहारिक व्यक्ति बन गए। ये उनके जीवन का सार था और उनका संदेश था, पहले जानो फिर करो। बड़े होकर यही विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर बने। आर के मूर्ति, अनुवाद सुमन जैन।
2: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। ध्वन्यंकन मंजू कुमारी, वाचन स्वर सीमा सती और चांद मोहम्मद, निर्माण सहयोग कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी।
3: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: कहा जाता है मानव शरीर का 60% हिस्सा पानी का होता है और जल ही जीवन है, ये तो आपने सुना ही होगा, या फिर अगर नहीं सुना तो एक कहानी आपको सुनाती हूँ। ये कहानी है बिहार के गला जिले के दशरथ मांझी के बारे में। अगर आपने नहीं सुना तो बता दूं कि इन्होंने अपनी बीवी को खोने के बाद में उनकी याद में पूरा पहाड़ काटकर प्रॉपर रास्ता बनाया, जिससे कि गांव वाले आसानी से जा सके और पानी भर के ला सके। मैं आपको बता दूं कि इनकी बीवी जो कि उस समय गर्भावस्था में थी और पानी भरने जाने के लिए रोज उनको पहाड़ क्रॉस करना पड़ता था, यानी पहाड़ी के उस पार जाना पड़ता था। और एक दिन एक हादसा हुआ और वो पहाड़ से नीचे आ गिरी और उन्होंने अपने जान से हाथ धो दिया। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग हैं जो पानी की दो बूंद के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं शिखा आप सबका स्वागत करती हूँ ग्रेटर नोएडा की कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम पे। और मैं आ गई हूँ अपना लेकर के खास एपिसोड 2, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, यानी वाटर कंजर्वेशन या फिर पानी की क्या स्थिति है ग्रेटर नोएडा ग्रैनो द प्लांट सिटी में। मेरा रेडियो शो सीरीज आप सुन रहे हैं ग्रैनो की कहानी, यानी ग्रेटर नोएडा प्लांट सिटी की कहानी। और इस कहानी में अब एपिसोड 2 में मैं तलाशूंगी पानी। तो चलिए हमारी रेडियो सीरीज के एपिसोड 2 की शुरुआत करते हैं। और लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक रीकैप कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, सुकून भरे आशिया की तलाश मुझे ग्रेटर नोएडा द ग्रैनो स्मार्ट सिटी लेकर के आ गई। और ग्रैनो के बारे में मैंने काफी जानकारी जुटाई और आप सबसे शेयर भी की है। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में है वो ये है कि क्या ये सिटी सच में स्मार्ट है या स्मार्टली बसाई गई है? और हवा, पानी, हरियाली, टेक्नोलॉजी, अपॉर्चुनिटी, नॉलेज सब एक साथ में तालमेल बिठाकर चल पा रहे हैं? तो चलिए खोजते हैं इस सवाल का जवाब। दोस्तों, अब बारी है बातचीत करने की मनीष कुमार वर्मा सर से। तो चलिए सुनते हैं इस स्मार्ट सस्टेनेबल सिटी में हमारे इन टॉपिक्स पे सर का क्या कहना है।
1: एंड सर, वाटर मैनेजमेंट पे या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या इसके लिए भी कोई मैनेजमेंट सिस्टम है इस सिटी में?
2: हाँ जी, वो जो हमारा वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, तो जो भी सोसाइटीज हमारी होती हैं, चाहे वो बिल्डिंग सरकारी हो या प्राइवेट हो, सब में ये प्रोविजन रहता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रयोग वो करेंगे, रेन वाटर हमारा वेस्ट ना जाए।
1: जी,
2: कभी कभी लोग इसको दरकिनार कर देते हैं, इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो अभी हम लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का पूरा ऑडिटिंग का एक शुरू किया है
1: जी।
2: वो हम लोग ऑडिट करा रहे हैं, जो हमारी मल्टी हाई राइज सोसाइटीज वगैरह हैं या बाकी जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड इस तरह न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरियाज भी हैं, हमारे सरकारी ऑफिसेज वगैरह भी, उन सबका ऑडिट करा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फंक्शनल है। जहाँ पे है बड़ी अच्छी बात है, जहाँ नहीं है उसको हम लोग एनफोर्स कराएंगे, उसको फंक्शनल कराएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन आपने तालाबों के और वाटर बॉडीज के बारे में पूछा, तो इसपे एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज पूरे जिले में ही चल रहा है, क्योंकि एनजीटी भी इसको लेके काफी सख्त है कि जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उनको दोबारा से पुनर्जीवित किया जाए। तो वाटर बॉडीज को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ग्रेट नोएडा में भी खासकर। और उन वाटर बॉडीज को हम लोग, अगर कोई इलीगल एनक्रोचमेंट है तो उसको हम हटा रहे हैं और नई वाटर बॉडीज वहाँ पे टेक्निकली जहाँ पे पानी ठहर सके इनलेट आउटलेट के साथ और एक जो अच्छा वो बन जाए, जगह बन जाए लोगों के घूमने के लिए और एक साफ सुथरी हवा के लिए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लगभग 150 से ज्यादा तालाब हमारे पूरे जिले में इस तरह के तैयार भी हो गए हैं और आगे और भी काम चल रहा है। इसमें काफी कुछ काम अभी, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला शहर है, तो हमें इस तरह के बहुत सारे वाटर बॉडीज को अभी और डेवलप करने की जरूरत है। और कई सारे हम लोगों ने आइडेंटिफाई, इसमें CSR वगैरह से भी बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी हमसे संपर्क करते हैं और वो चाहते हैं कि वो भी वाटर बॉडीज पे काम करे, तो हम लोग उनसे भी मदद लेते हैं और CSR की मदद से भी वाटर बॉडीज को डेवलप कर रहे हैं।
0: थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद आपका मेरे इन सवालों के जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, चलिए कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। मैं निकल पड़ी हूँ और सामने कई लोग मुझे दिख रहे हैं। तो चलिए, ग्रेटर नोएडा और पानी की उपलब्धता को समझने के लिए उनको मैंने 3 ऑप्शंस दिए और उनसे बोला कि भाई आप पानी को लेकर के इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। तो पानी की स्थिति बेकार, अच्छा, बहुत अच्छा, समझे आप, तीन ऑप्शन है। तो चलिए आपको सुनाती हूँ कि आंसर क्या है ऑडियो, तो सुन लिया आप सबने क्या कहना है हमारे आसपास के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले लोगों का। तो समझ गए ना आप कि पानी की व्यवस्था वैसे तो यहाँ काफी अच्छी है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है दोस्तों। सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए एक लंबा रास्ता तय किया जाता है और इस रास्ते में कई चीजें हैं, यानी बारिश कितनी होती है, बारिश होती है तो उसका पानी क्या संचय किया जाता है, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था शहर में कैसी है, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि ग्राउंड वाटर का उपयोग जितनी तेजी से हो रहा है आखिर उसका आने वाले भविष्य पे क्या असर होगा। मैं ये सब सोच ही रही थी कि मेरी नजर एक महिला पे गई जो साइकिल पे अपने बच्चे को पीछे बैठाई हुई थी और बच्चे ने पानी का केन लिया था। बस फिर क्या था, पानी का केन देखते ही मेरे दिमाग में उथल पुथल मच गई कि आखिर क्यों ये ऐसे साइकिल पे पानी का केन लेकर के जा रही, कहाँ जा रही, क्या इसके मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा। और बस फिर क्या था, मैं उनके सामने पहुंच गई, उनको रोका और उनको अपने पूरे इस जर्नी के बारे में बताया और उनसे सवाल जवाब में जुट गई। और अच्छी बात ये थी कि वो भी खुशी खुशी मुझसे बात करने के लिए राजी हो गई।
1: तो निशा जी, मैं ग्रेटर नोएडा पे पानी के बारे में थोड़ा पता करना चाह रही हूँ, क्या आप मुझे कुछ बता सकती हैं? आप यहीं रहती हैं?
3: नहीं जी, किराए पे रहते हैं।
1: अच्छा, किराए पे रहती हैं, कहाँ पे?
3: ये म्यूटू में।
1: म्यूटू में
3: जी।
1: तो निशा जी, यहाँ पानी की व्यवस्था आपके मोहल्ले में कैसी है?
3: वैसे तो ठीक है, लेकिन कभी कभी दिक्कत हो जाती है, पानी लेने बाहर से जाना पड़ता है।
1: जैसे आज आप जा रही हैं, और वैसे कैसे, मतलब कि आप जहाँ किराए पे रहती हैं तो वहाँ पानी की टंकी है या कोई नल, कैसे है सप्लाई का पानी?
3: हाँ,
1: आता है
3: सप्लाई का पानी, आता है बाहर से ही आता है, मतलब घर में कोई व्यवस्था नहीं है पानी की।
1: अच्छा, तो टंकी है उसको संचित करने के लिए या फिर सीधे आपको सुबह शाम भरना पड़ता है?
3: सुबह शाम भरना पड़ता है।
1: अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि पानी नहीं आया
3: तो उसमें दिक्कत ही होती है, मतलब वेट करना पड़ता है पानी का, या फिर मतलब बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है।
1: तो फिर ऐसे में जैसे आज अगर पानी आप बता रही कि आपके यहाँ नहीं आया, तो आपने फिर ये कहाँ से भर के ले आएंगी?
3: बाहर से लेके आए या तो कहीं से। अच्छा। किसी के दूसरे के रूम पे है तो वहाँ से लेके आए।
1: हाँ। अच्छा, ये बताइए यहाँ जो पीने वाला पानी है वो आप कौन सा यूज करती है, जो नल का है वही?
3: जो सप्लाई वाला आता है वही।
1: तो पानी पीने में अच्छा है?
3: हाँ, थोड़ा तो ठीक है, पर लेकिन ऐसा नहीं है जो फिल्टर वाला होता है।
1: अच्छा, तो कभी ऐसा भी होता है कि पानी मटमैला आए या मिट्टी वाला आए या फिर साफ आता है?
3: हाँ, थोड़ा तो ठीक ही आता है, मतलब।
1: अच्छा।
3: हाँ,
1: तो कभी ऐसा कुछ हुआ कि पानी पीने के बाद लगा कि पेट में गड़बड़ी या तबीयत खराब होना बच्चों को, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कभी की हुआ है?
3: ऐसा तो अभी तो नहीं हुआ है, पर हो जाता है कुछ लोगों को, जैसे खुजली वगैरह हो गई।
1: अच्छा।
3: या फिर बीमार हो गए, ऐसा कभी हो जाता है।
0: तो दोस्तों, ये थी निशा जी से हुई बातचीत, जहां उनका कहना है कि वैसे तो पानी की व्यवस्था ठीक है, पानी अच्छा भी आता है और वो लोग काफी सालों से इसी पानी को पी रहे हैं, नल के पानी को, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। लेकिन कभी कभी जब पानी की किल्लत होती है या फिर पानी नहीं आता, तब उनके लिए एक मुसीबत हो जाता है, क्योंकि उनको दूर दूसरे मोहल्ले जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, जैसा आज हुआ। खैर, निशा जी से बात करने के बाद मैं आगे बढ़ी और इन्हीं सब चीजों को सोच रही थी कि आगे मुझे एक जगह थोड़ी भीड़ सी दिखाई दी और एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया। मुझे लगा कि हो न हो यहाँ पर मिट्टी की खुदाई हो रही है, यानी कि एक नई गगनचुंबी इमारत बनेगी, गैलनों पानी रोज खर्च होगा। आहा, ये सब सोचते सोचते मेरे पांव अपनी ओर उस बड़े से गड्ढे की ओर बढ़ने लगे और वहां पास जाकर मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई साहब, ये क्या हो रहा है? लेकिन जैसे ही वो मुड़े, उनको देखते ही मैं तो दंग रह गई और अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हुआ कि क्या सच में ये रामवीर तवर द पॉन्ट मैन ऑफ इंडिया हैं? भाई, प्यासा क्या मांगे, पानी, और मुझे तो पूरा पॉन्ड मैन मिल गए। बस फिर क्या था, मौके पे चौका मारते हुए मैंने अपने क्वेश्चंस की बौछार उनके ऊपर कर दी और आग्रह किया कि प्लीज मुझसे थोड़ी देर थोड़ी गुफ्तगू कर लें और ग्रेटर नोएडा के इस पानी की व्यवस्था को मुझे थोड़ा समझाएं।
4: तो मेरा जो पहला सवाल है वो है कि ग्रेटर नोएडा में पानी का क्या हाल है और सस्टेनेबिलिटी को लेकर के यहाँ के क्या प्लान्स हैं? आप इतना ज्यादा पॉइंट्स पे वर्क करते हैं तो आपको क्या लगता है कि सस्टेनेबल प्लान सिटी है ग्रेटर नोएडा?
5: बिल्कुल, देखिए शिखा, ग्रेटर नोएडा के दो हिस्से हैं जिसमें एक है अर्बन एरिया और एक है रूरल एरिया, क्योंकि ये शहर उस तरह से बचा है कि सेक्टरों के बीच में गांव बसे हुए हैं। तो इसके लिए किताब भी आई थी रू अर्बन नाम से, है ना, अर्बन विलेजर नाम से कि, है ना। तो यहाँ के जो गांव वाले हैं वो शहरी भी हैं और गांव वाले तो वो है। तो अच्छा, इसमें जो है जो पानी का जो हाल है वो जहाँ जहाँ पे शहर बस गया वहाँ पे कुछ हिस्से में तो गंगा जल सप्लाई होने लगा है, अदरवाइज आज भी पूरा शहर ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंड है और गांव तक तो अभी पहुंचा ही नहीं है। गांव तक अगर पाइपलाइन पहुंची भी है तो वो भी तो उसी की पहुंची है, ग्राउंड वाटर एक बोरवेल करके टंकी बना के फिर वो गांव घर घर तक पानी पहुंचाते हैं। तो अभी भी हमारा पूरा जो शहर है वो अधिकतम जो है वो ग्राउंड वाटर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और क्योंकि ग्राउंड वाटर का जो क्वालिटी है वो उतना अच्छा रहा नहीं है जी। तो यहाँ पे एक एक गांव में कई कई आरओ प्लांट लगे हुए हैं जो पानी को ट्रीट करते हैं और गांव वालों को पिलाते हैं, या जहाँ पे कॉलोनी बसी हुई या जो समृद्ध परिवार हैं उन्होंने अपने घर में ही छोटे छोटे आरओ लगाए हुए हैं जी। तो जो कि 60% वाटर जिसमें बर्बाद होता है। तीसरा जो समर सर्विल है, यहाँ के हर घर में समर सर्विल लगा हुआ है गाँव में, तो उससे पानी की बहुत ही ज्यादा दोहन होता है, बर्बाद होता है। और अभी कोई ऐसा रूल भी नहीं है कि आपको कितना पानी डेली का निकालना है, कितना नहीं निकालना है, कितना बर्बाद कर सकते हैं कितना नहीं। अगर कोई बर्बाद कर भी रहा है तो उसके लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसको हम रोक सके जाके
4: जी।
5: तो पानी की स्थिति यही है कि पानी सिर्फ ग्राउंड से निकलता जा रहा है, रिचार्ज करने का कोई तरीका नहीं है।
4: तो सर, जब बात हो एक प्लान सिटी की तो पानी, ग्राउंड वाटर पानी का खत्म होना ही तो बहुत अलार्मिंग एक सिचुएशन भी है, तो ऐसे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या यहाँ कोई सेटअप लगे हैं, क्या लोगों को उत्साहित किया गया है इस तरफ?
5: बिल्कुल, देखिए कहने के लिए तो कुछ नियम बने हुए हैं कि 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के जो मकान है उसमें रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ नक्शा पास कराने तक सीमित होता है। जो भी लोग मकान बनाते हैं तो वो अपना एक पाइप गार्ड के नकली सा वो नक्शा पास करा लेते हैं, उसके बाद फिर जो है उस पाइप को उखाड़ देते हैं। तो लोग बस उस फॉर्मेलिटी से बचना चाहते हैं, तो बहुत ही कम घर हैं जिनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है प्रॉपरली लगा हुआ है। रेन वाटर अब घर तो छोड़िए, यहाँ की जो सरकारी बिल्डिंग है उनमें ही नहीं लगा हुआ है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही कम हो रहा है और जिसको बहुत ज्यादा मतलब 80% तक बढ़ाने की जरूरत है।
4: और इसको बढ़ाने की जरूरत, इसके फायदा क्या होगा अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सच में हम ले आते हैं अगर इम्प्लीमेंटेशन में, सबसे बड़ा फायदा क्या है सर?
5: देखिए सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि हम जब पूरा शहर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करके अपनी प्यास बुझा रहा है, तो जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाए तो तालाब थोड़ा जो अंदर के एक्वीफर्स हैं वो भी हमारे रिचार्ज हो जाएंगे
4: जी।
5: तो ये एक बैलेंस प्रक्रिया हो जाएगी कि हम एक्वीफर से पानी निकाल भी रहे हैं और एक्वीफर्स को रिचार्ज भी कर रहे हैं, तो ये लंबे समय तक एक सेल्फ सस्टेनेबल सिटी के तौर पर बनेगी फिर
4: जी। सर, आपको पॉन्ड मैन के नाम से जाना जाता है और आप अभी भी एक पॉन्ड आप बनवा रहे हैं, तो एक तो पॉन्ड्स क्यों जरूरी है, वाटर बॉडीज एक शहर में क्यों जरूरी है और ग्रेटर नोएडा पे आप इतना ज्यादा इन चीजों पे क्यों काम कर रहे हैं?
5: देखिए जैसे जैसे ग्रेटर नोएडा का जो शहर है अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है वो यहाँ के जो पेड़ पौधे पे और तालाबों पे
4: जी।
5: अब देखिए यहाँ पे सेक्टरों के नाम अल्फा बीटा गामा चाई फाई ओमेगा सिग्मा जितने भी, आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, अब यहाँ पे देश में से जो रईस लोग है वो यहाँ पे आके बसने लगे हैं, लेकिन किसी सेक्टर में आपने तालाब नहीं देखा होगा
4: जी।
5: जब यहाँ का सेक्टर डेवलप किए गए तो उसमें ओपन जिम को प्राथमिकता दी गई है, पार्क को प्राथमिकता, हॉस्पिटल को, स्कूल को, क्लब को, बार को, सब चीज को प्राथमिकता दी गई है, बजाय सिर्फ एक तालाब के। जबकि 2008 में ये जो है नियम आया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया था कि भाई हर सेक्टर में छोटा तालाब भी जरूरी है ताकि बारिश के पानी को हम डिस्चार्ज कर सके, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए अब यहाँ पे बचते हैं पुराने तालाब जो एग्जिस्टिंग थे ग्रेट नोएडा शहर को बसने से पहले, तो उसमें से हम लगभग 30-40% तालाबों को अभी तक खो चुके हैं। अब जो बचता है तरीका ये है कि जो बचे हुए हैं उनको और बचाया जाए थोड़ा थोड़ा रिजुविनेट करके। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सरकार को जगाना हो, चाहे वो तालाब पे काम करना हो, या लोगों को जागरूक करना हो।
4: सर आप बहुत बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, और ग्रेटर नोएडा स्मार्ट सिटी सच में एक सस्टेनेबल फ्यूचर सिटी होगी जब आप जैसे लोग आगे आकर के लोगों को गाइड करेंगे और कायम करेंगे। थैंक यू सो मच सर।
0: तो दोस्तों, पॉन्ड मैन यानी रामवीर तंवर जी से बात करके मुझे समझ में आया कि सिटी को स्मार्ट रखने के लिए लोगों को आना पड़ेगा, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। सिर्फ एक अकेले का ये काम नहीं है, बल्कि हर घर में हर किसी को पॉन्ड मैन के जैसे ही सोचना और कार्य करना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। ग्रेटर नोएडा और पानी का रिश्ता तो भाई पक्का और मजबूत है। रामवीर जी से बात करके थोड़ी तसल्ली भी हुई। तो दोस्तों, आज मैंने काफी लोगों से बातचीत की और आप सबको भी सुनाया। मैंने ग्रेटर नोएडा के लोकल अखबार में पानी की किल्लत के बारे में पढ़ा था, जहां ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ईस्ट में पानी की भारी किल्लत है और नौबत यहां तक आ जाती है कि कई बार पानी खरीद कर भी लाना पड़ता है। दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को नव भारत टाइम्स की एक आर्टिकल में ग्रेटर नोएडा और नोएडा की एक खबर ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, जो मैंने सोचा क्यों न आप सबसे भी शेयर करूं। ग्रेटर नोएडा में हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से 3.60 लाख क्यूसेक पानी से दिल्ली के साथ साथ नोएडा को भी अपने चपेट में ले लिया, जहां इससे नोएडा के कई गांव प्रभावित हुए और नोएडा के कई सेक्टरों में नदी की बाढ़ की वजह से ओवरफ्लो होकर नालों के द्वारा पहुंच गया। सिर्फ यही नहीं, नोएडा के 9 सेक्टरों में 1.5 फुट पानी यानी घुटनों तक यहां पानी पहुंच गया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मैं आपको बता दूं, बाढ़ का पानी नोएडा के 9 सेक्टरों में पहुंच गया। सेक्टर 142, 150, 151, 124, 125, 135, 137 जैसे कई इलाके बाढ़ में मानिए आधा डूब से गए। वैसे जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूंगी कि नोएडा एक तटीय क्षेत्र में बसा हुआ है, कि जल स्तर बढ़ने से नोएडा के सेक्टर 14, 15, 16, 17, 18, 127, 126 और 128 जैसे कई इलाकों में यमुना का पानी आसानी से पहुंच गया और इसी वजह से नोएडा के कुछ हिस्से डूब क्षेत्र में बसे हुए हैं। यह भी एक कारण है कि यहां की सड़कें चौड़ी हैं, और एक कारण यह भी है कि नोएडा की जो सड़कें हैं इन कंपैरिजन टू ग्रेटर नोएडा वो थोड़ी कम चौड़ी हैं, जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति काफी जल्दी पैदा हो जाती है। तो ये थे नोएडा के हालात उन दिनों, लेकिन नोएडा के बड़े भाई यानी ग्रेटर नोएडा में आखिर उस समय क्या थे हालात, चलिए आपको बताती हूँ। दोस्तों, जैसे नोएडा यमुना के किनारे बसा है, ग्रेटर नोएडा हिंडन नदी के किनारे बसा है। उस समय हिंडन का जल स्तर भी काफी बढ़ा हुआ था, जिसका सीधा प्रभाव ग्रेटर नोएडा पे देखा गया। परी चौक, मॉल ऑफ वेनिस, नॉलेज पार्क, होंडा चौक, इन सारे चौराहों पर सीवर लाइन का पानी और हिंडन नदी का पानी ओवरफ्लो हो करके आने लगा था, और यही नहीं घुटनों तक लग गया था। परी चौक के अंडर पास से इंसान तो छोड़िए, गाड़ियों और बस का निकलना भी मुश्किल था। इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से यहाँ कई सारी फैक्ट्रीज और गोडाउन्स भी हैं, और उस समय काफी नुकसान भी हुआ क्योंकि गोडाउन्स में और फैक्ट्रीज में पानी भर गया, जिससे कि काफी सामान और माल खराब भी हुआ। तो स्मार्ट सिटी और प्लान सिटी तो है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है ड्रेनेज सिस्टम का दुरुस्त होना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2019 में तालाबों को अपने पुराने अस्तित्व में लाने का एक मुद्दा उठाया गया था। उस समय जिला प्रशासन के सर्वे में 1018 तालाब की बात सामने आई। इनमें से करीब 600 तालाब जिले के 3 अथॉरिटी को अतिक्रमण मुक्त कर अस्तित्व में वापस लाने के लिए थे, और बाकी नगर पंचायतों, नगर विकास के एरिया में थे। 2 साल तक जिले के 3 अथॉरिटी एनजीटी में अपनी प्लानिंग की रिपोर्ट सौंपती रही, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं कर पाया था। हाल ही में एनजीटी में सौंपी गई रिपोर्ट में ग्रैनो यमुना अथॉरिटी ने बताया कि उन्होंने एरिया में कई तालाबों को नया जीवन दिया है और बाकी के लिए भी काम तेजी से चल रहा है। तो समझे दोस्तों, प्लानिंग तभी पूरी होगी जब एग्जीक्यूशन होगा, यानी कि अगर समस्या है तो उसका सलूशन भी निकालना पड़ेगा और सलूशन हम सबके हाथ में है। आप क्या कर सकते हैं पानी बचाने के लिए, चलिए ये भी मैं आपको बता दूं। अरे भाई, कोशिश करें कि घर में कम से कम पानी यूज करें। वो जो दाढ़ी बनाते समय या सब्जी धोते समय आप नल फुल स्विंग पे ऑन कर देते हैं ना, वो मत करिए, उससे भी काफी पानी बचता है। और हो सके जो वो जो शावर है ना, जो नियाग्रा फॉल्स के झरने जैसे गिरता है, उसको कम उपयोग करें। बाल्टी में मग्गे से नहाने की कोशिश करें, जिससे कि जितना पानी जरूरत है आप उतना ही यूज करेंगे। और छोटे छोटे टिप्स अगर मैं आपको दूं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एसी, जो ठंडी हवा तो देता है लेकिन पीछे बहुत सारा पानी भी छोड़ता है। एसी से निकलने वाले उस पानी को एक बाल्टी या किसी भी ऐसे बर्तन में संचय करें और बाद में घर की साफ सफाई, पोछा लगाना, गाड़ी मोटरसाइकिल ये सब धोने के लिए आप रीयूज कर सकते हैं। और भाई, वो जो वाटर प्यूरिफायर आपने लगाया है ना, उससे भी बहुत पानी, मतलब रोज लीटरों पानी बह जाता है। उस पानी को भी सिंपली एक बकेट में या एक बाल्टी में रिस्टोर करें और पौधों को डाल दें। भाई देखिए, एक पंथ दो काज, हरियाली भी होगी, पानी भी बचेगा। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये तीन मंत्र हैं सस्टेनेबिलिटी के। तो चलिए, आज पानी की खोज खबर पे यही लगाती हूँ पूर्ण विराम। फिर मिलूंगी आपसे हंसते हंसते एपिसोड 3 लेकर के आऊंगी। ग्रेटर नोएडा को थोड़ा और पास से जानेंगे। स्टे ट्यून्ड टू सुनो शारदा 90.8 FM। मैं शिखा यही आपसे कहती हूँ टाटा बाय बाय।
6: अभी आप सुन रहे थे ग्रेनो SDG 13 क्लाइमेट एक्शन पर आधारित एक श्रृंखला रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM पर। ये एपिसोड यूनेस्को और स्मार्ट के सहयोग से द रेडियो फेस्टिवल यूनेस्को SDG फेलोशिप के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी,
0: सब ठीक बा?
1: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
0: जी दीदी, जैसे रहुआ कहले रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
2: और आस पास कहूँ भी टायर, नल

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़प जा मच्छर बन पर भारी।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वही एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नवजात शिशु, लड़की हो या लड़का, उसकी एक समान देखभाल करें।
1: नवजात लड़की या लड़के में खतरे के लक्षण दिखते ही उसे बिना समय गवाए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या SNCU में ले जाएं।
0: एक वर्ष तक के सभी नवजात शिशु को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो तो सरकारी अस्पताल में उपचार, दवाएं, सभी जांचें तथा जरूरत पड़ने पर रक्त, ये सभी सेवाएं निःशुल्क दी जाती है।
1: और 102 एम्बुलेंस सेवा घर से अस्पताल और अस्पताल से वापस घर तक निःशुल्क पहुंचाएगी।
0: जब होगी सही देखभाल, तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
0: शिशु की सही देखभाल से
1: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जाँच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: तुम्हारी सरकारी नौकरी पक्की हो गई है।
5: अरे मम्मी, सरकारी नौकरी लग गया।

0: 90.8 एम सुनो शारदा।
1: जन्मदिन मुबारक होता है।

0: अरे हमारे यहाँ कचरा तो काम वाली बाई या मम्मी उठाती है, ये अंकल कचरा क्यों उठा रहे हैं?
1: जब टीचर ने बताया था ना,
2: सभी काम सब लोग कर सकते हैं, पुरुष या महिला।
1: सफाई करना तो हम सभी का काम है। अप्पा एक मिनट, मैं भी कचरा उठाने में आपकी मदद करूँगी।
3: ठीक है चलो, तो हो जाए कचरा पार्टी।
4: कचरा पार्टी।
1: हाँ, जब अप्पा घर का सारा कचरा साफ करते हैं ना, तो उसे कचरा पार्टी कहते हैं।
0: तो फिर हम भी करेंगे कचरा पार्टी।
4: हाँ, हमें जाने की कोई भी जल्दी नहीं है।
5: बर्थडे पार्टी और घर से जो भी कचरा निकला है उसका सही उपयोग और प्रबंधन करना जरूरी है। तो हो जाए कचरा पार्टी।
4: हो जाए।
2: कचरे का सही उपयोग और प्रबंधन मतलब
5: घर पे, स्कूल में या बाहर सड़क पर कचरा यूं ही नहीं फेंकना। ये कचरा हमारे वातावरण, जमीन, हवा, पानी को प्रदूषित करता है।
0: और कचरे के आसपास चूहे, छुछुंदर, मक्खी मच्छर का घर बन जाता है और कीड़े भी लग जाते हैं
1: जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालो।
3: रुको तारा, पहले ये देख लो ये कचरा किस तरह का है।
1: कचरा भी अलग अलग तरह का होता है अब्बा।
3: हाँ तारा, ये देखो कि ये सूखा कचरा है या गीला कचरा।
6: जो आसानी से सड़ जाए वो है गीला कचरा, और जो ना सड़े या कई सालों बाद सड़े वो है सूखा कचरा।
1: ये सड़ सकता है, इसका मतलब ये गीला कचरा है।
3: बहुत अच्छे तरह, हमेशा सोचो कि कचरा दोबारा किस काम आ सकता है।
7: इस गीले कचरे को गमले में डाल के मिट्टी से ढक दे तो कुछ समय के बाद ये गीला कचरा जैविक खाद बन जाता है।
0: तो अंकल क्या हम बचा हुआ हलवा भी गमले में डाल सकते हैं? ये भी तो गीला कचरा है।
3: नहीं चलो, पका हुआ खाना गमले में नहीं डालना, उसे तुम जानवरों को खिला सकते हो।
1: वाह, कचरा भी आएगा दोबारा काम। तो ये गया गीले कचरे में,
4: और मेरे पास है सूखा कचरा।
3: वाह वाह वाह वाह, तुम सब समझ गए। तो इस तरह घर पर ही सूखे और गीले कचरे को अलग कर लिया। और अब ऐसे कचरे की बात करते हैं जो हजारों साल तक सड़ते नहीं, और कुछ कचरे तो खतरनाक भी होते हैं।
1: हजारों साल तक सड़ते नहीं
4: और खतरनाक भी होते हैं,
3: जैसे प्लास्टिक जो हजारों सालों तक ऐसे ही रहेगा, या फिर टूटा शीशा, ब्लेड वगैरह। अगर इन्हें इस कचरे में मिला दिया और कहीं जानवरों ने खा लिया तो
1: या फिर कहीं शीशे के टुकड़े काम वाली दीदी या कूड़ा इकट्ठा करने वाले भैया को चुभे तो।
7: इसलिए कोशिश करो कि ऐसी खतरनाक चीजों को अलग से अखबार में लपेट कर बाजार जाते हुए कपड़े का थैला साथ ले लो, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना पड़े।
3: और अगर करना ही पड़ जाए तो उसे बार बार किसी तरह से इस्तेमाल करो, ना कि कूड़े में फेंक दो।
0: बार बार इस्तेमाल।
1: जैसे इस गिफ्ट रैपिंग पेपर को हम अपनी नोटबुक या किताबों में कवर की तरह चढ़ा सकते हैं।
3: अरे ये क्या खुसर खुसर चल रही है।

0: कचरा पार्टी की कचरा कला।
1: हमने कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके अपने वातावरण को बचाया।
2: अरे वाह, इसे तो मैं अपने टेबल पर सजाऊंगा।
0: तो तुम सब कब कर रहे हो कचरा पार्टी?

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

तू जाने है कहां ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो संग बाय लकी अली कंपोजर्स माइकी मैक्लेरी और सूरज कुलवडी लिरिसिस्ट कौसर मुनीर तू जाने है कहां सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment.

0: जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: अर्जुन बेटा,

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर at Sharda University.
5: Solo Sharda.
6: आई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
7: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
8: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
9: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
10: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
4: म्यूजिक देसी ट्रैप, सिंगर लिरिसिस्ट कंपोजर सिमरन कौर टडली, टाइटल दिलबर जानी। लेट्स लिसन टू इट ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए Sharda School of Media, Film and Entertainment. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म टेलीविजन OTT प्रोडक्शन एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: वो दोनों को ही चाहतों ने चाहतों से मारा, इशिकारा इशिकारा इशिकारा इशिकारा इशिकारा इशिकारा इशिकारा इशिकारा।
1: अपने धंधे की फितरत समझिए, जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तब जनता के अंदर एंटरटेनमेंट

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural

0: interventions critically.
1: So where are you? The world is here at Sharda University. भाई और बहनों, इस गाने को आवाज दी है हीर ने, म्यूजिक दिया है हीर और अमन नूर ने, ट्रेडिशनल लिरिक्स अमीर खुसरो। जी हाँ, गाने के बोल हैं, छाप तिलक सब छीनी री मोसे नैना मिला के, फ्रॉम द मूवी गिनी वर्स सनी टू। आइए सुनते हैं छाप तिलक, ऑल ऑन सुरोशादा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
2: शिशु का शरीर मांगे उपयुक्त आहार।
1: खाने में एक चम्मच घी या तेल है जरूरी,
2: जिससे आपके शिशु को मिलेगी ऊर्जा पूरी।
1: गाढ़ा मिलेगा भोजन,
2: तभी मिलेगा शिशु को संपूर्ण पोषण।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ,

0: आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं। सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणवीर जय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ गई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
2: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
3: हेलो, मैं हूं डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज़ वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज़ करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
2: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी, जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
1: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: जब तू इस घर में खुशियाँ बनकर आई।
1: तुम रहो स्वस्थ और सुरक्षित, हमको यही बात की चिंता सताई।
2: अरे कौन है वो जो हमको समझाए, कैसे करें हम इनकी देखभाल।
0: अरे चिंता ना करो अम्मा, मुन्नी अस्पताल में हुई है, इसलिए 7 बार हम इस घर के चक्कर लगाएंगे, नहीं रहेगी कोई कसर अधूरी। मुन्नी की जांच मैं करूंगी पूरी, जांचूंगी वजन और तापमान, रखूंगी आंख, नाक और त्वचा का भी ध्यान। कितनी बार, कब और कैसे अपना दूध तुम पिलाओगी, ये मैं तुम्हें बतलाऊंगी। मुन्नी को छूने से पहले हर बार कैसे धोना है हाथ, ये भी सबको सिखलाऊंगी। छोटी सी है मुन्नी, इसे तुम 7 दिन तक बिल्कुल मत नहलाना, सीने से लगा के रखना और कपड़े खूब पहनाना। 15 है खतरों के लक्षण, रखना तुम इन सबका ध्यान। देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना, तुरंत मुन्नी को SNCU ले जाना।
3: करती है पते की बात, ये तो सुघर सयानी है, बच्चे के होने पर ये तुम्हारे घर आनी है।
0: 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42वें दिन मैं बच्चे की जांच करने आऊंगी, क्योंकि बच्चे की नियमित जांच से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
6: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था, मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
7: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी

जनधन हानि ना हो। लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुक कर या रेंग कर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.